नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 17 अगस्त सन 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय आप सुन सकते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह ने कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण करते हुए ये बात कही।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें 17 पेंशन वितरण बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तैयार अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट और परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। इन विषयों में कई त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया कि अंग्रेजी का विषय 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, वाणिज्य विषय का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक और समाजशास्त्र का विषय 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। विशाखापत्तनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेगी। 77,342 वर्ग मीटर में फैला यह नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। वहीं महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की जोड़ी से खेलेगी। आयुष शेट्टी का सामना चीन के शी यू क्यूई से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। वहीं भारतीय जोड़ी MR अर्जुन और हरिहरन अमस्करुणन का मुकाबला आयरलैंड की जोड़ी से होगा। उधर पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। पुरुष हॉकी में भारतीय टीम आज नीदरलैंड्स में अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड का सामना करेगी। आज का मुकाबला पूल डी में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत ने वेल्स पर 3-1 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी। और मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और लद्दाख में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है।

0: के साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती
2: वंदन वार।

आज का चिंतन। स्वामी विवेकानंद का कथन है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं, लेकिन हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिएगा श्री रामचरित मानस गान, भाग होगा 283। 6:45 सुबह और शाम 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता कार्यक्रम। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज सुनिए श्रृंखला ताल प्रवाह तबला वादक। इस श्रृंखला की पहली कड़ी कलाकार हैं पंडित कालीनाथ मिश्र, प्रस्तुति मनीषा जैन की। 7 से भूले बिसरे गीत 7:30 से हम है राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी और 8:30 पर चित्रलोक।

सुबह 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम आज का केंद्रित होगा अभिनेता सचिन पिलगांवकर पर। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। 10 बजे पिटारा में उजाले उनकी यादों के, इसके अंतर्गत सुनेगा नाट्य निर्देशक, शिक्षाविद और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NST नई दिल्ली की पूर्व निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। संपादन सहयोग योगिता जाधव का, प्रस्तुति तेज श्री कांबले का। ग्यारह बजे रंग तरंग, 12:05 पर यादों की महफिल, 1 बजे सुनेगा सुरीला सफर। दोपहर 2 बजे त्रिवेणी और 2:30 पर सदाबहार नगमे प्रोग्राम। सखियों सहेलियों का कार्यक्रम सखी सहेली 3 बजे से, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। आज शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा सेहतनामा। इसके अंतर्गत सुनिए फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हर्षदा राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। प्रस्तुति है जुबैर खान की। शाम 5:30 पर तराने नए पुराने।

6:35 पर संध्या रंजन, 6:45 पर सुने संगीत सरिता। आपको फिर से बता दें, श्रृंखला होगी ताल प्रवाह तबला वादक। इस श्रृंखला की पहली कड़ी कलाकार हैं पंडित कालीनाथ मिश्र, प्रस्तुति मनीषा जैन की। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनेगा शाम 7 बजे से 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से। हवा महल में रात 8 बजे सुनिए झलकी शाही दावत, लेखन पी वी राव का, निर्देशन साधना भारद्वाज का। 8:15 पर चित्रलोक, 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए, 9:30 पर आज के फनकार। रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा, निर्देशक डेविड धवन पर, प्रस्तुत करता है रमेश गोखले।

10 बजे चाय गीत 10:30 पर ढलती चाय रात और 11 बजे रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षेप में विवरण।

अपने को समर्पित कर देने के लिए रावण ने सीता को एक माह का समय दिया था। इस अवधि की समाप्ति पर सीता जी के लिए अपना अंत हो जाने से अधिक व्याकुलता का कारण पति वियोग है। वो त्रिजटा से कुछ ऐसा उपाय करने की प्रार्थना करती हैं जिससे वो शीघ्र शरीर त्याग कर सकें। त्रिजटा उन्हें धीरज बंधाती हैं। हताश सीता अशोक वृक्ष से प्रार्थना करती हैं, तुम्हारे नए कोमल पत्ते अग्नि के समान दिख रहे हैं, तुम ही मुझ पर अग्नि वर्षा कर दो ताकि मेरी विरह व्यथा का अंत हो जाए। अशोक वृक्ष की डाल पर बैठे हनुमान जनक नंदिनी के शोक सने वचन सुनकर विचलित हो जाते हैं। वह श्रीराम की अंगूठी सीता जी के सामने गिरा देते हैं। मुद्रिका पहचान कर सीता जी को आश्चर्य होता है। श्रीराम की महिमा के गान के स्वर सुनकर वह राम कथा रूपी अमृत बरसाने वाले से अपने सामने प्रकट होने की प्रार्थना करती हैं।

0: नमस्कार मित्रों, समूची सृष्टि एक निश्चित लय में गतिमान है और इस चराचर जगत की गति लय जैसे किसी ताल में निबद्ध है और यह मानव जीवन प्रवाहमान है इसी ताल में। श्रोताओं, आज से आरंभ हो रही है श्रृंखला ताल प्रवाह। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की पहली कड़ी।
1: संगीत सरिता के सभी रसिक श्रोताओं, आप सभी को मैं रामकृष्ण दास एक नई श्रृंखला में स्वागत करता हूं। इस संगीत श्रृंखला का नाम है ताल प्रवाह। इस कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं बनारस घराने के जाने माने तबला वादक श्री कालीनाथ मिश्र जी। मिश्रा जी, आपका स्वागत है, आपको मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: हमारे साथ सारंगी में संगति प्रदान करेंगे उस्ताद फारूक लतीफ खान साहब। खान साहब, आपको मेरा नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: और हारमोनियम पर संगति प्रदान करेंगे श्री विनोद पड़गे जी। विनोद जी, आपको भी मेरा नमस्कार।
4: नमस्कार।
1: आज से लेकर कई दिनों तक ये ताल प्रवाह चलता रहेगा, जिसमें तालों के बारे में और तबला वादन के विभिन्न शैलियों के बारे में श्री कालीनाथ मिश्रा जी वादन करेंगे और इसके बारे में बोलेंगे भी। मिश्रा जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपके तबला वादन का शुभारंभ बहुत कम उम्र में हुई होगी, और जितना मुझे पता लगा कि आप गायक परिवार से हैं और आपने तबला वादन की तालीम पंडित शंभुनाथ मिश्रा, पंडित मदन मिश्रा एवं बनारस घराने के मूर्धन्य कलाकार पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज से प्राप्त की। मिश्रा जी, हम आपके बारे में और अधिक कुछ जानना चाहेंगे।
4: दास बाबू, सबसे पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ संगीत सरिता का, जिन्होंने मुझे इस स्टूडियो में बुलाया। मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैं एक संगीत परिवार में जन्म लिया। 4.5 साल की उम्र में हमने तबला शुरू कर दिया।
1: वाह।
4: और कहते हैं कि पूजा पाठ करने में सबसे पहले भगवान गणेश को याद करते हैं। हमारे गुरुजी पंडित किशन महाराज जी हमेशा अपने कार्यक्रम का समापन गणेश परण से करते थे, तो मैं सोच रहा हूं कि क्यों न गणेश परण से शुरू किया जाए। 3 ताल से लेता हूं दास बाबू। 3 ताल सभी तालों का राजा है, और कहते हैं कि जिसने 7 सीख लिया वो रे तक पहुंच जाएगा, जिसने 10 सीख लिया वो तधा तक पहुंच जाएगा।
1: क्या कहने।
4: तो हम सोच रहे हैं कि सबसे पहले विलंबित 3 ताल लिया जाए। गंग गंग दड़पति गज मुख मंगल गिट गिड़ गिट गिड़ गिट गिड़ थुन थुन तत्थई जय जग वंदन वक्र तुंड दानी दाता विघन हरन शुभ करन धागे ना धागे धुम कीट तक धुम कीट तक धुम कीट थुड़ंग तिटक तक था। तो मैं इसे विलंबित 3 ताल में बजाता हूँ। फारूक भाई,

ना धागे ना धागे, धूमा कीट ताका धूमा कीट। इसमें खास पखावज का अंदाज है कि भगवान गणेश पखावज कैसे बजाते थे, उन्हीं का एक अंदाज है, क्योंकि भगवान गणेश पखावज बजाते थे।

ये था भगवान गणेश का आराधना। अब बनारस का उठान का क्या अंदाज है? प्रस्तुत है उठान।

पहले मैं ये गणेश परण पढ़ के सुनाता हूँ। गंग गंग गणपति गज मुख मंगल गिट गिड गिट गिड गिट गिड थुन थुन तत्थई जय जग वंदन वक्र तुंड दानी दाता विघन हरण शुभकार।

बनारस का जो एक अंदाज है वो खुले हाथों से बजाने का एक अंदाज है। तो श्रोता, एक क्या होता है पहाड़, उसी का एक अंदाज़।

ये जो एक अंदाज है बनारस का, थाप, चाट और गत्ता, तीनों कैसे बोलता है।

0: ये था हमारा उठान।
1: क्या बात है, बहुत खूबसूरत चीजें आपने प्रस्तुत की।
0: धन्यवाद,
1: बहुत अच्छा लगा।
0: धन्यवाद।
1: हम ये जानना चाहेंगे, आपने जो उठान की बात की, ये किस लिए बजाया जाता है? हमने सुना है कि नृत्य में कुछ आमद या सलामी ये भी कहते हैं, तो ये क्या चीज है?
0: उठान का मतलब होता है जोरदार बोलों का प्रवाह, नाम है ताल प्रवाह, और सरिता में भरी हुई संगीत। उठान का जो एक अंदाज है वो सिर्फ नाच में नहीं होता है। एक सारंगी प्लेयर, एक सितार प्लेयर, हर इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले पहले एक मूड बनाते हैं, तो वो अपने सुर को देखते हैं। लेकिन बनारस का जो अंदाज है, हमारे गुरुजी पंडित किशन महाराज जी या शंभुनाथ मिश्रा जी, उनका जो एक अंदाज है, उठान का मतलब होता है माहौल बनाना। जब बरसात होती है, बरसात जब होने वाला होता है, तो पहले बादल अपना मूड बनाते हैं, तब कहीं बारिश होती है, और बादल का मूड बनेगा 15 मिनट में कि 20 मिनट में। तो जो एक अंदाज है, धा का साउंड बोलों के साथ तालमेल, एक प्रेम विलाप बोलों के साथ।

0: छोटी छोटी तिहाइयां लेके तब वो पहाड़ पे चढ़ते हैं, फिर उठान का जो साउंड होता है वो पखावत से आया है वो।
1: अच्छा
0: जी हाँ, वो पखावत से आया है। तो उठान का मतलब होता है कि पहले ही पब्लिक में ऐसा उठान बजा दो कि पूरी पब्लिक कम से कम एक घंटे आपको देखती रहे, और वो बड़ा पावरफुल साउंड होता है।
1: वाह
0: जी
1: मिश्रा जी, आपने इतना खूबसूरत माहौल तैयार किया है, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया।
0: धन्यवाद।
1: तो कोई एक गीत आप बताइए ना हमारे श्रोताओं के।
0: देखते हैं कि हमें संगीत सरिता तार प्रवाह में कौन सी गाना सुनाते हैं हमारे श्रोताओं को।
2: देखो।

ताल प्रवाह। इस श्रृंखला की ये थी पहली कड़ी। सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र से बातचीत कर रहे थे रामकृष्ण दास। तकनीकी सहयोग वंदना ठाकुर और निखिल धामापुरकर का। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनिएगा थोड़ी ही देर में।

सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए, सोना ना खोना ना भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में पहला गाना आपने ये सुना बाजी फिल्म से। आवाजें गीता दत्त और साथियों की थी। साहिल लुधियानवी ने इस गीत को लिखा था और एसटी बर्मन ने इस गीत की धुन बनाई थी। लीजिए अब सुनिए बादल फिल्म का ये गाना जिसे लता मंगेशकर ने गाया है। शब्दकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाजों में सगाई फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। रचना राजेंद्र कृष्ण की थी, संगीतकार थे सी रामचंद्र। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में बस एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं।

0: सुरैया की आवाज में राजपूत फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। बोल कैफ इरफानी के थे, संगीतकार थे हंसराज पहल।
1: कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, तोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, सीआईडी, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
2: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
1: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को। आज के

0: कार्यक्रम में शाम 4 बजे सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर।
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहत नामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सेहत नामा।

0: अलबेला फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थीं लता मंगेशकर और चितलकर की, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे और श्री रामचंद्र की तर्ज।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी

0: यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष ग्वारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मल्हार फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थीं लता मंगेशकर और मुकेश की, रचना इंदीवर की थी, संगीतकार थे रोशन। अब आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की दीजिए इजाजत सविता सिंह को। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: गीत गाता चल इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाजें आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की थी। गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन।
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहत नामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदार राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहत नामा।
3: कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, टोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, सीआईडी, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
4: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
3: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे। सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली।

नदिया के पार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें जसपाल सिंह और हेमलता की थी। गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन। हम हैं राही प्यार के इस कार्यक्रम में। चलिए एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं। अंतराल के बाद फिर से उपस्थित होंगे।

हमेरा ही प्यार के इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से बहुत स्वागत। दोस्तों, सादगी भरे अभिनय और शानदार अभिनय से दर्शकों के दिलों को जीतने वाले अभिनेता सचिन पिलगांवकर का आज जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सुनते हैं अखियों के झरोखों से फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है हेमलता और शैलेंद्र सिंह ने, गीतकार। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

0: झुमके वाली ओ ठुमके वाली ओ झुमके वाली हो ओ ठुमके वाली हो जरा चल के बता कैसी रे तेरी चाल।
1: बालिका वधु फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार आशा भोसले की, आवाजें थी आनंद बख्शी के, बोल थे आर डी बर्मन की, तर्स थी।
2: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
3: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
2: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
4: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां से
5: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
6: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती।
5: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
6: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
5: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
6: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
5: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
6: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

त्रिशूल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की थी। साहिल लुधियानवी की रचना आपने सुनी खयाम की। ये तर्ज थी इसी गाने के साथ ही आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट परीक्षा के तीन विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज

0: शास्त्र विषयों में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना का पहला चरण वाली 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। 1 अक्टूबर को संदर्भ तिथि मानकर लद्दाख में जनगणना 2027 पूरी हो जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: लद्दाख देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है, जहां जनगणना 2027 का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके अंतर्गत जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर तक होगी। स्वगणना आज से शुरू हो रही है। लद्दाख में पूरी आबादी को शामिल करने के लिए करीब 637 गणना ब्लॉक बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जनगणना संचालन अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि सितंबर में जनसंख्या गणना कराने का निर्णय क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी, दुर्गम इलाकों और सीमित पहुंच को देखते हुए लिया गया है। जनसंख्या गणना में आबादी के वितरण, जनसांख्यिकी संरचना, शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों, पलायन, दिव्यांगता, भाषा, प्रजनन और आबादी से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जाएंगी। जनगणना 2027 डिजिटल माध्यम से कराई जा रही है। यांगचेन डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। पीएम गति शक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की मंजूरी के लिए सिफारिश की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने बताया है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्किंग प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है। ये जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने संसद में हाल ही में संपन्न मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में लिखित उत्तर में दी। इसका उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक योजना और अवसंरचना परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ लाना है। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC JSSC भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
2: जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट टिक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है।

0: में विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: मध्य प्रदेश के इंदौर में देश में पहला वर्चुअल चिड़ियाघर शुरू किया है। इसके साथ ही इंदौर प्राणी संग्रहालय में 14D सिनेमा थिएटर और वर्चुअल जंगल सफारी की सुविधा भी शुरू हुई है। एक रिपोर्ट।
2: करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से PPP मॉडल पर 14D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी तैयार की गई है। वर्चुअल जंगल सफारी में लोग तकनीक के जरिए जंगल और वन्य जीवों का आभासी अनुभव ले सकेंगे। वहीं 14D सिनेमा में दर्शकों को फिल्म देखने का अलग अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन सुविधाओं का कल लोकार्पण किया और स्कूली बच्चों के साथ 14D सिनेमा में फिल्म भी देखी। इन नई सुविधाओं से बच्चों और पर्यटकों को वन्य जीवों और प्रकृति को तकनीक के जरिए समझने का मौका मिलेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र DLC अभियान के 5वें चरण के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की प्रगति केवल सामूहिक संकल्प और एकता की शक्ति से ही संभव है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि यही भावना भारत की प्रगति और समृद्धि की मजबूत नींव है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331 0481 या 2371717 या 2371716 और 2331444। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज पटना में चुनावी साक्षरता क्लब का शुभारंभ करेंगे। इस पहल को चुनावी साक्षरता, डिजिटल सहभागिता और लोकतंत्र में नागरिकों की सार्थक भागीदारी को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
3: राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है और भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर में राहत और बहाली के काम में तालमेल बिठाने के लिए 3 IAS अधिकारियों को तैनात किया है। मछुआरों को कल तक समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। बालेश्वर जिले के जलेश्वर में लगातार बारिश के कारण एक दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। मयूरभंज जिले में रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू हो गई है। पुंछ जिले की मंडी तहसील में बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की 12 दिवसीय ये वार्षिक यात्रा 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। एक रिपोर्ट।
4: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को कड़ी सुरक्षा के बीच पुंछ के लिए रवाना किया। राजौरी और पुंछ जिलों में यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुंछ जिला प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अग्रिम पंजीकरण की सुविधा देने के लिए एक विशेष पोर्टल भी शुरू किया है। समुद्र तल से करीब 4600 फीट की ऊंचाई पर स्थित बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में स्वयंभू सफेद पत्थर का शिवलिंग है। यात्रा से जुड़ी सहायता के लिए श्रद्धालु जम्मू यातायात नियंत्रण इकाई से 01912426

0: 7302 और श्रीनगर यातायात नियंत्रण इकाई से 01942479871 पर संपर्क कर सकते हैं। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: और अब खेल खबरों के साथ हैं कृष्णकांत।
2: BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। भारतीय खिलाड़ी आज से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। महिला डबल्स में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज से भिड़ेंगी। पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गौले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद प्रियंका। वंदे मातरम पर तीखी तकरार और UGC नेट पेपर में गड़बड़ी से जुड़ी खबरों को आज हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, आजादी के उत्सव के बाद सत्ता और विपक्ष में सियासी संग्राम। कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम के गायन के बीच टोका टाकी, भाजपा बोली माफी मांगे। रेलवे स्टेशनों के पानी में जहरीले बैक्टीरिया मिलने की CAG की रिपोर्ट के बाद नवभारत टाइम्स ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस बयान को सुर्खी दी है कि रेलवे करीब 20,000 जगहों पर नया टैंक टू टैप पानी फिल्टर सिस्टम लगाएगा। पुरानी टंकियां बदली जाएंगी और नियमित जांच होगी। 5 बार के तृणमूल विधायक आशीष बनर्जी के दफ्तर में खुदकुशी की खबर को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट हटाने की वजह जान सकेंगे यूजर्स। अमर उजाला की सुर्खी है, लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद बड़े सुधार की चल रही है तैयारी। छोटे शहरों में JEE नीट CUET के मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलेगी सरकार। पंजाब हरियाणा सहित 7 राज्य साथी पोर्टल से पायलट प्रोजेक्ट में 21 लाख बच्चे ले चुके हैं कोचिंग। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, कभी नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ रहे बस्तर में आजादी के बाद से पहली बार तिरंगा फहराया जाना और प्रधानमंत्री मोदी का अपने संबोधन में युवा कार्यबल पर जोर देना स्वागत योग्य है, लेकिन विकसित भारत का लक्ष्य तभी अर्थपूर्ण होगा जब विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। दैनिक भास्कर की यह खबर ध्यान खींचती है, ना इंटरनेट ना बिजली, दीवारों पर ही नोट्स तैयार किए। राजस्थान के बाड़मेर और आसपास के जिलों के करीब 18 गरीब होनहारों ने नीट क्वालिफाई किया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार। आज की त्रिवेणी मोड़ शब्द पर आधारित है। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ भी आते हैं जहां से जाकर लौटना मुनासिब नहीं होता। बड़े ही अजीब हैं ये जिंदगी के रास्ते। उस मोड़ पर आकर ठहर सी जाती है जिंदगी। इन्हीं अनजाने मोड़ पर कुछ लोग अपने बन जाते हैं, वहीं कुछ अपने होकर अनजान बन जाते हैं। इसमें कभी खुशी भी मिलती है तो कभी गम में बिखर जाते हैं। हर मोड़ पर एक नया शख्स मिलता है, नया चेहरा होता है, उसके साथ एक अनुभव जुड़ता है। यही मोड़ हमें मजबूत भी बनाता है।

जिंदगी में मोड़ों से भरी एक लंबी सड़क होती है। यही मोड़ हमें सिखाते हैं कि जिस रास्ते को तुमने चुना है, मंजिल उसके बहुत दूर है। कुछ पाना है तो कुछ मोड़ पर आकर लौटना हारने जैसा है। जैसे जब हम शहर में जीविका की तलाश में आते हैं तो समस्याएं, परेशानियां मुंह फैलाए आती हैं। ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं कि उन स्थितियों में अपने आप को संभालना ही पड़ता है। कई दोस्त साथी बनते हैं, कुछ दूर तक साथ चलते हैं, लेकिन मुश्किलों के मोड़ पर कुछ हाथ छोड़ भी देते हैं। तब भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन भरोसा खुद पर गर हो तो ये मोड़ भी सीधे हो जाते हैं।

कई बार हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि अगर वो एक मोड़ ना आया होता तो शायद हम इतने समझदार, इतने मजबूत ना होते। दर्द देने वाले मोड़ ही अक्सर इंसान को अपनी असली पहचान से मिलवाते हैं। इसीलिए जब भी जिंदगी किसी नए मोड़ पर लाकर खड़ा करे तो डरिए मत, हो सकता है वही मोड़ आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय बन जाए। क्योंकि रास्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, हर मोड़ के बाद एक नई सुबह इंतजार करती है, एक नए मोड़ का।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार।

0: गब्बर इज बैक इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अरिजीत सिंह और पलक मुछाल की आवाजें थी। मनोज यादव ने इस गीत को लिखा था और चित्रांगद भट्ट का संगीत था।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: धुरंधर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी जैस्मिन सैंडल्स और सतिंदर सतराज के। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए।

0: उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
1: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया। उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल। नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: कि हम तुम चोरी से बंधे।

हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाज़ ऐश किंग की आवाज़ थी और तनिष्क बागची ने इस गीत को लिखा था। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। एक ब्रेक लेते हैं फिर हाजिर होते हैं।

अब मन में सवाल ये उठता है कि नागों की पूजा क्यों करें? जवाब ये है कि हमारी संस्कृति इतनी खूबसूरत है कि प्रकृति के हर कण का सम्मान और पूजा करना सिखाती है, श्रद्धा करना, प्रेम करना सिखाती है। हम तो धरती, पेड़ पौधों, सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, जल और प्राकृतिक सभी शक्तियों की पूजा करते हैं। हम कण कण में परमात्मा का निवास मानते हैं, इसीलिए हम पूजनीय मानते हैं। नाग केवल पूजनीय ही नहीं बल्कि प्रकृति और पर्यावरण का महत्वपूर्ण अंग भी हैं। भगवान शंकर के गले विराजमान नाग हमें याद दिलाते हैं सृष्टि के हर जीव का अपना महत्व है। और अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो किसान भाई हमारी ये जानते हैं, नाग यानी सांप हमारी फसलों के कितने बड़े रक्षक हैं। वे खेतों से चूहे और कीड़े मकोड़ों को साफ करके हमारी अन्न की सुरक्षा करते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं। इसलिए नाग पंचमी अंधविश्वास नहीं, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, बल्कि प्रकृति और जीवों के प्रति कृतज्ञता और आभार व्यक्त करने का एक सुंदर तरीका है, सुंदर जरिया है, माध्यम है। इस पर्व से जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें भगवान कृष्ण और कालिया नाग की कथा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि आज के दिन अनंत तक्षक, वासुकी, शेष, पद्म और तक्षक नागों की प्रतीक रूप में विधि विधान से यानी उनकी तस्वीर बनाकर पूजा करने से घर में, समाज में सुख समृद्धि का वास होता है। लेकिन एक बात का ध्यान अवश्य रहे कि जीवित सांपों को दूध ना पिलाए, ये उनके लिए जानलेवा होता है। मूर्ति या प्रतीक रूप में पूजा करके जीव जंतुओं की रक्षा की जाए। तो आइए नाग पंचमी के इस पावन अवसर पर हम अपनी परंपराओं को नमन करें और प्रकृति के प्रत्येक जीव के प्रति करुणा और सम्मान का भाव रखें, ये संकल्प लिया जाए।

अरिजीत सिंह के आवाज में क्रिएचर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे टॉनी कक्कर और संगीतकार थे मिठू। दोस्तों आज 17 अगस्त है, 17 अगस्त 2026 और सावन का तीसरा सोमवार और नागपंचमी एक साथ, इसे बहुत सुंदर संयोग माना जाता है। आज नागपंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। आज के दिन भगवान शिव, महादेव और उनके आभूषण नाग देवता की पूजा अर्चना का विशेष महत्व माना जाता है।

केदारनाथ फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें अमित त्रिवेदी और साथियों की थी। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे, अमित त्रिवेदी का संगीत था। आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम, आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अब वक्त है एक और छोटे से अंतराल का।

0: बॉर्डर टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार की आवाजें थी। मनोज मुंतशिर ने इस गीत को लिखा था और विशाल मिश्रा ने धुन बनाई थी।
1: बैठ जा, खड़ी हो जा।
2: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
3: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
2: सेहत नामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
3: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
2: 17 अगस्त

0: शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
0: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
0: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
0: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
0: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, टोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, CID, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
3: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है जी, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
2: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे। सुनिएगा विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की।

0: आशिक कई टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाज़ें तुलसी कुमार और केके की थी, इरशाद कामिल के बोल थे और जीत गांगुली का संगीत था।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे।

0: सावन की हवा में घुली है मिट्टी की सौंधी खुशबू, हरियाली का प्यार प्यार और नोक झोंक। पहरा लाभ गीत सुन रहे थे, मुबारका फिल्म से मीका सिंह की आवाज थी, कुमार के बोल थे और गौरव रोशन का संगीत था।
1: कितने
0: फिर हेरा फेरी फिल्म का ये गाना आपको सुनवा रहे हैं।

फिर हेरा फेरी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हिमेश रेशमिया की आवाज थी, समीर के बोल थे, हिमेश रेशमिया का संगीत था। बार बार देखो फिल्म का ये गीत अमर आरशी बादशाह, नेहा कक्कड़ की आवाजों में। अमरीक सिंह और कुमार के बोल हैं।

बार बार देखो फिल्म के इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत सविता सिंह को। आप स्वस्थ रहें और समृद्ध रहें। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, सुनने को दे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके करियर की शुरुआत बचपन में ही हो जाए और उसी उम्र से उन्हें सफलता भी मिले। हिंदी फिल्मी दुनिया में तो ऐसे नाम बहुत ही कम है जिन्होंने बाल कलाकार के रूप में फिल्मी दुनिया में प्रवेश किया हो और अभिनय के क्षेत्र में ही बड़े होने तक सफलतापूर्वक नायक या नायिका के रूप में वो काम करते रहे हों। ऐसा ही एक कीर्तिवान कलाकार है जिसने हिंदी और मराठी फिल्म जगत में समान रूप से पूरी अधिकारिता के साथ अपने फन का लोहा मनवाया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हरदिल अजीज कलाकार सचिन की, जिनका पूरा नाम है सचिन पिलगांवकर।
1: बड़े अच्छे लगते हैं
2: क्या?

0: बचपन ने मेरे अभिनय की कला को और ज्यादा सवारा, क्योंकि उस उम्र में कुछ ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला जिनसे बहुत कुछ सीखना नसीब हुआ। और उसके बाद ये दौर चलता रहा, जारी रहा, और होते होते मैं और कुछ सीखता गया। पहले मैं अपने बड़ों से सीखता था, आज अपने छोटों से सीखता हूँ। मुझे पहली फिल्म का ऑफर मिला होमी वाडिया साहब, जिनकी बसंत पिक्चर्स, जो बहुत फेमस स्टंट फिल्म्स बनाने में बहुत मशहूर हुआ करते थे, उनकी फिल्म थी जिम्बो का बेटा। उसमें मुझे उन्होंने टाइटल रोल के लिए सिलेक्ट किया, और जिम्बो मतलब टार्जन का एक इंडियन रूप हम समझ सकते हैं वैसा था। और उसमें बाकायदा मुझे टार्जन के जैसे कपड़े पहनाए गए, एक खंजर और वो जो टिपिकल टार्जन के कपड़े थे, उनमें मैंने पहली बार हिंदी में पदार्पण किया। और उसके बाद कई हिंदी फिल्मों में मैंने काम किया, लेकिन उसमें से एक अविस्मरणीय फिल्म बचपन की हिंदी में जो थी, वो थी मंझली दीदी, जो ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने डायरेक्ट की थी, और जिसमें मुझे अवसर मिला था मीना कुमारी जी के साथ काम करने का। और बचपन में काफी मतलब ब्रह्मचारी, फिर चंदा और बिजली, बचपन, ऐसी अनगिनत फिल्मों में काम किया।
1: 17 अगस्त 1957 को जन्मे सचिन पिलगांवकर ने जब बाल कलाकार के रूप में फिल्मी दुनिया में प्रवेश किया, तब उनकी उम्र थी मात्र 4 वर्ष। 1962 में रिलीज हुई इस मराठी फिल्म का नाम था हा माझा मार्ग एकला, और इस फिल्म में अभिनय के लिए सचिन को सर्वोत्तम बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। इस जबरदस्त शुरुआत के बाद उन्होंने लगभग 65 हिंदी मराठी फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया, जिनमें प्रमुख हैं मझली

बाल कलाकार के तौर पर काम करने वाले सचिन के जिगरी दोस्त थे जूनियर महमूद। दोनों ने मिलकर 15 फिल्मों में एक साथ काम किया, जिसमें से उल्लेखनीय फिल्में थीं ब्रह्मचारी, नायक थे शम्मी कपूर।

बिरला ही होगा जिसने 1975 की फिल्म शोले न देखी होगी। इस फिल्म में सचिन द्वारा निभाया गया किरदार अहमद आज भी सभी को याद है। अब सचिन बाल कलाकार नहीं थे, वो एक युवा कलाकार बन चुके थे। उसी वर्ष बतौर नायक उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई गीत गा।

0: गीत गाता चल ये फिल्म जबरदस्त हिट हुई। इस फिल्म में उनकी जोड़ी जमी नई नवेली अभिनेत्री सारिका के साथ। आगे इस जोड़ी ने और भी कई फिल्मों में काम किया, मगर उन्हें याद किया जाता है केवल गीत गाता चल के लिए। अगले ही वर्ष यानी 1976 में सचिन की एक और फिल्म रिलीज हुई, बालिका वधु। इस फिल्म के नायक अमल की भूमिका के लिए सचिन को खूब सराहना मिली।
1: बड़े अच्छे लगते हैं
2: क्या?

1978 में सचिन की तीन फिल्में आईं, जिनमें से दो फिल्मों में वे नायक थे और एक फिल्म में सहायक अभिनेता। अब नायक हो या सहायक, अभिनेता सचिन हर रूप में छा जाने वाले कलाकार हैं। 1978 की यादगार फिल्में थी राजश्री प्रोडक्शंस की अखियों की झरोखों से और कॉलेज गर्ल, और यशराज फिल्म्स के बड़े बैनर तले बनी फिल्म त्रिशूल। आइए इन तीनों फिल्मों में से सचिन पर फिल्माए गए गीतों का ये मिडले सुनते हैं।

0: Pucci gum gum.
1: फिल्म त्रिशूल से सचिन एक बार फिर सहायक अभिनेता के रूप में ज्यादातर फिल्मों में नजर आने लगे। फिल्में थी अवतार, सुरसंगम और सत्य पे सत्ता। 1979 में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। सचिन अपनी मातृभाषा मराठी की ओर बढ़े। पारध, इस फिल्म में उनके साथी कलाकार थे नूतन, सारिका और डॉक्टर श्रीराम लागू। 1979 में शरद पिलगांवकर निर्देशित फिल्म अष्टविनायक रिलीज हुई, जो एक सुपर डुपर हिट फिल्म रही। नायक थे सचिन। लग रहा था मानो अब सचिन मराठी में ही बस जाएंगे। उसी दौरान वो एक बार फिर हिंदी फिल्मों में बतौर नायक और सहनायक दिखाई दिए। 1980 में जुदाई, 1981 में स्वीटी, 1982 में सत्य पे सत्ता और नदिया के

1980 से सचिन ने मराठी फिल्मों का निर्माण और निर्देशन शुरू किया। 1982 की पहली फिल्म माय बाप को समालोचकों ने खूब सराहा, परंतु सचिन ने निर्देशक के रूप में व्यावसायिक सफलता का रस पहली बार चखा 1984 में। फिल्म थी नवरी मिड़े नवर्याला। नायिका के रूप में थी उनकी पत्नी सुप्रिया। उसके बाद आई फिल्में गम्मत जम्मत और माझा पति करोड़पति की सफलता ने सचिन को एक निर्देशक के रूप में पुख्ता जगह दी। और उसके बाद 1988 की मल्टी स्टारर फिल्म अशी ही बनवा बनवी को मिली अपार सफलता ने सचिन को हिट फिल्म मेकर की श्रेणी में लाकर बिठाया।

इस गीत के नायक की गाड़ी चाहे जिस दिशा में गई हो, सचिन के कला जीवन की गाड़ी जा रही है सफलता की ओर। और इस यात्रा के विभिन्न पड़ाव हैं अभिनय, निर्देशन, पार्श्व गायन, टीवी पर रियलिटी शो में सहभागिता और जीत, टीवी पर नृत्य के रियलिटी शो का निर्माण, फिल्म और टीवी के कार्यक्रमों का निर्माण, और ये यात्रा बदस्तूर जारी है। सचिन जी की पत्नी सुप्रिया तो उनके साथ नायिका के रूप में कई फिल्मों में आई, परंतु अपने बेटी को लेकर भी, यानी श्रिया पिलगांवकर को लेकर भी सचिन जी ने 2013 में फिल्म बनाई एकुलती एक। सन 2015 में रिलीज हुई मराठी फिल्म कटियार कारजात घोसली, मराठी के मशहूर साहित्यकार पुरुषोत्तम दार्भेकर लिखित संगीत कटियार कारजात घोसली, इस नाटक पर आधारित इस फिल्म में खां साहेब की भूमिका में सचिन ने जान डाल दी। इस अभिनय के लिए उन्होंने खूब तारीफें बटोरी और उनके इस परफॉर्मेंस के लिए एक ही शब्द कहा जा सकता है।

0: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक सचिन पर केंद्रित आज के फनकार, ये कार्यक्रम अभी आपने सुना। आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: धरती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर,
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता, आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की, उजाले उनकी यादों की।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक रंगकर्मी और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से बातचीत। वामन केंद्रे को रंगमंच की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तकरीबन 50 दशक तक रंगमंच की दुनिया को अपनी कला से वामन जी ने सुशोभित किया। उनका ये सफर आज भी जारी है। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेरेंगे पद्मश्री वामन केंद्रे। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुने ये बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इसका पहला भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और इस समय हमारे साथ हैं जाने माने रंग निर्देशक थिएटर की दुनिया में जिनका बहुत अमूल्य योगदान है पद्मश्री वामन केंद्रे साहब। बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
1: बहुत लंबे इंतजार के बाद आपका विविध भारती आना हुआ है
2: जी।
1: इन स्टूडियोज में आके कैसा महसूस होता है सर?
2: नहीं, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि क्या है कि आकाशवाणी से जो पुराना रिश्ता है, मुझे लगता है कि मनोरंजन के जब साधन सीमित थे
1: जी,
2: उस समय की सारी यादें जो हैं, चाहे वो बीड आकाशवाणी केंद्र था, पहले तो नहीं था पर बाद में हुआ, तब का औरंगाबाद और अभी का छत्रपति संभाजी नगर में जो आकाशवाणी केंद्र था उससे काफी जुड़ा हुआ था मैं, फिर मुंबई आकाशवाणी केंद्र, फिर दिल्ली आकाशवाणी केंद्र। और एक ऐसा याद आता है कि नाटक के अलावा कभी कभी बीच में सिनेमा एक माध्यम था, नाटक एक था, और दूरदर्शन की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब से आकाशवाणी में आना जाना रहा है और वही एक जो संस्कार है, चाहे वो छोटे छोटे जो भी कार्यक्रम हुआ करते थे, सुबह की धुन से उठना होता था और वो अभी भी कान में गूंजती हैं, तो आकाशवाणी का जो रिश्ता है वो मुझे लगता है कि बड़ा नॉस्टैल्जिक रिश्ता है। तो यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद कुछ बिना कैमरा

0: जी जी जी
1: कुछ रिकॉर्डिंग करेंगे, कुछ बातचीत होगी, इसलिए बड़ा आनंद आ रहा है
0: जी। आप एक ऐसे गांव से आते हैं, वहां आपके बचपन में तब क्या रेडियो था?
1: रेडियो था, मैं जब छोटा था तब रेडियो था, पर ऐसा था कि गांव में सिग्नल्स नहीं आते थे। पर जैसे चौथी क्लास के बाद में, पांचवी क्लास में, थोड़ा सा गांव छोड़ के, बिल्कुल छोटा सा जो देहात है उसको छोड़ के एक जिला परिषद के स्कूल में आया। उस गांव का नाम था नेकनूर।
0: जी, सुंदर नाम है।
1: हाँ, तो तब वो कहीं ना कहीं एक रेडियो भी बजता है पानपट्टी पे खासकर।
0: अच्छा, हाँ, क्या बात है, क्या बात है।
1: और बहुत मशहूर प्रोग्राम तो था बीना का गीतमाला, तो वो तो बिल्कुल दिल हाथ में पकड़कर सुनते थे।
0: वाह।
1: और वो एक रेडियो होता था और उसके इर्द गिर्द 200-300 लोग बैठ के सुनते थे। तो ये सारी जो स्मृतियां हैं अभी भी आकाशवाणी की। और ऐसा लगा था कि ये माध्यम खत्म होगा टेलीविजन के आने की वजह से, इतने चैनल खुलने की वजह से, पर क्योंकि ये भी एक माध्यम है, एक शक्ति है, व्यक्त होने की शैली है, तो ये तो मालूम था कि खत्म नहीं होगा। फिर वो सारे रेडियो मिर्ची और सारे जितने भी चैनल वापस आ गए। और जब आप कैमरे के सामने नहीं होते हो, आप जर्नी में हो, कहीं टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हो, कार में जा रहे हो, घर में हो, तो वो फिर दोबारा उसकी शक्ति जो है लोगों को पता चली, जिसको हम वाचिक अभिनय की शक्ति कहते हैं।
0: वाह।
1: तो मूल गांव में जहां मैं रहता हूं या मेरी फैमिली रहती है, वो वैसा ही है, पत्रे के घर है, मिट्टी की दीवारें हैं, पहले तो झोपड़ियां होती थी, उसी में रहता था, मेरा बचपन तो उसी में गया।
0: तो पिता काश्तकार थे?
1: पिता मेरे, हाँ, किसान थे, तो इसीलिए वो जो संस्कार है वो किसानी के या खेती के हैं या उस माहौल के हैं। तो ऐसा ही गांव है अभी भी। मुझे लगता है कि एक 8-10 साल पहले एक सड़क जैसे तैसे गांव तक पहुंची है।
0: जी जी।
1: तो इसीलिए वो अभी भी घर तक बहुत सीधे तरीके से हम पहुंच नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो काली मिट्टी वाला एरिया है।
0: जी जी।
1: मतलब आप खोदते जाओ जमीन में तो 8-10 फीट कोई पत्थर नहीं दिखता, मिट्टी ही मिट्टी है।
0: जी जी।
1: तो इसलिए बरसात में बहुत ज्यादा तकलीफ वाला है कि पैर फंसते रहते, आप एक पैर फंसाओ और दूसरा निकाल के आगे डालो, फिर पहला निकालो फिर दूसरा, इस तरीके से। वो जब हम स्कूल में भी जाते थे बगल वाले गांव में, मेरे गांव में एक शिक्षक की स्कूल था
0: जी,
1: उस स्कूल को कोई बिल्डिंग भी नहीं थी।
0: मैंने सुना है पेड़ के नीचे पढ़ते थे।
1: यस। तो जो हनुमान का एक मंदिर था और वो बहुत पुराना पत्थर वाला, वो पत्थर भी वो क्या कहते हैं, बहुत तराशे हुए पत्थर नहीं होते थे, ऐसे ही हनुमान मंदिर के दीवार को लगाए और उसके सामने एक चबूतरा बनाया था ताकि लोग आके बैठे, और बहुत बड़ा इमली के पेड़ था उसके ऊपर, मतलब कई सैकड़ों साल पुराना। तो उसके नीचे उस चबूतरे पे हमारी स्कूल शुरू होती थी, और जब बारिश आती थी तो बगल में एक चावड़ी बोलते हैं मराठी में,
0: जी जी,
1: एक धर्मशाला टाइप थोड़ा सा एक पाइस पत्रे की शेड था।
0: हाँ।
1: तो उसको दरवाजे नहीं होते थे, तो जो गांव की गायें हैं, भैंसे हैं,
0: बकरियां
1: हैं, वो घुस जाते थे रात भर वहां, और फिर हमको सबको उसको हकाल के बाहर निकालते, सुबह 8-9 बजे स्कूल जब जाते थे तो सारा गोबर ये सब साफ करके, उसके बाद बरसात पत्रे के नीचे भरती थी। तो ऐसा था हमारा स्कूलिंग
0: जी,
1: जिसको
0: तो यहाँ शिक्षा की असली ताकत समझ में
1: आती है। मेरे समझ में आता है कि हम अब आज की तारीख में इतना स्कूल के बारे में सजग है, अवेयर है, पर पढ़ना हो तो आदमी कहीं भी पढ़ सकता है। मैं अपने अनुभव से तो कह ही सकता हूँ कि जिला परिषद का स्कूल है, एक शिक्षक आता था, वो बीच में एक नदी थी, बाढ़ आ गई तो शिक्षक उधर है, हम नदी के इस किनारे, शिक्षक उस किनारे, तो कुछ कम्युनिकेशन नहीं होता था, तो स्कूल नहीं होता था। पर बहुत अच्छे शिक्षक, एक जो शिक्षक आके गांव में रहे, उन्होंने एक शिक्षण का वातावरण बनाया। अब उनका मुझे नाम भी और सरनेम भी याद नहीं है, इतना पुरानी बातें, पर एक शिक्षक जब आपके जीवन में आता है तो इंस्पायर करता है। कहीं भी पढ़िए, मुझे लगता है बिल्डिंग से शिक्षण नहीं होता है, पढ़ाने वाले से शिक्षण होता है और पढ़ने वाले से शिक्षण होता है। इसलिए ऐसे छोटे से गांव में जहां कोई खेल का माहौल नहीं है, जहां कुछ नहीं है, पर एक बहुत अच्छी चीज थी कि किसान के घर में पैदा होने की वजह, एक तो खेती की वजह से एग्रीकल्चरल बेस है मेरे जीवन का, तो इसीलिए कौन से पौधे को क्या कहते हैं, कौन से पौधे को क्या फल आते हैं, ये सारा का सारा जो ज्ञान है उस समय हुआ। फिर जानवर पंछी, ये सारा का सारा माहौल हो मेरे संस्कार का, एक्सपोजर का हिस्सा है। दूसरी सबसे बढ़िया बात ये हुई कि जो हमारा फोक कल्चर है, लोक कलाएं जो हैं, वो किसान के

0: घर के सामने जाए बिना, आंगन में जाए बिना उनकी रोजी रोटी नहीं चलती है
1: जी।
0: वो सुबह 4 बजे आने वाला जो कुड़मुड़िया बोलते, 4 बजे आता है, 6 बजे वासुदेव आता है, फिर गोसावी आते हैं, डवरी आते हैं, गोंधड़ी आते हैं, ये आता है, वो आता है। तो ऐसे सारे जितने भी कल्चर को कैरी करने वाले मुसाफिर है या थे, वो किसान के आंगन में आके वो नाच गाना जो भी है उसका भिक्षा मांग कर वो अपना चरितार्थ चलाते हैं। तो हमारा सारा कल्चर जो है भारतीय वो एग्रीकल्चरल बेस्ड है,
1: बिल्कुल
0: वर्तूल से चलता है। किस समय दिवाली आएगी, किस समय पंचमी आएगी, कब होली आएगी, कब फलाना आएगा, ये एग्रीकल्चर में जब किसान को कब फुर्सत होती है उससे वो कैलेंडर बंधा हुआ है।
1: बिल्कुल।
0: तो उसका फायदा ये हुआ कि वहाँ कीर्तन है, भजन है, भारूड है। एक मेरे घर में ही था
1: जी,
0: मेरे एक चाचा तो कीर्तनकार थे और पिताजी को भजन और भारूड बहुत अच्छा लगता था। उनका मेन व्यवसाय तो ये था,
1: खेती
0: था, पर वो अपने आनंद के लिए ये सारा करते थे। कभी भजन गाते थे एकादशी के दिन, कभी कहीं बगल के गांव में भंडारा लगा तो वहां बुलाते थे इन गांव वालों को, वहां जाके वो भारूड इनेक्ट करते थे, संतों की कविताएं। तो गाते भी थे, नाचते भी थे और इनेक्टमेंट भी था। तो ये टोटल मुझे लगा कि मेरे गांव में पैदा होने का जो बड़ा मेरे जीवन में है, मेरे सोच में है, वो इसीलिए कि ये सारा मुझे मुफ्त में मिला। ये संस्कार, लोक कलाएं, लोक संगीत है, लोक नृत्य है, चाहे तमाशा है, चाहे कीर्तन, जो भी है, मतलब एक मनोरंजन से प्रबोधन तक की जितनी भी लोक कलाएं हैं वो मुझे घर में बैठे बैठे देखने को मिली, उसकी अनुभूति मिली, उनका संस्कार मिला। तो ये छोटा गांव जो है वो मेरे जीवन का अहम हिस्सा है और इसीलिए मुझे मालूम है उस गांव का योगदान मेरे अपब्रिंगिंग में, मेरे करियर में क्या है। इसलिए मैं अभी भी गांव से जुड़ा हुआ हूं। मेरी माताजी गांव में रहती हैं, मेरे भाई, मेरे चाचा जी सारे गांव में रहते हैं। यहां कुछ लोग हैं, कहीं और जगह पे बिखरी हुई फैमिली है, लेकिन उस गांव से मेरा रिश्ता अभी भी कायम है।
1: क्या बात है, गांव और पढ़ाई लिखाई और ये सारी बातें हो रही है तो यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं। मुझे लगता है यहाँ ये गाना ठीक रहेगा, लिखोगे पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। ये गाना सुनते हैं।
0: यस।

अलिफ से बोलो क्या होता है।

0: क्या होता है?
1: दीटर।
0: जगदीर,

0: वामन केंद्र जी, सुंदर बात आपने कही कि एक पूरी लोक कलाएं किसान के घर उसके द्वार तक आती हैं और जो खेती का एक पूरा चक्र है उसके आधार पर हमारे त्योहार बंधे हुए हैं, कैलेंडर बंधा हुआ है और उस तरह से जीवन चलता है, उस तरह से पर्व और उत्सव चलते हैं और वो हमारे जीवन का हिस्सा है और कलाएं उसमें अंतर्निहित है। भारूड़ आपके बचपन और आपके संस्कारों का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। आपने बताया पिताजी को भी बहुत ज्यादा वो लुभाता था, उससे जुड़ी यादें बांटिए।
1: नहीं, मुझे लग रहा है कि भारूड़ एक ऐसी कला है जो संतों ने जो कविताएं लिखी है, जो कविताएं ऐसी कविताएं जिनका इनैक्टमेंट भी हो सकता है, ऐसी कविताओं को भारूड़ कहते हैं। बहुरूढ़
0: जी,
1: जो लोगों में रूढ़ है, प्रसिद्ध है, ऐसी कविताओं का उसमें गाना भी है
0: जी,
1: नृत्य भी है और उसके बाद इनएक्टमेंट भी है। तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि उसको एक आधे आधे घंटे का एक भारूड के ऊपर इनएक्टमेंट, आधा घंटा पौना घंटा जितनी कैपेसिटी है, क्योंकि होता तो सारा इम्प्रोवाइजेशन है, वहां हाँ। कोई स्क्रिप्ट तो लिखा होता नहीं है। स्क्रिप्ट तो जो है वो संत एकनाथ ने लिखे भारूड है, जनाबाई ने लिखे भारूड है, तुकाराम जी ने लिखे भारूड है, ज्ञानेश्वर ने लिखे कुछ भारूड है। तो ऐसे जितने भी ये संत परंपरा है महाराष्ट्र की, मुझे लगता है उनकी कविताओं का एक तरीके से स अभिनय सादरीकरण है ये
0: जी।
1: तो वो और बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होता है, उसमें ह्यूमर भी है, उसमें मस्ती भी है, नाचने नचवाने वाला रिदम भी है, ताल भी है, लय भी है, सामाजिक जागृति भी है और प्रबोधन भी है। तो इसीलिए वो फॉर्म बहुत, और वो कंटेम्प्रेरी है, उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है। मतलब इतना लचीला भी है वो, क्योंकि वो जो किसान है या मजदूर है या जो भी इनैक्ट कर रहा है वही, और उसमें इनफॉर्मेलिटी बहुत है, मतलब कोई औपचारिकता नहीं है। मतलब एक बड़ी बड़ी मूंछ वाला आदमी औरत का काम कर रहा है मान लीजिए, और चारों तरफ ऑडियंस बैठी हुई है, हस्बैंड और वाइफ के बीच का झगड़ा हो रहा है यहाँ पर, जो गीत से भी हो रहा है और गीत के बाद एक्चुअल संवाद में भी आ रहा है। तो औरत बनने के लिए क्या आवश्यक है, तो एक पल्लू चाहिए, तो किसी ने ओढ़ी हुई शॉल है उसको खींच लिया, कमर में जो धोती पहना हुआ है उसने अपने कमर में एक उसका सिरा जो है खोच लिया और ऊपर से पल्लू, सर के ऊपर से पल्लू लगा लिया और एक बिंदी लगा ली या कुमकुम लगाते थे, हो गया वो औरत। बड़ी बड़ी मूछ है, इतनी लंबी दाढ़ी है, फिर भी उसको औरत मानते थे लोग।
0: यस,
1: और जो दूल्हा है वो गांव का है तो वो कोई लकड़ी ले ली है, लाठी ले ली है और कोई एक पगड़ी बांध ली कि हो गया वो दूल्हा। तो और वो दोनों के बीच में कभी गाते हैं, कभी संवाद प्रस्थापित हो रहा है, ह्यूमर हो रहा है, हजारों की तादाद में लोग आ गए, वो लोटपोट हो रहे हैं और उसमें से प्रबोधन तक पहुंच रही है बातें।
0: क्या बात,
1: मनोरंजन के द्वारा प्रबोधन तक पहुंचाना, जीवन के किसी एक वृत्ति प्रवृत्ति के सामने उसके ऊपर टीका टिप्पणी करना और हंसाते गुदगुदाते हुए ये सब करने वाला फॉर्म है, इसलिए कोई भी आदमी उसकी तरफ आकर्षित होगा। मेरे पिताजी को कई सैकड़ों भारूड याद थे और वो परफॉर्म भी करते थे, वो कोई उनका व्यवसाय नहीं, अपने आनंद के लिए परफॉर्म करते थे। जो मेरा गांव है दरडवाड़ी, वहां की भारूड मंडली बहुत फेमस थी, तो वो पंचक्रोशी जो है वहां 150 गांवों में कहीं भी ये भंडारा होता था तो भारूड मंडलियों को हर गांव के बुलाया जाता था, न्योता दिया जाता था, तो वो न्योते में ये जब जाते थे तो पूरा हंगामा करके आते थे। वहां एक तरीके का आपने एक भारूड गाया, सवाल जवाब जैसे होते हैं कुछ मनोरंजन की लोक कलाओं में, ऐसे भारूड के द्वारा एक दूसरे को तू हारेगा क्या मैं जीतूंगा या मैं आज जीतूंगा कि आप हारोगे,
0: जैसे
1: कवालियों के मुकाबले में भी होता है। तो ये सुबह जब सूरज उदय होता था तब तक चलता था।
0: ओहो, पूरी रात,
1: पूरी रात, और पूरा एक उस गांव के जो भंडारे में 4-5 हजार तो लोग आते ही आते थे। तो ये मुझे लग रहा है कि इस फॉर्म ने मुझे बहुत आकर्षित किया और वो आज भी मेरे आकर्षण का केंद्र वैसे ही है।

0: बचपन में याद हो गए थे भारूड?
1: बहुत सारी भारूड, मैंने प्रस्तुतियां कभी नहीं की। आई वॉज साइलेंट एडमायरर और साइलेंट ऑडियंस।
0: अरे वाह,
1: तब मुझे नहीं मालूम था कि मैं इस क्षेत्र में आऊंगा और कुछ हो जाएगा। ये तो मेरे ग्रेजुएशन के बाद मुझे लगा कि अब उधर जाना चाहिए। जो मेरे अंदर का संस्कारित कलाकार है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, वो कहीं ना कहीं उछल मार रहा था या वो कुछ उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था। तो वो बारूद वाले तो बहुत सारी चीजें हैं।
0: बिल्कुल, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।

0: लेकिन कठिन थी पढ़ाई, आपने जैसा कि बताया अपने गांव से दूर जाके
1: माहौल नहीं था, पढ़ने का माहौल नहीं था जो मेरे साथी थे। जैसे अब नेकनूर से सातवीं तक पढ़ लिया मैंने
0: जी,
1: और फिर आठवीं से आगे मेरे चाचा के साथ मैं रहता था एक रूम किराया करके नेकनूर गांव में। एक रूम में तीन चार बच्चे अपना उसको किराए से लेते थे, उसी में चूल्हा, उसी में ईंधन लाना, लकड़ियां लाना, उसी में चूल्हा जला के खाना बनाना, अपने कपड़े खुद धोना। तो इसलिए स्वावलंबन भी उस सारी जीवन शैली का एक हिस्सा हो गया। पानी भी लाना, सब कुछ आपको अपना अपना करना पड़ता था। तो खाना भी जब बनाते तो इकट्ठा कोई सब्जी

0: काट रहा है तो कोई रोटियां बेल रहा है, तो कोई तवे पे सेक रहा है, तो कोई सब्जी बगल वाले चूल्हे पे चढ़ा रहा है, तो इस तरीके का वो माहौल था। तो मेरे चाचा जी मेरे साथ थे, तो उनका वहां एसएससी खत्म हो गया, अब उनको आगे कॉलेज में जाना था, तो बीड जो जिला है हमारा वहां पर उनको जाना पड़ा, क्योंकि उनके पास यहां पढ़ने के खत्म हो गई कक्षा। तो फिर ऑब्वियसली मैं उनके साथ चला गया, क्योंकि चाचा साथ में है तो थोड़ा सा ये भी सुकून भी था घर वालों को भी। तो आठवीं से फिर मैं बीड जिले पे आ गया, और जिले पे आने का मतलब यह है कि थोड़ा सा माहौल भी बड़ा बन गया, जिले का स्तर है तो एजुकेशन भी थोड़ा अलग किस्म का था, थोड़ा बड़प्पन या एक दृष्टि का विस्तार होने की जो संभावनाएं बनती है, छोटे गांव से थोड़ा अर्बन एक टाउन में जाओ, टाउन से थोड़े बड़े टाउन में जाओ। तो फिर बीड में मैंने आठवीं से लेके ग्रेजुएशन तक मैं बीड में ही पढ़ता रहा।
1: जी, एक नई दुनिया खुली,
0: एक नई दुनिया खुली। एक क्या होता था कि यहाँ साइकिल ही बहुत ज्यादा एक ग्लैमरस चीज होती, किसी के पास साइकिल है तो बहुत बड़ी बात होती थी, तो वो साइकिल से अब रिक्शा तक आ गए हम लोग। अरे रिक्शा भी होती है, कार भी होती है, पूरे जिले के गांव में तीन चार कार होती थी, वो बड़े अमीर लोगों के पास होती थी। पर दूर दराज की गाड़ियों का आना जाना, लोगों से मिलना मिलाना, फिर एक क्या कहते हैं एक्टिविटी में हिस्सा लेना, तो जहां पर आप 200-400-500 बच्चों के साथ पढ़ते थे, अब अचानक मेरे कॉलेज में उस समय 4,500-5,000 स्टूडेंट थे।
1: ओहो,
0: दूसरा कॉलेज था एक हमारे ही बीड शहर में बलभीम कॉलेज, मैं पढ़ा हूँ नवगण महाविद्यालय में, वहाँ एक 4-5 हजार थे। तीसरा एक बंकट स्वामी महाविद्यालय था, उसमें 2-3 हजार गांव-गांव से आए और शहर के लोग पढ़ते थे, विद्यार्थी पढ़ते थे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है जिला स्तर पर आप जब आते हैं। तो मेरा हमेशा विजन जो बढ़ता रहा, छोटे 30-35 मकान के गांव से फिर 2-3 हजार वाले मकान के शहर में, छोटे से तालुका प्लेस भी नहीं था, अभी भी वो तालुका नहीं हुआ है, पर उस वाले शहर पे, वहां से फिर डिस्ट्रिक्ट। तो आपका जितना शहर का आकार बढ़ता है उतनी आपकी सोच का भी आकार बढ़ता है।
1: बहुत सही बात है।
0: उसके बाद फिर औरंगाबाद संभाजीनगर चला गया यूनिवर्सिटी के लिए, फिर वो और भी बड़ा है, पांचों जिलों का जो 5 जिले थे मराठवाड़ा में, तो कमिश्नर ऑफिस था वो
1: जी,
0: तो वो और भी बढ़ गया, वहाँ यूनिवर्सिटी भी थी, तो यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी बात होती है। 300-400 एकड़ में आप इतनी सारी बिल्डिंग है, इतने सारे डिपार्टमेंट, और पढ़ने पढ़ाने का बहुत बड़ा माहौल बन जाता है
1: जी,
0: कई सारे कॉलेजेस थे वहाँ। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि जो आपके पढ़ने का भी विस्तार होता है, सोचने का भी विस्तार होता है, और जीवन को आप जो सामना कर रहे हैं उस सामना का भी विस्तार होता है, तो जीवन अनुभव का भी तो विस्तार होता है
1: एकदम।
0: तो ये ऐसा वो माहौल था
1: जी। यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।

0: जब आप बीड शहर में आ गए अपने चाचा के साथ, चाचा की अपनी पढ़ाई, आपकी अपनी पढ़ाई, वहाँ सिनेमा और रंगमंच की दुनिया से किस तरह का संपर्क बना देखने सुनने और समझने का?
1: नहीं, क्योंकि बीड नेकनूर में तो ये सारा कुछ नहीं था। जो गैदरिंग में एक आध छोटा मोटा नाटक होता था वही उसी में हिस्सा लेता था मैं। पर बीड़ में आने के बाद, बीड़ एक शहर बड़ा है तो दो तीन सिनेमा हॉल थे, तो सिनेमा देखने की शुरुआत हो गई। कोई एक रिश्तेदार आते थे और वो जब भी दो तीन महीने के बाद आते थे, हम सारे बच्चों को वो पांच आने का सिनेमा का टिकट निकाल के हम सब सिनेमा देखते थे।
0: वाह वाह, कुछ फिल्में याद है? शुरुआती तौर पर
1: याद है, इतनी सारी फिल्में याद है, जितने भी हमारे हीरो हैं उस समय के पॉपुलर हीरोइंस हैं, हेमा मालिनी के सिनेमे देखे हैं, शर्मिला टैगोर के देखे हैं, रेखा जी के देखे हैं, कई मतलब सिनेमा के नाम, जंजीर देखा हुआ है, शोले देखा हुआ है, उसके पहले जितेंद्र जी के सिनेमा देखे हुए हैं, अपने ये जो पहलवान
0: दारा सिंह
1: के सिनेमे बहुत देखे हुए हैं। तो ये मतलब ऐसा होता था कि साल में पांच छह सिनेमा तो देख ही लेते थे।
0: कितना रोमांचक था ये,
1: बहुत रोमांचक। वो सिनेमा का टिकट निकालना अपने आप में एक जो कल्पना से परे शर्त होती थी, वो टिकट पाना,
0: वाह वाह,
1: वो झुंड जो पड़ता था उस छोटी सी खिड़की में, अरे बाप रे बाप, कोई किसी के ऊपर कंधे पर चढ़ रहा है, कोई जूते से सर पे खड़ा है, कोई उल्टा खड़ा होके, कोई बहुत स्किलफुल लोग होते थे वो टिकट निकलने वाले। तो ये सारा जो माहौल है वो देखा है। उसके बाद जो गैदरिंग में नाटक होते थे, खासकर कॉलेज में, मेरे स्कूल में कोई नाटक नहीं होता था
0: जी,
1: तो वो एक बहुत ज्यादा गंभीर पढ़ाई वाला था, पर वहां पर दूसरा माहौल था। वो एक जो माहौल में एक किस्म की जो मूवमेंट चली थी उस समय, विद्यार्थियों की समस्याओं के आंदोलन हुए, किसानों की समस्याओं के आंदोलन हो गए, वो मुझे लगा कि वो सारे आंदोलन का हिस्सा मुझे बनाया गया।
0: जी जी,
1: क्योंकि मेरी तरफ देखने के बाद चुलबुला था, थोड़ा भाषण वाषण करता था, जो नेकनूर में ही स्कूल में पढ़ता था तभी से वो शुरुआत हुआ था।
0: तब तो आपने एक्टिंग भी की थी?
1: तब भी एक बार एक एक्टिंग की थी मैंने, जहां एक ही बार नाटक हुआ था तो उसमें एक्टिंग भी की थी।
0: लड़की बने थे?
1: लड़की बना था मैं, और अब वो नाटक का नाम तो याद नहीं, एक छोटा एकांकी नाटक था, पर उसमें लड़की बना था और मेरे से मोटी लड़की का फ्रॉक मैंने लाया था और सेफ्टी पिन लगाया था, तो सेफ्टी पिन डायलॉग बोलते बोलते खिसक गया।
0: ओ,
1: तो पूरा नाटक जो है वो कहीं और चला गया
0: जी।
1: तो ऐसा भी एक वो अनुभव था। बीड़ में आने के बाद मुझे लगा कि वो जो माहौल मुझे दूसरा मिला, सोशल जागरूकता का माहौल मिला।
0: बड़ी आसानी से आप राजनीति में जा सकते थे?
1: हाँ, जा सकता था मैं, और वो भी एक ऑप्शन मेरे सामने था राजनीति में जाने का। पर वो कॉलेज में आते आते ऐसा लगा कि जो राजनीति हमारी मोड ले रही है उस समय की, जो अंगड़ाई ले रही है, वो मूल्याधिष्ठित राजनीति नहीं रहेगी। बहुत अनुभव किया उसका और ऐसा लगा कि ये कुछ सही नहीं है। वो मैंने इसलिए जानबूझ के छोड़ा कि अब यहां जाना सही इंसान का काम नहीं है, पर जाना जरूर चाहिए। वहां की राजनीति में ऐसा लगा कि सही इंसानों का होना बहुत जरूरी है, सेंसिटिव लोगों का होना जरूरी है। वहां नहीं है, ऐसा नहीं है, जो जाते हैं उसके बावजूद वो बदलना

0: पड़ता है वो दुर्भाग्य है इस देश की राजनीति का। तो इसीलिए मैंने चुना कि कहां पर जाके हम अपना करियर बना सकते हैं। जो मैं ये आंदोलन से काम कर रहा हूं, गरीबों के लिए लड़ रहा हूं, झगड़ रहा हूं, ये मुझे निरंतर आगे चलाना था। तो मुझे लगा कि नाटक का जो इम्पैक्ट होता है वो इम्पैक्ट हजारों भाषणों से ज्यादा होता है
1: जी।
0: सिनेमा का इम्पैक्ट है वो कई कई गुना ज्यादा होता है, नाटक से भी कई गुना ज्यादा होता है। पर नाटक जो बहुत अच्छा नाटक अगर आप करते हो तो उसका परिणाम इतना प्रभावी होता है कि देखने वाला अंतर्मुख हुए बिना घर नहीं जा सकता। तो इसीलिए मैंने चुना कि नहीं, जो करियर करना है। जब कॉलेज में आया, दो तीन साल गैदरिंग में काम किया और सेकंड ईयर में आया तो मैंने फुल लेंथ प्ले में लीड रोल किया, मुझे दिया गया। तो मैं तो इतना छोटा सा था और ढाई अखर प्रेम का वो नाटक हो रहा था गैदरिंग के लिए और उसमें मेन रोल था प्रोफेसर बल्लाड़ का। अब वो रोल निभाने के बाद ऐसा लगा कि यार ये कुछ जादू है इस सारी प्रोसेस में। तो तय किया कि नहीं, नाटक में जाऊंगा तो मैं एक तो सेंसिटिव रह पाऊंगा, मैं अपनी हिसाब से जिंदगी जी पाऊंगा, अपनी सोच के नाटक करूंगा, जिनकी मैं आवाज बनना चाहता हूं, चाहे वो वंचित है, चाहे वो गरीब है, जो समाज के सीढ़ी के आखिरी सीढ़ी पे भी जिनको जगह नहीं है, ऐसे लोगों की आवाज बनने की संभावना इसमें ज्यादा है। तो इसलिए मैंने ये जानबूझकर ये चुनाव जो किया मैंने माध्यम का, वो सोच समझ के किया। और इसीलिए फिर वहां जाना ही है नाटक में तो पूरी तैयारी के साथ जाएंगे
1: जी जी।
0: तो इसीलिए फिर औरंगाबाद शिफ्ट हो गया और वहां एक साल ड्रामा डिपार्टमेंट में दाखिला लिया। वो इसीलिए कि मुझे अंतिम में जाना तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ही था, तैयारी करके जाना है मुझे। कोई इंटरव्यू में जाऊंगा तो वापसी का टिकट के पैसे लेके नहीं जाऊंगा,
1: वाह,
0: ये मन में तय किया था। और वाकई जब पहली बार इंटरव्यू दिया तो उसी इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हो गया और वो भी टॉप फोर में सेलेक्ट हो गया। वो टॉप फोर में इसलिए मुझे पता चला कि मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिली
1: जी।
0: अगर वो नेशनल स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो सेलेक्ट होने के बाद भी मैं एनएसडी नहीं जा पाता, क्योंकि मेरी जो आर्थिक परिस्थिति तब भी थी वो इतनी ही क्या कहती थी कि बहुत गरीब किसान का बेटा था, तो इसीलिए वो संभव नहीं था वहां जाकर वो सारा खर्चा करना। पर वो स्कॉलरशिप मिली, इसीलिए आज मैं आपके सामने बैठ के बातें कर रहा हूँ।
1: क्या बात है, बहुत लंबी यात्रा हमने आपकी देखी यहाँ तक कि यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं। हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब आप सिनेमा से परिचित हो रहे
0: जी,
1: हैं
0: जी, जी, जी,
1: आपने बताया कि इतने तरह की फिल्में देखी।
0: मुगले आजम देखी,
1: वाह, मुगले आजम का गाना,
0: मुगले आजम का गाना सुनते हैं।
1: जब प्यार किया तो डरना
0: डरना क्या, क्या बात है।

0: मुगले आजम का ये गाना प्यार की बात करता है और कॉलेज के जमाने में लड़कों को किसी न किसी तरह से प्रेम तो हो ही जाता है। आपके साथ क्या मामला था?
1: बहुत हुआ, उसमें क्या है, शर्माने की क्या बात है। पर मैं फोकस्ड बहुत था
0: जी,
1: क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी जिम्मेदारियां क्या है और मुझे जाना कहाँ है, क्योंकि मैं तो लीडर था
0: जी,
1: तो हमेशा 10-20 लोगों के बीच में रहने की आदत थी। तो इसीलिए वो वाला जो सिलसिला था, बहुत सारी लड़कियों से बातें होती थी, पर एक पर्टिकुलर फोकस हो के किसी के प्यार में पड़ो, वो वाला माहौल लगा कि ये ठीक नहीं है। इसके लिए और बहुत सारी जिंदगी पड़ी है वो करने के लिए। तो मुझे जाना तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था। आकर्षण का केंद्र तो आप वैसे भी होते हो, अच्छा बोलते हो, मंचों से अच्छा बोलते हो, आपको मॉब मैनेज करने आता है, आपको ह्यूमन मैनेजमेंट पता है, तो आप लीड में हो तो अपने आप में लोगों के आकर्षण का केंद्र तो आप बन जाते हो। पर आपके आकर्षण का केंद्र कोई इंडिविजुअल बनने की वो क्या कहते हैं वो समय नहीं था, इसलिए मैं वो सारा पार करके फिर सीधा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंच गया।
0: क्या बात है। लेकिन इस दौरान आपने जो बुनियादी नाटकों की दिशा में जो काम किया, जो बीड में या औरंगाबाद में जाके किया, उसके बारे में बताइए।
1: नहीं, बीड में क्या था कि हम ये नाटक करते थे, कौन सा, गैदरिंग के नाटक
0: का। जी जी जी, गैदरिंग का मामला।
1: उसके बाद हमारे एक मित्र श्रीराम बड़े ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सेलेक्ट हो गए
0: जी।
1: तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था, शायद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, तो वो सेलेक्ट हो गए वहाँ। तो उनका जो छुट्टियों में आना जाना होता था, तो हम उनसे सीखने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करते थे। मैं लीडर था तो कॉलेज में समर वेकेशन में 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की कार्यशालाएं आयोजित करते थे। फिर उसका कोई एक नाटक होता था, वो फिर अभी जुलूस मुझे याद आ रहा है, नाटक हमने किया बादल सरकार का
0: जी।
1: वो जुलूस के शहर भर में शो किए।
0: वाह,
1: अब ऐसा लगता है कि वो कितने लोगों को समझ में आ गया, रास्ते के आदमी को तो ठेठ बात होनी चाहिए। तो पथनाट्य भी बहुत सारे किए। तो इस तरीके के वो छुट्टियों के माहौल में एक दो नाटक तो करते ही थे। तो गंभीर नाटक क्या होता है, उसकी तरफ जो खिंचाव या आपका आकर्षण का केंद्र बना। गैदरिंग के नाटक से एंटरटेनिंग नाटक क्या होते हैं, उसका संस्कार अपने आप मिलता रहा
0: जी।
1: जो शिक्षक थे उस समय के, पढ़ाने वाले, नाटक या डायरेक्ट करने वाले, उन सबसे जो भी उनका आकलन था, वो बगल वाले जो कॉलेज होते थे उनके नाटक देखने जाते थे, तो वो क्या हमसे बेहतर करते हैं, ये तुलनात्मक अध्ययन भी होता रहा। तो पथनाट्य से लेके मनोरंजन का नाटक में भीड़ में ही समझ गया।
0: वाह वाह।
1: फिर वहां से मैं औरंगाबाद जब गया तो मुझे किसी ग्रुप के साथ ज्वाइन होना था, जहां पर राज्य नाट्य स्पर्धा के लिए नाटक होता था। पर मेरा टेम्परामेंट वो राज्य नाट्य स्पर्धा वाला भी नहीं था, और उनका अपना अपना ग्रुप में लोग होते थे तो उनके साथ वो अपना काम करते थे। तो अचानक वहां एक दिन पता चल गया कि यहां दलित थिएटर मूवमेंट की शुरुआत हो रही है।
0: ओ ओ ओ।
1: तो उनके कुछ मित्रों से मेरी जान पहचान हुई थी, मूवमेंट में था मैं, स्टूडेंट एक्टिविटी में था तो जान पहचान तो हुई थी। तो एक हमारे साहेबराव गायकवाड़, ये साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे वहां के अंबेडकर कॉलेज में या मिलिंद कॉलेज में, उनसे राबता था, आना जाना रहता था उनके घर में। तो एक दिन पता चला कि वो एक नाटक कर रहे हैं वहां, दलित साहित्य सम्मेलन पहली बार हो रहा है और जो मिलिंद कॉलेज के परिसर में हो रहा है, और उसमें दत्ता भगत

0: लिखित आवर्त नाम का नाटक करना है और वो हीरो की तलाश में है। तो मुझे बुलाया गया और मुझे देखते ही अविनाश डोळस प्रोफेसर थे वो भी, और मेरे ही गुरु त्र्यंबक महाजन
1: जी
0: वो पढ़ाने आते थे, तो वो मुझे जानते थे कि ये बच्चा रॉ है पर बहुत अच्छा है। तो उन्होंने मुझे बुलाया और वो रोल दे दिया और मैं वो रोल निभाया और उसके 10-15 शो हमने किए।
1: वाह।
0: तो दलित थिएटर मूवमेंट की शुरुआत जो हुई उस मूवमेंट में एक काइंड ऑफ फाउंडर मेंबर के हैसियत से या एक एक्टर के हैसियत से मुझे मौका मिला। उसके बाद दलित थिएटर ने ही दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट नाटक खेला, थांबा राम राज्य येत आहे,
1: ओहो
0: रुकिए राम राज आ रहा है।
1: हाँ।
0: ये प्रकाश त्रिभुवन ने लिखा हुआ नाटक है, मेरे मित्र थे तो उन्होंने लिखा हुआ नाटक है, उसमें फिर बड़ा नाटक था ये लगभग, तो उसमें फिर लीड रोल करने का मौका मिला। तो ये दो जो फाउंडेशन प्ले हैं दलित थिएटर मूवमेंट के महाराष्ट्र के और खासकर औरंगाबाद के, तो उस मूवमेंट का मैं हिस्सा बन गया और उस थांबा राम राज्य थे बहुत पॉपुलर हो गया वो नाटक
1: जी।
0: वो दिल्ली के श्रीराम सेंटर तक जो फेस्टिवल होता था नेशनल फेस्टिवल वहां तक पहुंचा। वो पीटर ब्रुक ने देखा,
1: गजब गजब।
0: हाँ, और पीटर ब्रुक ने उस नाटक की इतनी तारीफ की, दूसरे दिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आकर उनका व्याख्यान रखा था। तो उसके पहले दिन वाले शो में मैं लीड रोल कर रहा था, वो भी स्पेशल परमिशन लेके एनएसडी में, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था।
1: अरे
0: हाँ, तो अचानक पीटर ब्रुक उस नाटक की तारीफ कर रहे तो लोगों को लगा, अरे बापरे, हमारा ही क्लासमेट उसमें तो कल लीड रोल कर रहा था, उन्होंने भी नाटक देखा था। तो इस तरीके से उस नाटक की तारीफें हुई। फिर यहां मुंबई में भी छबीलदास थिएटर में भी उसके शो हुए, क्योंकि हमें लगा कि ये केवल मराठवाड़ा तक रहना नहीं चाहिए, अलग अलग जाके उसको परफॉर्म, तो ये परफॉर्मेंस करते रहे। पर जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का सिलेक्शन हो गया उसके बाद फिर मुझे उस नाटक को दुर्भाग्य से छोड़ना पड़ा
1: जी।
0: फिर और वो नाटक चलता रहा, किसी और ने रोल कर लिया, पर उस नाटक में उस संवेदना ने मुझे एक और एक मौका दिया कि जो वंचित है, जो दलित है, वो उस आदमी की आवाज बनना पड़ेगा थिएटर को या कहीं भी, या गरीब किसान है, गरीब मजदूर है। तो ये मूवमेंट में जो मैं कर रहा था, सौभाग्य से मुझे उसी मंच पे एक कदम रखने का मौका मिला जहां और किसी की आवाज बनकर आप उस माध्यम के द्वारा लोगों के मन में और क्या मस्तिष्क पे या ये नाटक का अनुभव ले जा रहे हो और उनको अंतर्मुख करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये औरंगाबाद का दौर रहा। फिर जो छुटपुट छोटे मोटे नाटक एकांक किया, क्लास में किया, यहां किया, वहां किया, ये सारा अनुभव लेकर मैं दिल्ली पहुंच गया
1: जी। यहां एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: क्या बात है।

0: एनएसडी की एडमिशन की जो प्रोसेस थी, क्योंकि आप बहुत छोटे बैकग्राउंड से आ रहे
1: जी
0: थे और
1: जी जी
0: एनएसडी राष्ट्रीय मुकाबला होता है,
1: जी
0: तो वहां आपने अपनी एक बहुत जोरदार उपस्थिति उस परीक्षा में दर्ज की,
1: जी
0: वो कैसे हुआ?
1: एक तो हमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में मालूम हुआ था, एक
0: जी
1: तो हमारा ही सीनियर श्रीराम बड़े वहां सेलेक्ट हुआ था, उसके दूसरे साल शिवदास घोड़के वो
0: जी
1: सेलेक्ट हो गए, तो दोनों मेरे मित्र थे, और तीसरे साल मैं सेलेक्ट हो गया। मैंने एक साल
0: जी
1: नाट्यशास्त्र से लेके जितना भी नाटक के ऊपर लिखा गया वो सब पढ़ा, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के, मतलब की मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी और आपकी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है।
0: जी
1: मैं
0: जी
1: हर दिन शाम को क्लास होता था क्योंकि इवनिंग डिपार्टमेंट था, तो दिन भर क्या करे, तो दिन भर लाइब्रेरी में जाके बैठता था और हर दिन एक नाटक पढ़ता था। ये
0: अरे
1: कसम खाई
0: बाप
1: थी
0: रे,
1: मैं जब तक यहां रहूंगा मैं हर दिन एक स्क्रिप्ट पढ़ूंगा।
0: तो सैकड़ों नाटक पढ़ लिए
1: तो
0: होंगे।
1: मैंने तो मुझे लगता है उस पूरे 8-9 महीने के दरमियान 200-250 नाटक तो पढ़ लिए।
0: बाप
1: मान
0: रे,
1: लो किसी वजह से आज कोई मित्र आ गए, कहीं सिनेमा देखने गए, कोई नाटक देखने गए, कुछ हुआ और आज नाटक नहीं पढ़ पाया, तो दूसरे दिन दो पढ़ना।
0: वाह वाह वाह,
1: और उसके साथ साथ फिर जितना भी सैद्धांतिक पक्ष था नाटक का, चाहे वो मराठी की किताबें मराठी में जो आए आर्टिकल्स है, हिंदी में जो आए, अंग्रेजी में जितना समझ में आता था, वो सारे आर्टिकल स्टैनिस्लावस्की से लेके जितनी भी थियरीज है वो सब पढ़ ली।
0: जी
1: समझ में कितनी आई वो बाद में पता चला, पर पढ़ तो लिया। और दुनिया भर किस किस्म का थिएटर होता है, नाटक होता है, क्या संभावनाएं हैं, उसके बारे में बहुत सारे जो मैगजीन आते थे, इंटरनेशनल भी आते थे, हमारे यहां भी नाट्य दर्पण निकलता था, कोई भरत शास्त्र निकलता था मराठी के भी, ये सारा पढ़ने का मौका मिला
0: तो एक
1: उस
0: सॉलिड
1: यूनिवर्सिटी
0: बैकग्राउंड
1: में।
0: लेके
1: एक
0: गए।
1: सॉलिड बैकग्राउंड और प्रैक्टिकली भी, आप फोक से तो थे ही, फोक का था आपके ऊपर। और कॉलेज में 2-3 साल जो आइटम्स हमने किए, जैसे अम्बेसा गोंधड़ी का आइटम किया था मैं और श्रीराम बड़े, वो इतना पॉपुलर हो गया कि साल भर का जो हमारा शिक्षण का खर्चा उस एक आइटम से निकलता था। लोग एक्चुअली वो
0: पैसे
1: स्टेज पे
0: फेंकते थे।
1: इतने पैसे फेंकते थे।
0: वाह,
1: एक बार तो जो बड़ा कॉइन फेंका किसी ने, बड़ा रुपए का कॉइन होता था उस समय, वो ढोलकी के, हाँ,
0: पेट में लगा।
1: पेट में लगा और वो ढोलकी फट गई,
0: अरे बाप
1: उसके
0: रे।
1: बाद भी वो रुका नहीं है। तो ऐसी सारी, कोई 10 रुपया दे रहा है, मुझे याद है कि वहां तब हमारी जो कॉलेज की और खासदार रही है, एमपी रही है, थी वो केशर बाई, केशर काकू, हम उनको
0: जी
1: काकू बोलते थे, तो उन्होंने 100 रुपये का जो नोट दिया हमको, इतना बड़ा लंबा नोट था। अब
0: हाँ
1: वो 100 रुपया तो बहुत हो गए हमारे लिए, एक आदमी के लिए, एक साल के लिए,
0: जी,
1: उससे ज्यादा खर्चा होता नहीं था। तो ये सारा का सारा, तो वो भी एक अनुभव था। और ये सारा अनुभव लेके आप, और फिर मैंने आषाढ़ का एक दिन का मैं सेट डिजाइन किया था, उसका मॉडल भी लेके गया,
0: मॉडल भी लेके गए।
1: मॉडल भी साथ में लेके गया, फिर कॉस्ट्यूम प्लेट्स कुछ की थी वो भी लेके गया, ताकि आप दिखाएं कि मुझे बाबा बहुत सारा है
0: अनुभव
1: और
0: है।
1: सीखने की इच्छा है और आगे बढ़ाइए। तो वो सब देखने के बाद मुझे लगा कि कारण जी जो डायरेक्टर थे, बीवी कारण जी जो आगे भी मेरे गुरु रहे, तो वो थे। और मेरा इंटरव्यू बड़ौदा सेंटर में हुआ, तब मुंबई सेंटर हुआ करता था, पर वो उस समय पता नहीं किसी और कारण वो बड़ौदा में शिफ्ट हो गया, तो बड़ौदा में मेरा इंटरव्यू हो गया। और उसके एक 15-20 दिन के बाद चिट्ठी आ गई कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है, आप फलाना तारीख को आके ज्वाइन हो जाइए, क्लासेस शुरू हो रहे।
0: वाह क्या बात है। मैं इस पूरी यात्रा से जुड़ी एक बहुत दिलचस्प बात पूछने वाला हूं, पर यहां एक गाना सुनना है।
1: यार रहमान का लगाइए
0: ठीक है, दिल से गाना सुनते हैं,
1: या
0: दिल से।

उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

विविध भारती पर कार्यक्रम रंग तरंग के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

अनुप जलोटा, संजय राज की आवाजों में आपने सुना नलिन वर्मा का लिखा ये भजन। सचिन सतीश ने इसे संगीत से सजाया था। एल्बम शिव शंकर देवाधिदेव, इस एल्बम से हमने इस भजन को आपके लिए सुनवाया।

0: शिव आराधना। इस एल्बम से आप सुन रहे थे भजन अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाजें, महेंद्र दहलवी के बोल, दिलीप सेन, समीर सेन का संगीत।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

बायजू मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में कबीर दास का लिखा ये भजन आप सुन रहे थे, मन मस्त कबीरा। इस एल्बम से बायजू मंगेशकर ने ही इसे संगीत से सजाया था। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

कविता कृष्णमूर्ति, करसन सगार्थिया और साथियों की आवाजों में हम दिल दे चुके सनम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। महबूब ने इसे लिखा, स्माइल दरबार का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं आई लव यू इस एल्बम से उदित नारायण की आवाज में गीत। फैज अनवर ने इसे लिखा है, संदेश सांडिल्य का संगीत।

0: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
1: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देते

0: आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
0: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा।
2: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती।
2: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
2: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
2: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
2: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम रंग तरंग।

इब्राहिम अश्क का कलाम आप सुन रहे थे भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ों में। मोहब्बत इस एल्बम से इसलिया भूपिंदर सिंह का ही संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। वाणी जयराम की आवाज़ में सुनते हैं ये गज़ल और इसे परवाज़ एल्बम से हमने लिया है। दानिश बरेलवी ने इसे लिखा। मुरली मनोहर स्वरूप का संगीत।

0: शमीम जयपुरी का यह कलाम आप सुन रहे थे। अनूप जलोटा की आवाज में उन्हीं का संगीत भी इसमें आपने सुना।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

बाबा सहगल की आवाज में आप सुन रहे थे जुगनी मस्त कलंदर एल्बम से ये गीत। बाबा सहगल और देव कोहली ने इसे लिखा और बाबा सहगल का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर रंग तरंग। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। जाने मन फिल्म का ये गीत गुलजार ने लिखा है, अनु मलिक का संगीत, सोनू निगम और साधना सरगम की।

जाने मन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। सोनू निगम और साधना सरगम की आवाजें, गुलजार के बोल, अनु मलिक का संगीत। इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। रंग

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में हो रही है। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026 के तहत कार्यक्रम की थीम है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या गणना 1 सितंबर से शुरू होगी। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक डिजिटल रूप से स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण जनगणना पूरी करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना का कार्यक्रम विशेष व्यवस्था के साथ और देश के बाकी हिस्सों से पहले रखा गया है। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने कहा है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में और वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। झारखंड में JPSC JSSC भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
1: JPSC JSSC अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट टिक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में आज भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पवित्र सावन महीने के तीसरे सोमवार पर भगवान के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां जमा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के निकट परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने आज बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित 4 जिलों शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट

0: और चराईदेव के प्रभावित परिवारों के लिए अंतरिम वित्तीय सहायता जारी की। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में आधे प्रतिशत की गिरावट में चल रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 515 अंक की गिरावट से 77,494 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन, भूपिंदर सपन चक्रवर्ती और गुलशन बावरा की आवाजों में सुन रहे थे सत्ते पे सत्ता फिल्म का ये गीत, गुलशन बावरा के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम में हम अभिनेता सचिन पिलगांवकर के जन्मदिन पर उनकी फिल्म के कुछ गीत सुन रहे हैं।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। और अंतराल में जाने से ठीक पहले हमने आपको सुनवाया गीत गाता चल फिल्म का गीत, जिसे लिखा और संगीतबद्ध किया रविंद्र जैन ने, और आवाज आपने सुनी जसपाल सिंह और साथियों की। कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं नदिया के पार फिल्म से।

0: यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहां से हुजूर।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। अभिनेता सचिन पिलगांवकर के जन्मदिन पर उनकी फिल्मों के कुछ गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: गोपाल कृष्णा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। रविंद्र जैन का गीत और उन्हीं का संगीत, यशुदास और हेमलता की आवाजें।
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

आंखियों के झरोखों से फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल, उन्हीं का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। त्रिशूल फिल्म के इस गीत में सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश को, साहिल उद्यानवी के बोल, खयाम की तर्ज।

0: लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में आप सुन रहे थे त्रिशूल फिल्म से ये गीत, साहिल लुधियानवी के बोल, खय्याम का संगीत।
1: बैठ जा, खड़ी हो जा,
2: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
3: अब कहां जाएं हम?
4: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
4: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
2: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सेहतनामा।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: ज्वेल थी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के शब्द और सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
6: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
5: सखी सहेली?
6: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
5: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
6: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
7: सखी सहेली।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: ब्रह्मचारी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहासे हुजूर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल, सपन चक्रवर्ती का संगीत, जमीर फिल्म के इस गीत में।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में रोजाना हम एक इबारत पोस्ट करते हैं हमारे फेसबुक पेज पर और उस इबारत में ही छुपे होते हैं वो गीतों उन गीतों के शब्द जो आज के इस कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। तो चलिए आज की इबारत आपको पहले एक बार पढ़कर सुना दें। हालांकि आपने उसे पढ़ ही लिया है और बहुत सारे शब्द भी आपने बता दिए हैं, फिर भी हमारे जो साथी फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनके लिए वो इबारत हम एक बार पढ़ते हैं। न जाने लोग क्यों कहते हैं कि चार दिन की जिंदगी में सभी से प्यार करो, निभाते चलो, किसी का दिल न दुखाओ, जो मिले उसे अपनाओ। पर क्यों ना ये सोचा जाए कि इस चार दिन की जिंदगी में अपने मन का काम करो, न झूठे मुखौटे न झूठी मुस्कान धरो। भले न रखो अभिमान पर ऊंचा रखो स्वाभिमान, खुद पे करो भरोसा और बढ़ते चलो अपनी राह। शायद हमारा कुछ ऐसा ही व्यक्तित्व रचा होगा ऊपर वाले ने और हम इस दुनियादारी में कहां से कहां पहुंच गए। ये हमारी आज की इबारत है और इस इबारत पर भी बहुत सी बातें हमारे साथियों ने लिख भेजी हैं। हमारे एक साथी ने एक कविता लिखी कि चार दिन की है जिंदगी फिर क्यों इतना अभिमान, आज जो अपना लगता है कल बन जाता अनजान। कुछ पल हंस लो कुछ पल बांट लो अपनों के संग प्यार, क्या पता फिर मिले ना मिले जीवन का ये सुंदर उपहार। न शिकायतों का बोझ रहे न मन में कोई मलाल, जो मिला उसे स्वीकार करें हर पल को करें खुशहाल। वहीं हमारे एक साथी कह रहे कि जिंदगी के सफर में सबसे मित्रतापूर्ण व्यवहार बनाए रखने के संदेश देती भारत का स्वागत है, प्यार बांटते चलो। और हमारे एक साथी ने कहा कि मन को पिंजरे में न डालो, मन का कहना मत टालो। बिल्कुल सही बात ये आपने कही। तो और हमारे एक और साथी कहना है कि भगवान की भक्ति करो, बाकी सब मोह माया है। आप भी अपने विचार हम तक पहुंचाइए हमारे फेसबुक पेज के जरिए www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर जाकर आपको विविध भारती का फेसबुक पेज मिल जाएगा। और अगर आप अब तक फेसबुक का ऐप अगर आपके पास है तो वहां आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा टाइप कर सकते हैं, देवनागरी में लिखा है ये, और आपको एक नीले बैच के साथ मिल जाएगा हमारा पेज। और कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाते हैं एक गीत, लेकिन उससे पहले हमें ये बताइए कि क्या आपने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम किया है जिसे सिर्फ आपने अपने लिए किया हो, किसी और के बारे में ना सोचा हो।

आह, फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। और कभी कभी आह निकल जाती है जब हम दूसरों के लिए ही जीते जाते हैं। क्या आप भी दूसरों को खुश रखने के लिए अपना मन मारते हैं? आपका मन ना हो लेकिन वो काम करते हैं, कुछ रिश्तों को इस तरह से निभाते हैं जब बिल्कुल भी मन ना हो उन्हें निभाने का, या दूसरी तरफ से कोई भी कोशिशें नहीं दिख रही हूँ। हमारे एक साथी तो कह रहे हैं कि किसी का दिल न दुखाएं, तो ये तो सही है, सही है ना? ऐसा नहीं कर सकते कि सबको परेशान करते हुए आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के लिए किसी को रास्ते से हटाना नहीं, बल्कि सबका अच्छा करते हुए बढ़ें, तो इसमें क्या खराबी है? हाँ, अगर बिना मतलब कोई परेशान करे तो फिर इसको छोड़ना सही है, ऐसा वो कह रही हैं। लेकिन हम तो इन्हें ये बताना चाहते हैं कि हम तो ये नहीं कह रहे कि आप किसी का दिल दुखाएं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप अपना दिल ना दुखाएं और अपने बारे में भी थोड़ा बहुत सोचें। और ज़रूरी नहीं कि आप सभी से सिर्फ मुस्कुराकर मिलें, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने बारे में सोचें। हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जो आपसे मिलता हो लेकिन आप उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, सिर्फ दुनियादारी निभाने के लिए ही आप उनके साथ बने रहते हैं या मुस्कुराते रहते हैं कि भाई निभाना तो है ही। तो ये निभाते रहना कितना सही है कितना गलत, इस पर कर रहे हैं हम आज बात। क्योंकि अगर है सिर्फ 4 दिन की जिंदगानी, तो क्यों ना उसे हम अपने लिए जिए। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वे दूसरों को हर हाल में खुश रखने की प्रवृत्ति के मानसिक दबाव पर ये एक सटीक कटाक्ष है। अक्सर 4 दिन की जिंदगी मुहावरे का उपयोग समझौता करने और चुप रहने के लिए किया जाता है, किंतु यहाँ इसी मुहावरे का प्रयोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मखोज के अधिकार को सिद्ध करने के लिए किया गया है। और हमारे साथी कहते हैं कि आज का गद्यांश जीवन के यथार्थ स्वाभिमान और निष्कपट प्रेम से जुड़ा हुआ है। जिंदगी यदि 4 दिनों की है, ये वाक्य सीधे तौर पर एक अर्थ दे रहा है कि जिंदगी की नश्वरता का बोध है। अस्तित्ववाद कहता है कि जिंदगी सीमित है, इसलिए मनुष्य को बिना कोई मुखौटा लगाए अपने अस्तित्व के वास्तविक और सच्चे स्वरूप को पहचान कर जिंदगी को जीना चाहिए। यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि स्वाभिमान का अर्थ अहम प्रेम नहीं बल्कि अपनी आत्मा के स्वरों को सर्वोपरि रखना है, जिससे आत्मसम्मान और विवेक जिंदगी का आधार बन जाए। सभी को प्यार करो यानी सार्वभौमिक प्रेम के सिद्धांत को अपनाया जाए। हमारी एक और साथी हैं, वो कहती हैं कि आज की भारत में आम आदमी का, उसके वर्तन का और समाज मन का सही चेहरा उभर रहा है। रूढ़ियों और अपेक्षाओं के नीचे दबे सर्वसाधारण आदमियों के सामने खुद के लिए जीना कब सीखोगे, ऐसा सवाल भी खड़ा कर दिया है। अभिमान यानी आत्मसम्मान

0: और गरिमा की रक्षा करते करते स्वाभिमान रखना यानी खुद को विनम्र और आत्मानंद के लिए मजबूत बनाना भी उतना ही जरूरी है। तो ये भी बात है कि क्या हम दूसरों की मर्जी के अनुसार ही सारे काम करते हैं। तो ये भी आप हमें बताइए कि अगर एक दिन आपको ऐसा पता चले कि आज आपको किसी भी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं जाएगा, किसी भी चीज़ के लिए कोई जजमेंट पास नहीं होगा, या ये नहीं कहा जाएगा कि इस उम्र में आप ये काम नहीं कर सकते, या आप इस ख़ास जगह पर हैं तो आपको ये नहीं करना चाहिए, अगर इस तरह की बंदिशें एक दिन के लिए भी आपसे हट जाएं, या आपके मन की जो ये दुनियादारी है वो आपसे हट जाए, तो कौन सा काम आप करेंगे ये हमें बताइए। और तब तक सुनाते हैं आपको एक ऐसा ही गीत जो आपको काम इस तरह का अपने मन का काम करने के लिए प्रेरित करेगा। और ये गीत किस फिल्म का है हमें बताइए, किस पर फिल्माया गया है ये भी बताइए।
1: जंगली कहे कहने दो जी कहता रहे।

जंग जी कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें, चाहे कोई

0: कोई मुझे जंग भी कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे।
1: जंगली फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे। शमी कपूर इसमें नजर आते हैं। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया और हमने आपसे पूछा था कि क्या आपने कभी कोई ऐसा काम किया है जो बिल्कुल अपने मन से आपने किया हो। साथ ही ये भी बताइए कि आज जिंदगी में कोई ऐसा काम किया जिसके लिए सब रूठ गए हों, सबसे बगावत करके कोई काम आपने किया हो तो भी हमें बताइए। और हमारे साथी ने लिखा है कि मैंने अपना जीवन यापन करने का एक हुनर अपने लिए किया है और मेरा जीवन अच्छे से मैं चलाता हूँ उससे। और हमारे साथी कहती हैं कि 4 दिन की जिंदगी में सबको खुश रखते चलो ये कहते हैं सभी, लेकिन

नहीं कोई पूछता कि इस कोशिश में खुद को कितना खो दिया। इस छोटी सी जिंदगी में दूसरों को रिझाने के लिए नकली मुस्कान ओढ़ने से बेहतर कि हम वो करें जो हमारे दिल को सुकून दे। झुकना वहां ठीक है जहां रिश्ते मायने रखते हों, पर अपने आत्मसम्मान का सौदा करके किसी के सामने गिरना खुद के साथ अन्याय है। ईश्वर ने हमें किसी के सांचे में ढलने के लिए नहीं बल्कि अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए भेजा है, इसलिए झूठे मुखौटों को उतारिए, खुद पर विश्वास रखिए और अपने स्वाभिमान के साथ अपनी चुनी हुई राह पर आगे बढ़िए। हमारी कौर साथी ने कविता लिख भेजी कि वक्त मुट्ठी में रखी रेत सा फिसलता रहता है और हम हैं कि उसे रिश्तों, ख्वाहिशों और फर्जों में बांधते रहते हैं। मन की सुन लेना भी जरूरी है, मगर किसी अपने की खामोशी पढ़ लेना भी अपने रास्ते पर चलना आजादी है और चलते हुए किसी का हाथ न छूटे शायद यही इंसानियत है। इसलिए इन चंद दिनों को न मुखौटा बनाइए न शिकायत, बस इतना कीजिए कि जो बनना चाहते थे थोड़ा सा बन जाएं, जो अपने थे उन्हें थोड़ा सा अपना कह जाएं। फिर जब शाम उतरेगी जिंदगी की तो अफसोस कम होंगे और यादें शायद थोड़ी ज्यादा। हमारे एक साथी का कहना है कि चल अकेला ये गीत भी सुन सकते हैं क्या आज? हालांकि आज की थीम पर ये गीत तो बिल्कुल भी नहीं जमता, क्योंकि अकेले चलने की बात नहीं हो रही है, बात आप सबके साथ रहकर भी अपने मन की कुछ कर सकते हैं इसकी हो रही है, और साथ ही ये शब्द भी इसमें कहीं ना कहीं मिल नहीं रहा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि स्वाभिमान अपने आप को दूसरों से बड़ा समझना नहीं बल्कि अपने अस्तित्व और अपनी भावनाओं का सम्मान करना है। जीवन में हर किसी को खुश रखना संभव नहीं होता। स्वाभिमान वो ताकत है जो कहती है मैं किसी से कम नहीं और किसी को छोटा करके बड़ा बनने की जरूरत भी नहीं। किसी के स्वाभिमान की लकीर खींची गई हो उस लकीर से अपनी लकीर को बड़ा करना होता है, किसी की लकीर को मिटाना नहीं होता। तो बस ये बात तो हो रही है, साथ ही साथ फिल्मों की बातें भी हो रही हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उन्होंने कि क्षणभंगुर जीवन की यथार्थता परिभाषित करता सुंदर गीत, आह फिल्म के गीत के बारे में ये कह रहे हैं। और भी बहुत से गीतों के बारे में हमारे साथियों ने कहा है कि ये गीत शामिल हो सकते हैं। देखते हैं कि आज के जो गीत शामिल हो रहे हैं उनमें आपकी लिस्ट के, हालांकि बहुत से गीत तो हैं आपकी लिस्ट से इसमें से, लेकिन फिर भी आप हमें बताते चलिए कि कौन से गीत आपकी लिस्ट में से आज शामिल होते जा रहे हैं इस कार्यक्रम में। और ये भी बताइए कि कौन कौन सी बातें जो आपके जीवन में रही हैं वो आज के इस कार्यक्रम से संबंधित है, कि आप अपने जीवन को किस तरह से बांधते हैं, किस तरह से देखते हैं, किसके लिए आप करते हैं अपने मन को थोड़ा सा नरम, और कब कब अपने मन के काम करने के लिए, मनमर्जी करने के लिए मचल उठते हैं आप। हमारे एक साथी ने बहुत अच्छा किस्सा भेजा है, बताएंगे, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं। बताइए कि कौन सी फिल्म से ये गीत हमने लिया और इसे लिखा किसने।

आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में सच्चाई फिल्म का गीत आपने सुना, जिसे लिखा राजेंद्र कृष्ण ने, और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज की इबारत पढ़ते ही दिल गहरी सांस लेकर बुदबुदाया कि होना तो ऐसा ही चाहिए, पर होता कहाँ है। रिटायरमेंट के दिन सहकर्मी भी यही कहते हैं कि अब आपकी दूसरी पारी शुरू हो रही है, अभी तक आप दूसरों के लीजिए, अब अपने लीजिए और सभी इच्छाओं को पूरा करें। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। हम जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों का मन रखने और लिहाज करने में व्यतीत कर देते हैं, और इसकी ऐसी आदत हो जाती है कि जब होश आता है तब तक इच्छाएं मर चुकी होती हैं और शरीर अक्षम हो चुका होता है। संक्षेप में एक शेर आज की इबारत का माकूल जवाब हो सकता है, उम्रे दराज मांग के लाई थी चार दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। भाई क्या बात आपने कही, बिल्कुल मर्म को समझा आपने आज की इबारत की। और कुछ यही बातें की जा रही हैं कि एक वक्त के बाद एहसास होता है कि बहुत सा काम हमें करना था अपने मन का, जो हमने बिल्कुल नहीं किया। हम दूसरों के बारे में सोचते रहे, कभी कभी कुछ जो बंदिशें या सीमाएं थी वो हमारी अपनी ही बनाई हुई थी, जो हमें बाद में समझ में आता है। हमारे साथी कह रहे हैं कि लता जी की आवाज का एक गीत है, दो दिन की जिंदगी कैसी है जिंदगी। जब जब इस गीत को सुनती हूँ तो लगता है जिंदगी चाहे दो दिन की हो या चाहे चार दिन की, हम जो भी पल जिए उसमें किसी तरह का अपराध बोध ना हो। हम अक्सर ये सुनते हैं कि दूसरों का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, पर अपने दिल के सुनते हैं, अपने दिल को कितना दुखाते हैं। हर समय पूर्ण बनने की कोशिश में दिन गुजर जाते हैं और हम हाथ मलते रह जाते हैं। सो अपने दिल के सुने, न किसी को दुखी करें न खुद दुखी हों। ये जो जितने दिल मिले हैं इन्हें भरपूर जी लें। वाकई बहुत ही अच्छी बात हमारे एक साथी ने दी है, नागपंचम की बधाई, तो हम भी देते हैं उन्हें बधाई और साथ ही साथ उन्हें देते हैं ये संदेश कि अपने मन की जीना बहुत जरूरी है। कभी कभी मन नहीं होता कि हम मुस्कुराएं, या कभी कभी मन उदास होता है फिर भी हम कहते हैं कि हम ठीक हैं, तो इस तरह की बातों से भी हमें बचना चाहिए। तो क्या वाकई हम अपने मन के सुनते हैं? आप हमें बताइए और सुनिए ये गीत, जिसमें बात है कुछ ऐसी ही, और आपको ये बताना है कि किस फिल्म का ये गीत है। आवाज तो आप पहचान ही जाएंगे, संगीतकार का नाम पहचानिए।

सच्चा झूठा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। इसमें आपने सुना किशोर कुमार की आवाज, और हमने नहीं पूछा था फिर भी आपने बताया कि राजेश खन्ना नजर आते हैं इस फिल्म में, इस गीत में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सही जवाब दिया। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन से ही उनका सपना था कि वो एक आरजे बने रेडियो में, लेकिन समय के साथ बैंकिंग जॉब करना पड़ा, फिर 36 साल के बाद रिटायरमेंट हुआ और आरजे बनने की इच्छा हुई तो ऑडिशन क्लियर किया और अब अपना सेकंड फेस यानी लाइफ की जो दूसरी पारी है वो एक आरजे के रूप में कम्युनिटी रेडियो में बिता रहे हैं। और ये उनकी एक चॉइस थी, उनका एक शौक था और इसे उन्होंने चुना और आज वो बड़े खुश हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आपने अपने इस शौक को, अपने मन की बात को बिल्कुल ध्यान रखा कि आपका मन क्या चाहता था। भले ही आपको कुछ और करना पड़ा, लेकिन जैसे ही मौका मिला आपने ये नहीं सोचा कि उम्र है आप क्या करें, और आप आगे बढ़े। इसके लिए बहुत बहुत आपको हम शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे एक साथी कहते हैं, अगर आप किसी की मदद चाहकर भी ना कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, पर उसकी राह में रुकावट ना डालें। अगर ये बात हर आदमी मानने लगे तो दुनिया की आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम वो क्या करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं खूब खेलूंगा क्रिकेट, अगर उन्हें जज ना किया जाए तो वो क्रिकेट खेलना चाहेंगे। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अगर उन्हें कोई रोके टोके नहीं तो मैं छोटे छोटे निक्के निक्के से बच्चों के साथ खेलना चाहूंगी। हम तो कहेंगे कि कोई रोकता टोकता भी है तो रहने दीजिए, आप अपना जो ये खेलने का मन है वो कर लीजिए। भाई इतना अच्छा सा शौक आपने सोचा, इतना अच्छा आपका मन में ये छोटे सा एक ख्याल है, इसके लिए भी इतना सोचेंगे तो क्या होगा, है ना। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कुछ सच कहें तो अपने लिए ज्यादा तो कुछ नहीं किया, बस दूसरों की खुशी कैसे मिले इन्हीं बातों का ध्यान रखा। पहले मायके में सबका ध्यान रखना, सबके काम करना, सबको खिला के खाना, फिर ससुराल में भी बच्चों और सबका ख्याल।

सदा रखा, लेकिन अब जीना है खुद के लिए और हम करते हैं कुछ ऐसे काम जिससे हमें खुशी मिले। मिलते हैं अपने दोस्तों से, ढूंढते हैं छोटी छोटी खुशियां, कभी कभी खुद की पसंद का खाना भी बनाते हैं और बच्चों से कहते हैं कि आज हम यही बनाएंगे। ये हुई ना बात, क्योंकि ऐसा करना बहुत जरूरी है। अगर आप रोजाना दूसरों की पसंद का ही ख्याल रखते रहेंगे तो आपकी पसंद का ख्याल कौन रखेगा। हमारे एक और साथी कहते हैं कि क्या कहने इस गाने के, बहुत साल हो गए इस फिल्म को देखे हुए, लेकिन इतने सालों बाद भी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब कल की बात हो। शम्मी कपूर और सायरा बानो की बहुत सुंदर अदाकारी इस फिल्म में, और देखकर पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई। जंगली फिल्म के गीत के लिए इन्होंने कहा। हमारे एक और साथी ने कहा कि अगर उत्तरदायित्व का बोझ हट जाए तो जरूरतमंद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा, शिक्षण मेरा शौक है। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कुछ रिश्तों को समर्पित है ये कहावत। तो अलग अलग बातें हमारे साथी कह रहे हैं, और जो बाकी और साथी भी हैं वो भी बता सकते हैं कि अगर उन्हें एक दिन के लिए ये मौका मिले कि वो सिर्फ अपने मन का कोई भी काम कर सकते हैं, भले ही आज उन्हें इस चीज की पाबंदी हो स्वास्थ्य के कारणों से या किसी और कारण से, मान लीजिए कि वो सब कुछ हट जाए तो क्या करेंगे आप उस एक दिन, क्या होगा आपके मन का वो काम जो आप करना चाहते हैं और कभी नहीं कर पाए, वक्त नहीं मिला या कुछ समय इस तरह का था, परिस्थिति ऐसी थी, लेकिन अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे आप, ये हमें बताइए। क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि किस चीज़ की एक कसक मन में रह गई है, तो वो क्या है हमसे साझा कीजिए आज। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत, हमें बताइए कौन सी फिल्म का है, किस पर फिल्माया गया।

छोटी सी बात फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। विद्या सिन्हा इसमें नजर आती हैं। हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है इस गीत के बारे में। हमारे साथी कह रहे हैं कि ये गीत समझ में आया था आज के भारत के बारे में, पर काम का लोड होने के कारण मैं लिख नहीं

पाया। हमारी एक और साथी कह रही कि मेरा तो मन है कि एक दिन ऐसा आए मैं आप सबके साथ स्टूडियो आकर मिल सकूं, आप सभी के साथ एक फोटो खिंचवाऊं। हमें तो पूरी उम्मीद है कि ये दिन जरूर आएगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि इस गीत की प्रतीक्षा कर रहे थे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन से स्कूल टीचर बनना चाहती थी, अब रिटायरमेंट के बाद जरूरतमंद बच्चों को स्कूल में जाकर फ्री में पढ़ाती हूँ, उनके साथ खेलती हूँ। अब इस तरह अपनी सेकेंड इनिंग चल रही है। बहुत ही खूब अच्छी तरह से आपने ये काम किया। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तो स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, मन भी लगा रहता था, स्कूल में हर खेल में भागीदारी रहती थी, फिर पढ़ाई के कारण सब छूट गया। अब अवसर मिले तो पहले अवसर मिले और पहले वाली थोड़ी स्फूर्ति भी मिल जाए तो खेलों में जाएंगे। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि शमी कपूर साहब की जो जंगली फिल्म का गीत उन्होंने सुना, उसके लिए वो कहने की कुछ लोग को इसी तरह की जिंदगी पसंद आती है तो उनके लिए तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन दूसरों की नज़र में खटकते रहते हैं, पर कोई बात नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अनेक विवादों का कारण बहुत छोटी सी बात होती है जो बड़ा विकराल रूप धर लेती है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जिनके साथ नहीं बनती उनसे एकदम दूर हो जाते हैं, हम तो जबरदस्ती नहीं निभाते किसी के साथ बात, ये नहीं कि सारे विचार सबसे मिलें, पर कुछ लोग अपनी ही बात मनवाने में लगे रहते हैं। हमारे एक और साथी कहने कि अपनों के साथ काहे का स्वाभिमान, ये तो बाहर वालों के साथ होना चाहिए। भाई हमें लगता है कि आप स्वाभिमान नहीं अभिमान लिखना चाहते हैं, क्योंकि अभिमान किसी से नहीं करना चाहिए पर स्वाभिमान बनाए रखना चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जिंदगी की इस भाग दौड़ में जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो एहसास होता है कि मैंने हर लम्हा दूसरों की खुशियों को संवारने में गुजार दिया। पहले बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने की फिक्र रही, तो कभी परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने की जद्दोजहद। उनके चेहरों पर खिलती मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी कमाई बनी और उनकी जरूरतों के आगे मेरी अपनी इच्छाएं चुपचाप पीछे छूटती चली गई। सच्चाई तो ये है कि अभी तक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए हो, लेकिन इस बात का मुझे कोई मलाल नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको इस बात का कोई मलाल नहीं, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप कोई ऐसा काम कीजिए जो सिर्फ आप अपने लिए करें और उससे आपको जो खुशी मिलेगी उसकी तो क्या ही कहने, उसके बारे में भी हमें बताइएगा कभी न कभी। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें ये बताइए कि क्या आप वाकई परवाह करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। और इस फिल्म का नाम भी बताइए।

दिल चाहता है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हमारे कई साथियों ने सही नाम बताया फिल्म का, और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मैं तो सोच भी नहीं पा रही कि एक दिन में क्या करूं, मैं फिर से बचपन में जाकर उन सब दोस्तों से मिलकर वही मस्ती भरा पल एक बार और जीना चाहती हूं, जहां हर पल बस खुशियां ही खुशियां हो। तो हम आपको एक आइडिया देते हैं कि आप ये कर सकती हैं कि बचपन में जो चीज़ें आप किया करती थी अपनी सहेलियों से, अब भी आप मिलने की कोशिश कीजिए, तो आपको वो खुशी थोड़ी बहुत तो ज़रूर मिल जाएगी। क्योंकि अपने मन के करने के लिए हम आपको काल्पनिक तौर पर नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ सोचिए, नहीं, करके देखिए, बड़ा मजा आएगा। हमारे एक और साथी कहने कि चाहे कोई हमें बुरा कहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग हमसे 36 का आंकड़ा रखते हैं, पर हम जीते अपनी ही इच्छा से हैं। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वो गार्डनिंग उन्हें बहुत पसंद है और वो ये काम करती हैं, वॉलंटियर करती हैं वो अपनी सोसाइटी के लिए। 15 साल हो गए और वो ग्रीनरी अवार्ड भी उन्होंने 2 बार जीता है, कैश भी मिला, सर्टिफिकेट मिला है, और ये अवार्ड उन्होंने खुद दिल्ली में ये कलेक्ट किया अपने आप ही। 200 पॉटेड प्लांट उन्होंने खुद लगाए और उनकी रखवाली करती हैं, और किसी की सहायता नहीं लेती, खुद उनकी रखवाली करती हैं। तो बहुत ही अच्छी बात आपने की, और अपने मन की आप ये कर रही हैं, और उससे लोगों का भी फायदा हो रहा है। तो ये भी होता है, जब हमारा मन हम खुद खुश रखते हैं तो उससे ही हम दूसरे लोगों को अपने आप ही खुशियां बांटते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। वैसे ही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दिल चाहता है पुरानी फिल्मों के गीत सुने, मगर अब नई फिल्म का दिल आ गया है तो दिल इसको भी सुन लेगा, कान भी सुन लेंगे। भाई, नई और पुरानी दोनों फिल्मों का दौर है, और अच्छे अच्छे गीत हैं, हमारी थीम के साथ मैच कर रहे हैं, तो क्यों ना सुना जाए। हमारे एक और साथी कह रही, हम तो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, जिससे हमें बहुत खुशी मिलती है। ऐसा लगता है हम कहीं जाकर कुछ गीत गाएं, भले ही उसमें सुर ना हो, बस अपनी खुशी के लिए। एक बात और, जब कहीं हम देखते हैं कोई गीत गा रहे हैं तो हम माइक लेकर एक लाइन ही सही गा लेते हैं, फिर बच्चे कहेंगे कि क्या मम्मी आप ये क्या करती रहती हैं। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है, कहते हैं ना परवाह के लोग क्या कहेंगे, शायद इसलिए ही अपने लिए हम कभी जिए नहीं। वही हमारे एक और साथी कहते हैं, दिल तो नहीं करता कि उनकी बातों की परवाह करें, पर आप नहीं करेंगे तो लोग जबरदस्ती आपसे परवाह करवा कर ही रहेंगे। भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर आप ठान लें कि आप किसी की परवाह नहीं करेंगे तो देखिए, फिर धीरे धीरे बेपरवाह होने का भी एक मौका मिलने लगेगा आपको। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि मन की तुलना चंद्रमा से की गई, जिस प्रकार चंद्रमा घटता बढ़ता है उसी प्रकार मनुष्य के मन की मनोदशा कही गई है। कभी इच्छाओं से अभिभूत होकर श्रृंक हो जाता है, कभी निराशा से बोझिल थकासा, कभी आशा की किरण से चमकता हुआ, हर दर्द से बेपरवाह। सच, कितनी असीम शक्तियां छुपी हैं इस मन में। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि उनका मन था कि आकाशवाणी में प्रोग्राम करूं, एक दो बार गई भी, लेकिन कुछ हालात की वजह से रेगुलर नहीं हो पाया। अब आप लोगों से मिलने का भी मन करता है, मुंबई स्टूडियो जाऊं और आप सबसे मिलूं। तो आपका ये मन जरूर, आप मन का काम पूरा कर सकती हैं ऐसा हमें लगता है, और भविष्य में जरूर ये होगा ऐसा भी हमें लगता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि तबला बजाने की इच्छा थी जो नहीं पूरी हो सकी, लेकिन अब मैंने तबला क्लास लगाया है और सीख रहा हूँ। भाई, क्या कहने, क्योंकि जब आपका मन किसी चीज़ को करने का हो और आप उसकी ओर कदम बढ़ाने की कोशिश

करते रहें तो यकीन मानिए वो काम तो होकर ही रहेगा। जैसा कि हमारा मन कर रहा है कि आपके मन की बात सुनते हुए एक गीत आपको सुनवा दें, तो देखिए ये काम पूरा हो रहा है। बताइए कौन से फिल्म का गीत है।

0: यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जय से हुजूर।
3: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर और आज हम बात कर रहे हैं कि अपने मन के कब करेंगे हम, अपने मन की बात नहीं कब सुनेंगे हम, क्योंकि बचपन से हमने तो ये सीखा है कि खुद को तो बाद में रखिए, दूसरों को पहले रखिए, खुद की खुशी के बारे में हम ना सोचें, ऐसा कई बार हमें सिखाया जाता है। लेकिन एक बात जो हमें नहीं सिखाई जाती वो ये कि हमारी जिम्मेदारी अपने प्रति है, हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई और हमारा ख्याल कैसे रखेगा। और बहुत सी बातें ऐसी भी होती हैं जो उम्र को देखकर कही जाती हैं कि आपकी उम्र इतनी हो गई है, अब आप ऐसा ना करें, वैसा ना करें। तो हमारे एक साथी कह भी रहे हैं कि इस जीवन के रंगमंच में अनेक किरदार निभाते निभाते हम अपने को ही खो बैठते हैं, सबके सुख और खुशी में हम भी सुख और खुशी पा जाते हैं, अपने निज सुख और आनंद की ओर ध्यान नहीं जाता और कर्तव्य करते करते अपने को हम ना भूलें, ऐसा ये कह रहे हैं। और कई बार हमें देखना चाहिए कि अपनी खुशी भी आगे रखनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात आपने कही और लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यही गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। राजेश खन्ना नजर आते हैं पर्दे पर, ये बात किसे समझा रहे हैं पर्दे पर ये बताइए और फिल्म का नाम भी बताइए।

अमर प्रेम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसमें शर्मिला टैगोर को समझाते दिखते हैं पर्दे पर राजेश खन्ना ये बात, और हमारे साथियों ने तो लिखा है कि पुष्पा को समझाते हैं ये बात, जो कि उस फिल्म में उनका किरदार का नाम था। हमारे एक और साथी कहते हैं कि लोगों का क्या है, वो तो इधर से भी बोलते हैं उधर से भी बोलते हैं, जो मन में आए कहते रहते हैं और उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि, और एक साथी का कहना है कि हम तो इस बात की परवाह नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि अपने हिसाब से हम चलते हैं, लोग भी अपने हिसाब से चलते हैं, तो हमसे अपेक्षा क्यों करते हैं कि हम उनके अनुसार जिए। और एक और साथी का भी कहना है कि वो लोगों की परवाह नहीं करती, क्योंकि लोग तो कुछ कहेंगे ही, कुछ उनका काम कहना है। मैं सबका अच्छा करती हूँ, परवाह नहीं करती लोगों की, अपना काम है कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो। और हमारे एक और साथी कहने कि अगर एक दिन के लिए स्वतंत्रता ईश्वर दे दें तो मैं असीम सच्चिदानंद को हर के ही हृदय में भर दूं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पहली कक्षा की सहेलियों से भी वो मिलती हैं, और एक साथी हैं वो जो वो बना रही हैं अपनी दूसरी श्रोता साथी के साथ प्लान विविध भारती स्टूडियो आने की। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अगर परवाह न करें, सपने न देखें, तो हर शख्स आपसे कोई भी नाराज ना हो, यानी एक सपना है ये कि कोई नाराज ना हो। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि यदि ऐसा एक दिन हो जाए तो अपनी फेवरेट स्कूल टीचर, स्कूल की बेस्ट फ्रेंड के साथ पूरा दिन बिताना चाहेंगे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सच और झूठ में यही खेल है, सौ सुनार की एक लोहार की। और एक और साथी अपने दोस्त को याद कर रहे हैं जो कहने कि जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो हमारा पल अपनी बातों से, चुटकुलों से खुशहाल कर दें। हमारा एक दोस्त था जो अपनी बातों से इतना हंसाता था कि सांसें फूल जाती थी, उसके आने का इंतजार करते थे। तो बस जीवन में अपने मन की भी कीजिए, अपने मन की बातों के लिए भी ध्यान रखिए। और आज के इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

नमस्कार। आज की त्रिवेणी मोड़ शब्द पर आधारित है। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ भी आते हैं जहां से जाकर लौटना मुनासिब नहीं होता। बड़े ही अजीब हैं ये जिंदगी के रास्ते। उस मोड़ पर आकर ठहर सी जाती है जिंदगी। इन्हीं अनजाने मोड़ पर कुछ लोग अपने बन जाते हैं, वहीं कुछ अपने होकर अनजान बन जाते हैं। इसमें कभी खुशी भी मिलती है तो कभी गम में बिखर जाते हैं। हर मोड़ पर एक नया शख्स मिलता है, नया चेहरा होता है।

जिंदगी में मोड़ों से भरी एक लंबी सड़क होती है। यही मोड़ हमें सिखाते हैं कि जिस रास्ते को तुमने चुना है, मंजिल उसके बहुत दूर है। कुछ पाना है तो कुछ मोड़ पर आकर लौटना हारने जैसा है। जैसे जब हम शहर में जीविका की तलाश में आते हैं तो समस्याएं, परेशानियां मुंह फैलाए आती हैं। ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं कि उन स्थितियों में अपने आप को संभालना ही पड़ता है। कई दोस्त साथी बनते हैं, कुछ दूर तक साथ चलते हैं, लेकिन मुश्किलों के मोड़ पर कुछ हाथ छोड़ भी देते हैं। तब भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन भरोसा खुद पर गर हो तो ये मोड़ भी सीधे हो जाते हैं।

कई बार हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि अगर वो एक मोड़ ना आया होता तो शायद हम इतने समझदार, इतने मजबूत ना होते। दर्द देने वाले मोड़ ही अक्सर इंसान को अपनी असली पहचान से मिलवाते हैं। इसीलिए जब भी जिंदगी किसी नए मोड़ पर लाकर खड़ा करे तो डरिए मत, हो सकता है वही मोड़ आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय बन जाए। क्योंकि रास्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, हर मोड़ के बाद एक नई सुबह इंतजार करती है, एक नए मोड़ का।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के 30 दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 184 रन बनाए। और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। भारत के MR अर्जुन, हरिहरन अम सकरून पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से।

0: सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के दो दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद कहा कि यह समिति विभिन्न मुद्दों और अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्यदिशा तय करेगी।
1: On the basis of a well-researched
2: पहले से उपलब्ध शोध दस्तावेजों से समिति को चर्चा के लिए जरूरी ठोस जानकारी प्राप्त होंगे। समिति के विचारों और सुझावों से स्पष्ट होगा कि यह देश को विकसित भारत की दिशा में किस तरह आगे बढ़ाना चाहती है और इसमें बैंकों की क्या भूमिका होगी।
1: And in that, the role of banks.
0: वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय बैंक इस समय मजबूत स्थिति में हैं। डूबे कर्ज की स्थिति निम्नतम स्तर पर होने के कारण भविष्य के सुधारों के लिए मजबूत आधार उपलब्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उच्च स्तरीय समिति से सिफारिशें मिलने के बाद सरकार और बैंकिंग क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज गति देने में सक्षम होंगे। भारत ने अपने ब्रिक्स सहयोग की अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की है। नई दिल्ली में आज जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य तथा संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा कि ब्रिक्स संगठन पिछले दो दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है।
2: श्री तन्मय कुमार ने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि सतत विकास, जलवायु समायोजन, संसाधन क्षमता और चक्रीय अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरणीय निगरानी के संदर्भ में भागीदारी मजबूत हुई है। बैठक के दौरान भारत ने स्पष्ट किया कि ब्रिक्स 2026 की गतिविधियां वैश्विक सहयोग को मनुष्यता प्रथम के आधार पर जन केंद्रित बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से निर्देशित हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान पर्यावरणीय कार्य समूह और संपर्क समूह ने चार प्राथमिकता क्षेत्रों सतत जीवन शैली, वनीकरण, जंगल की आग और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और समायोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम में विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में संचालित 350 से अधिक बैठकों से विभिन्न सेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। उन्होंने कहा कि इससे ब्रिक्स संगठन के तीन आधार स्तंभ राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, वित्तीय सहयोग और जनभागीदारी के बीच समन्वय मजबूत हुआ है। पीएम गति शक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सावन माह के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां एकत्र थी।
3: लखीसराय के अशोक धाम मंदिर पर जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की कतार में भगदड़ से ये हादसा हुआ। हादसे में गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार के अनुसार आज सुबह श्रद्धालुओं के अशोक धाम स्टेशन हॉल्ट से मंदिर जाने वाले रास्ते में बिजली के गिरे खम्भे में करंट दौड़ने की अफवाह के बीच भगदड़ मचने से ये हादसा हुआ।
4: मंदिर का क्यू वो पहुंचा हुआ था अशोक धाम हॉल्ट तक, तो जो उसका क्यू था उसके राइट साइड में पोल था, उधर गिरा तो अफवाह फैल गया कि बिजली गिरा है।
3: इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के निकटतम परिजन को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने और घायलों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धालुओं की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय

0: प्रशासन प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता कर रहा है। रक्षा मंत्री ने इस दर्दनाक हादसे के पीड़ित हर व्यक्ति के लिए कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की प्रार्थना की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। आग सबसे पहले होटल के रिसेप्शन में लगी और 4 मंजिला इमारत तक फैल गई। आग लगने के समय ज्यादातर लोग सो रहे थे। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीरभूम हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए डिजिटल स्वगणना प्रक्रिया आज आधी रात से शुरू हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जनगणना 2027 के अंतर्गत ये प्रक्रिया 31 अगस्त तक जारी रहेगी।
1: जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी अमित शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि ये प्रक्रिया जम्मू कश्मीर के 16 जिलों में की जा रही है। इसमें जम्मू, श्रीनगर, सांबा और राजौरी जिलों को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख को इस अभियान के अंतर्गत पूरी तरह कवर किया जाएगा। श्री शर्मा ने बताया कि स्वगणना प्रक्रिया जियो रेफरेंस्ड है। अपने निर्धारित क्षेत्रों में मौजूद निवासी ही इस प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। निवासी आज से डिजिटल स्वगणना के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। इस बार जाति संबंधी जानकारी भी देनी होगी। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने खुद को दिमागी नक्सली बताने पर गर्व व्यक्त किया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस सरकारें नक्सलवाद को समाप्त करने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समस्या पर निर्णायक रूप से नियंत्रण किया गया है।
2: नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी NEC के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था। यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वो कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही न करे। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI और प्रवर्तन निदेशालय ED से भी कहा कि वे श्री गांधी के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ तथा ने श्री गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया और CBI, ED तथा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले कर्नाटक निवासी S. विग्नेश शेषिर को नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गांधी की ओर से दायर याचिका पर यह पीठ सुनवाई कर रही थी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तेजी से बदलती तकनीक के इस दौर में स्नातक डिग्री शिक्षा का अंत नहीं बल्कि निरंतर बदलाव के साथ सीखते रहने की शुरुआत है। आज तमिलनाडु के तिरुवरूर में तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने वर्ष 2014 के बाद देश में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के अभूतपूर्व विस्तार का उल्लेख किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। झारखंड में JPSC, JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे NewsOn AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त मैत्री सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए आज थाईलैंड रवाना हो गई।

0: सैन्य अभ्यास कल से इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मैत्री अभ्यास का उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाना है। इससे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत जंगलों और अर्धशहरी क्षेत्रों में उग्रवाद तथा आतंकवाद का सामना करने की संयुक्त क्षमता बढ़ेगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भी कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारिककाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन के दौरान गरज के साथ आंधी वर्षा की संभावना है। दिल्ली के कुछ भागों में आज हल्की बारिश हो सकती है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकरुणन की भारतीय जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। आज ही पूर्व विश्व चैंपियन और नौवीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल के साथ खेलेंगी। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने 5 विकेट पर 187 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। हॉकी विश्व कप में आज नीदरलैंड्स के अम्स्टरफेंड में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत शनिवार को वेल्स पर 3-1 की विजय के साथ की, जबकि इंग्लैंड ने प्रतियोगिता के पहले दिन पाकिस्तान को 4-1 से हराया। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 कर्मियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार से सम्मानित किया। इन पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने कानून निरस्त किए जाने और नए कानून बनाने तथा प्रशासन और लेखांकन में प्रौद्योगिकी अपनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331081, व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 148 अंक की गिरावट से 77,861 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 189 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नक्मे।

हेमंत कुमार की आवाज में घर हाउस नंबर 44 फिल्म का ये गीत आपने सुना। साहिल लुधियानवी की बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं सदाबहार नकमे कार्यक्रम। आइए सुनते हैं भाभी फिल्म से ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त का संगीत।

0: लता मंगेशकर की आवाज में भाभी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त का संगीत।
1: बैठ जा, खड़ी हो जा,
2: खड़ी हो गई।
3: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
1: अब कहां जाएं हम?
4: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता है आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
3: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
4: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
3: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सेहतनामा
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे थे गीता दत्त को भाई भाई फिल्म के इस गीत में, जिसे लिखा राजेंद्र कृष्ण ने, मदन मोहन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज तुम सा नहीं देखा फिल्म के इस गीत में।

0: तुम सा नहीं देखा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपिन नैयर की तर्ज आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं सचिन देव बर्मन का संगीतबद्ध किया ये गीत फिल्म पेइंग गेस्ट। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें।
1: निगाहें मस्ताना देख समा है सुहा।

किशोर कुमार और आशा भोसले को आप सुन रहे थे पेंगेस्ट फिल्म के गीत में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नकमे में

शकील बदायूनी की रचना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। मदर इंडिया फिल्म के इस गीत में संगीत नौशाद का। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं चलती का नाम गाड़ी फिल्म से। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। गाने का आनंद लीजिए और मुझे दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार, विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को और दीपा आपको सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।
1: सोनाली आपको और हमारी सभी सखियों सहेलियों श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का
0: हेल्दी नमस्कार। मैं समझ गई थी कि आपका हेल्दी नमस्कार होगा।
1: क्योंकि भाई स्वास्थ्य है तो धन है, वो ही हमारा सच्चा धन है।
0: बिल्कुल,
1: है ना।
0: और अभी बारिश का मौसम है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए।
1: बिल्कुल, सबका, घर वालों का, परिवार का और स्वयं का। सखियां अपने आप को सबसे पीछे छोड़ देती हैं स्वास्थ्य के मामले
0: ये
1: में।
0: बिल्कुल सही बात आपने कही। क्योंकि सबका ख्याल रखती है पर खुद के लिए बहुत हमेशा कभी सोचती नहीं खुद के लिए, है ना।
1: ये तो हम अपनी सखियों से कहेंगे कि भाई परिवार का ध्यान रखते रखते आप अपने आप को पीछे कहीं न छोड़ दीजिएगा, क्योंकि परिवार की धुरी तो आप ही हैं।
0: और जब हम खुश रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे तो हर त्योहार हम उसी उमंग, उसी उत्साह के साथ मनाते हैं।
1: बिल्कुल, जैसे कि आज नाग पंचमी मनाई जा रही है।
0: बिल्कुल,
1: है ना?
0: आज हर घर में नाग पंचमी का उत्सव मनाया जा रहा है, तो सारे श्रोताओं को, सखियों को नाग पंचमी की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस विषय पर कमेंट्स लिखना भी शुरू कर दिए।
1: बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और साथ में जब भाई बात हो रही है कोई पर्व की, तो पर्व आते ही याद आ जाता है खाना पीना, भोग प्रसाद, अलग अलग तरह के व्यंजन बनते हैं। लेकिन इन सब के बीच में ये जो बच्चे जो बाहर के खाने की जिद करते हैं, जंक फूड खाने की जिद करते हैं, तो इन सब बातों से कैसे निपटा जाए या उस आकर्षण को कैसे कम किया जाए। बहुत सारे कमेंट्स तो आए हैं सोनाली, और हम बात भी करेंगे, इस पे विचार विमर्श भी होगा, तो जानेंगे कि कैसे भाई मिलजुल करके ये चीज के प्रति जरा जो अट्रैक्शन है ये बच्चों का कम किया जाए।
0: और साथ ही आज बहुत सारे साथियों को, श्रोताओं को इंतजार है कथा सुधा का, हमें भी इंतजार है, क्योंकि आज तेतर भाग दो आज हम सुनने वाले हैं। और साथ ही पश्चिम बंगाल के व्यंजन, इसके अंतर्गत लूची, आलूरदम और मिष्टी दोई, ये सारे व्यंजन बहुत बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो हमारे श्रोताओं से भी कहेंगे कि क्या आपने चखे हैं, और चखे हैं तो कैसे लगे आपको, या आपको उसकी विधि अगर मालूम है व्यंजन की तो आप हमें लिख कर भेजिए।
1: बिल्कुल।
0: और आप क्या करें,
1: बाहर तो आज बारिश हो रही
0: है। झमाझम।

0: वृष्टि टापुर टुपुर जब पड़ती है ना दीपा, तो कितना उमंग और उत्साह का मौसम हो जाता है।
1: बिल्कुल, और दिल भी कहीं एकदम ऐसा करने लगता है कि मन में जैसे एक स्वाभाविक सी संगीत टापुर टुपुर वाली ही उत्पन्न होने लग जाती है।
0: और अब इंतजार है श्रोताओं के साथ हमें भी कथा सुधा का,
1: तो चलो
0: तो सुनते हैं आज तेतर कहानी का भाग दो।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। इस कहानी में पिछले हफ्ते आपने सुना
4: आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, जिसकी चिंता में घर के सभी लोग विशेषतः प्रसूता पड़ी हुई थी। अनर्थ महाअनर्थ, भगवान ही कुशल करे तो हो, ये पुत्री नहीं राक्षसी है। इस अभागिन को इसी घर में आना था, आना ही था तो कुछ दिन पहले क्यों ना आई। भगवान सातवें शत्रु के घर में भी तेतर का जन्म ना दे। पिता का नाम था पंडित दामोदर दत्त, शिक्षित आदमी थे, शिक्षा विभाग में ही नौकर भी थे, मगर इस संस्कार को कैसे मिटा देते जो परंपरा से हृदय में जमा हुआ था कि तीसरे बेटे की पीठ पर होने वाली कन्या अभागिन होती है, या पिता को लेती या माता को या अपने को।
5: लड़की तो जरा देखो, दुबली पतली भी नहीं है, तीनों लड़कों से हृष्ट पुष्ट है, ये बड़ी बड़ी आंखें हैं, पतले पतले लाल लाल होंठ हैं, जैसे गुलाब की पत्ती, गोरा चिट्टा रंग तो देखो, लंबी सी नाक, कल मुई नहलाते समय रोई भी नहीं, ठुकुर ठुकुर ताकती रही। ये सब लक्षण कुछ अच्छे थोड़े ही हैं, हाँ?
6: इस बेचारी का मेरे घर जन्म लेने में क्या दोष है? मुझ पर या इसकी माता पर जो कुछ भी पड़े, उसमें इसका क्या अपराध? हम कितनी निर्दयता कर रहे हैं। कुछ भावी अनिष्ट की आशंका के कारण उसका इतना तिरस्कार कर रहे हैं। माना कि कुछ अमंगल हो भी जाए तो क्या उसके भय से इसके प्राण ले लिए जाएंगे? अगर अपराधी है तो मेरा प्रारब्ध है। इस नन्हे से बच्चे के प्रति हमारी कठोरता क्या ईश्वर को अच्छी लगती होगी? आ जाओ गुड़िया, आ जाओ।
4: उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगे। लड़की को कदाचित पहली बार सच्चे स्नेह का ज्ञान हुआ। वो हाथ पैर उछालकर गुंगुंग करने लगी और दीपक की ओर हाथ फैलाने लगी। उसे जीवन ज्योति सी मिल गई।

0: बाबू साहब ने बड़े लड़के से कहा,
1: सिद्धू सिद्धू जरा उस बकरी को पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ला ला ला ला ला, लाओ तेरी बहन को दूध पिलाएंगे, शायद भूखी है बेचारी। देखो तुम्हारी नन्ही सी बहन है ना, इसे रोज हवा में खिलाया करो।
0: सिद्धू को दिल लगी हाथ आई, उसका छोटा भाई भी दौड़ा। दोनों ने घेर कर बकरी को पकड़ा और उसका कान पकड़े हुए सामने लाए। पिता ने शिशु का मुंह बकरी के थन में लगा दिया। लड़की चुगलाने लगी और एक क्षण में दूध की धार उसके मुंह में जाने लगी, मानो टिमटिमाते दीपक में तेल पड़ जाए। लड़की का मुंह खिल उठा, आज शायद पहली बार उसकी शुधा तृप्त हुई थी। वो पिता की गोद में हुमक हुमक कर खेलने लगी। लड़कों ने भी उसे खूब नचाया कुदाया।

0: पिता का प्यार, भाइयों का दुलार मिलने से नन्ही बच्ची दिन ब दिन निखरती जा रही है। आगे क्या होता है इसके लिए सुनिए इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग।
1: उस दिन से सिद्धू को मनोरंजन का एक नया विषय मिल गया। बालकों को बच्चों से बहुत प्रेम होता है। अगर किसी घोंसले में चिड़िया का बच्चा देख पाए तो बार बार वहां जाएंगे, देखेंगे कि माता बच्चे को कैसे दाना चुगाती है, बच्चा कैसे चोंच खोलता है, कैसे दाना लेते समय परों को फड़फड़ाकर चेंचे करता है। आपस में बड़े गंभीर भाव से उसकी चर्चा करेंगे, अपने अन्य साथियों को ले जाकर उसे दिखाएंगे। सिद्धू ताक में लगा रहता। जो ही माता भोजन बनाने या स्नान करने जाती, तुरंत बच्ची को लेकर आता और बकरी को पकड़कर उसके थन में शिशु का मुंह लगा देता। कभी दिन में दो दो तीन तीन बार पिलाता। बकरी को भूसी चोकर खिलाकर ऐसा परचा लिया कि वो स्वयं चोकर के लोभ से चली आती और दूध देकर चली जाती। इस भांति कोई एक महीना गुजर गया। लड़की हृष्ट पुष्ट हो गई, आंखें जग उठी, शिशुकाल की सरल आभा मन को हरने लगी। माता उसे देख देख कर चकित होती थी। किसी से कुछ कह तो न सकती, पर दिल में उसे आशंका होती कि अब वो मरने को नहीं, हमें लोगों के सिर जाएगी, कदाचित ईश्वर इसकी रक्षा कर रहे हैं। जब ही तो दिन दिन निखरती आती है, नहीं तो अब तक ईश्वर के घर पहुंच गई होती। मगर दादी माता से कहीं ज्यादा चिंतित थी।
2: मुझे तो लगता है दूध पिलाती है ये बिटिया को। अरे दूध क्या पिला रही है, सांप पाल रही है सांप। क्यों लड़की का बड़ा छो करती हो हा? हाँ भाई, माँ हो कि नहीं, अब तुम न छो करोगी तो कौन करेगा भला हा?
3: अम्मा जी, ईश्वर जानते हैं जो मैं इसे दूध पिलाती हूँ।
2: अरे तो मैं मना थोड़े ही करती हूँ। अरे मुझे क्या गरज पड़ी है कि मुफ्त में अपने ऊपर पाप लूं है। अरे कुछ मेरे सिर तो जाएगी नहीं। हाँ
3: अरे अम्मा जी, अब आपको विश्वास ही ना आए तो कोई क्या करे।
2: हाँ तो क्या मुझे पागल समझती है तू? हाँ पागल समझती हो, वो हवा पी पी कर ऐसी हो रही है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता क्या?
3: सही कह रही हैं, भगवान जाने अम्मा जी, मुझे तो आप ही अचरज होता है
4: कि इसका चेहरा कैसे खिलता ही जा रहा है।
1: बहू ने बहुत निर्दोषिता जताई। दादी को लगा ये मेरी शंका को निर्मूल समझती है, मानो मुझे इस बच्ची से कोई बैर है। उनके मन में ये भाव अंकुरित होने लगा कि इसे कुछ हो जाए तब ये समझे कि मैं झूठ नहीं कहती थी। वो जिन प्राणियों को अपने प्राणों से भी प्रिय समझती थी, उन्हीं लोगों की अमंगल कामना करने लगी, केवल इसलिए कि मेरी शंकाएं सत्य हो जाएं। वो ये तो नहीं चाहती थी कि कोई मर जाए, पर इतना अवश्य चाहती थी कि किसी बहाने से मैं चेता दूं कि देखा तुमने, मेरा कहा ना माना ये उसी का फल है।

0: सास की ओर से ज्यों ज्यों ये द्वेष भाव प्रकट होता था, बहू का कन्या के प्रति स्नेह बढ़ता था। ईश्वर से मनाती रहती थी कि किसी भांति एक साल कुशल से कट जाता तो इनसे पूछती। कुछ लड़की का भोला भाला चेहरा, कुछ अपने पति का प्रेम वात्सल्य देखकर भी उसे प्रोत्साहन मिलता था। विचित्र दशा हो रही थी, न दिल खोलकर प्यार ही कर सकती थी, न संपूर्ण रीति से निर्दय होते ही बनता था, न हंसते बनता था, न रोते। इस भांति 2 महीने गुजर गए और कोई अनिष्ट ना हुआ। तब तो वृद्धा सास के पेट में चूहे दौड़ने लगे।
1: बहू को 2-4 दिन ज्वर भी नहीं आ जाता कि मेरी शंका की मर्यादा रह जाती। कुछ समझ में नहीं आता, पुत्र भी किसी दिन पैरगाड़ी पर से नहीं गिर पड़ता, न बहू के मैके से ही किसी के स्वर्गवास की सुनावनी आती है।
0: एक दिन दामोदर दत्त ने खुले तौर पर कह भी दिया,
2: अम्मा ये सब ढकोसला है, तेतर लड़कियां क्या दुनिया में होती नहीं, तो सबके सब माँ बाप क्या मर जाते हैं।
0: अंत में उसने अपनी शंकाओं को यथार्थ सिद्ध करने की एक तरकीब सोच निकाली। एक दिन दामोदर दत्त स्कूल से आए तो देखा कि अम्मा जी खाट पर अचेत पड़ी हुई है, स्त्री अंगीठी में आग रखे उनकी छाती सेक रही है और कोठरी के द्वार और खिड़कियां बंद हैं।
2: अरे अम्मा क्या हुआ,
1: अरे
2: कैसी तबीयत है, अरे हो क्या गया।
3: अरे आ गए आप, देखिए ना अम्मा जी को दोपहर से ही कलेजे में शूल सा उठ रहा है, बेचारी बहुत तड़प रही हैं।
1: अरे क्या बताऊं बेटा, तुम आ गए दामोदर, आओ अब ना बचूंगी, आए भगवान अब ना बचोगे, जैसे कोई कलेजे में बर्छी चुभा रहा हो। ऐसी पीड़ा कभी नहीं हुई थी, इतनी उम्र बीत गई बेटा, ऐसी पीड़ा कभी नहीं हुई, तो लेकर ही बीतेगी मेरी जान।
3: ये सब ना इसी के कारण हो रहा है, ये कलमुही छोकरी ना जाने किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई है।
2: मैं जाकर डॉक्टर साहब को बुला लाऊं ना, देर करने से शायद रोग बढ़ जाए। अम्मा अम्मा कैसी है तबीयत।
1: हाय अरे बेटा भगवान साफ करते हैं, हाँ अरे बड़ा दर्द हो रहा है, अब ये बेचारी क्या जाने, तो बच्चा है, देखो हाँ मैं मर जाऊं तो उसे कष्ट मत देना, आए, आए, उसे कष्ट मत देना।
2: जाकर डॉक्टर बुला लाऊं, अभी लौट आता हूं।
1: अरे नहीं बेटा रहने दो सब, अब अच्छा हुआ मेरे सिर आई है, हाँ तू बैठ बेटा बैठ, अब किसी के सिर जाती ही, हाँ तो मेरे ही सिर सही, हाँ बेटा अब ना बचूंगी, हाय राम हाय भगवान अब ना बचूंगी दामोदर, समझ लो कि बस सब सब खत्म, हाँ कह देती हूँ अच्छा हुआ मेरे सिर आई, हाँ बड़ा दर्द हो रहा है दामोदर, हाय कहीं कोई मत जाओ।
2: अम्मा अम्मा अभी अभी जाकर डॉक्टर बुला लाऊं, अभी लौटा आता हूं, ठीक हो जाओगी तुम।
1: अरे कहां जाते हो, अरे नहीं नहीं बेटा डॉक्टर के पास जाकर क्या करोगे, अरे अरे वो कोई ईश्वर है क्या है, डॉक्टर कोई अमृत पिला देगा, हा? 10-20 वो भी ले जाएगा हमारा, डॉक्टर पैसे कुछ ना होगा, कुछ ना होगा बेटा, बस अब तो बस आखिरी समय आ गया है बेटा, तुम बस मेरे पास बैठ जाओ बेटा, अब बैठ कर भागवत पढ़ो, हाँ अंतिम समय है, अब ना बचूंगी, हाय राम अब ना बचूंगी, पढ़ो पढ़ो बचो भागवत पढ़ो बेटा, अंतिम समय है बस, तो जान लेकर ही जाएगी। हाँ।

0: तेतर तेतर बुरी चीज है। मैं समझता था कि ढकोसला ही ढकोसला है।
1: मुझे पता था, इसी से मैं उसे कभी मुंह नहीं लगाती थी।
2: अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो बेटा। नहीं, बच्चों को सब आराम से रखना। भगवान करे तुम सब सुखी रहो। तुम लोगों को भगवान सुखी रखे, बस यही आशीर्वाद देती हूँ। अच्छा हुआ मेरे ही सिर गई, तुम लोगों के सामने मेरा परलोक हो जाएगा, बस यही अच्छा है। राम करे, कहीं किसी दूसरे के सिर जाती तो क्या होता। राम राम, अरे बस अंतिम समय है, भगवान ने मेरी विनती सुन ली, बस यही विनती है। तुम सब खुश रहो। हाय हाय, अब न बचूंगी, बस मैं तो चली दामोदर। खुश रहो तुम सब, बच्चों को ठीक से रखना। हाँ कह देती हूँ, कष्ट ना हो किसी को।
3: दामोदर दत्त को निश्चय हो गया कि अब अम्मा न बचेंगी। बड़ा दुख हुआ। उनके मन की बात होती तो वो माँ के बदले तेतर को न स्वीकार करते। जिस जननी ने जन्म दिया, नाना प्रकार के कष्ट झेलकर उनका पालन पोषण किया, अकाल वैधव्य को प्राप्त करके भी उनकी शिक्षा का प्रबंध किया, उसके सामने एक दुदमुही बच्ची का क्या मूल्य था, जिसके हाथ का एक गिलास पानी भी वो न जानते थे। शोकातुर हो माँ के सिरहाने बैठकर भागवत की कथा सुनाने लगी। रात को बहू भोजन बनाने चली तो सास से बोली,
1: अब कैसा लग रहा है अम्मा जी? आप कहें तो आपके लिए थोड़ा सा साबुदाना बना दूं?
2: अरे बड़ा दर्द होता है। अरे बेटी, अन्न के बिना ना मारो है, भला साबुदाना मुझसे खाया जाएगा है? जाओ जाओ, थोड़ी सी पुड़िया छान लो। हाँ, अब पड़े पड़े जो इच्छा होगी खा लूंगी। और हाँ सुनो बहू, कचौरियां भी बना लेना। अब मरती हूं तो भोजन को तरस तरस के क्यों मरूं भला। हाँ? बड़ा दर्द होता। सुन अब बेटी, थोड़ी मलाई भी मंगवा लेना। हाँ वो भी चौक से। हाँ अब फिर थोड़े ही खाने आऊंगी, अब गई तो गई, हम तो समझो कि अब बेटी अब ना बचूंगी। बेटा थोड़े से केले मंगवा लेना, कलेजे में दर्द में केले खाने से आराम होता है। हाँ है, बड़ा दर्द है भैया।
3: भोजन के समय पीड़ा शांत हो गई, लेकिन आधे घंटे के बाद फिर जोर से होने लगी। आधी रात के समय कहीं जाकर उनकी आंख लगी। एक सप्ताह तक उनकी यही दशा रही। दिन भर पड़ी कराहा करती, बस भोजन के समय जरा वेदना कम हो जाती। दामोदर दत्त सिरहाने बैठे पंखा झलते और मातृ वियोग के आगत शोक से रोते। घर की मेहरी ने महल्ले भर में ये खबर फैला दी। पड़ोसी ने देखने आई तो सारा इल्जाम बालिका के सिर गया। एक ने कहा,
4: ये तो कहो भैया कि बड़ी कुशल हुई जो बुढ़िया के सर गई, नहीं तो तेतर माँ बाप दो में से किसी एक को लेकर जाए तो ही शांत होती है। देव न करे कि किसी के घर तेतर का जन्म हो।
5: हाँ हाँ सही कहती हो, तेतर का नाम सुनते ही मेरे भी रोए खड़े हो जाते हैं। भगवान भले ही औलाद ना दे, पर तेतर ना दे।
3: एक सप्ताह बाद वृद्धा का कष्ट निवारण हुआ। मरने में कोई कसर ना थी, वो तो कहो पुरखों का पुण्य प्रताप था। ब्राह्मणों को गोदान दिया गया, दुर्गा पाठ हुआ, तब कहीं जाके संकट टला।
6: कथा सुधा में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। आज आपने सुना इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। कहानी में भूमिका सहित पात्रों का परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार जी श्याम, वृद्ध दादी रेणु चतुर्वेदी, दामोदर दीपक के सावलेकर, दामोदर की स्त्री स्वप्निल श्रीवास्तव, लक्ष्मी चंचल वर्मा, पड़ोसन

0: अंजनी वर्मा, बाल कलाकार प्रज्वल सिंह, वेदांत सिंह और रुद्र सिंह, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, संकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
1: तो आपने सुनी कहानी तेतर, और हम तो बहुत मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। आशा है आप सभी को भी बहुत अच्छी लगी होगी ये कहानी।
2: और आज घर में क्या चल रहा है? आज घर में हो रहा है नाग पंचमी का त्यौहार मन रहा है।
1: बिल्कुल।
2: तो ये जो है ना, ये जो त्यौहार होता है ना, ये हमारा देश त्योहारों और परंपराओं की विविधता वाला देश है। यहाँ मनाए जाने वाला प्रत्येक पर्व अपने साथ धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक और पर्यावरण की रक्षा के लिए एक संदेश भी लेकर आता है। नाग पंचमी हमारा एक महत्वपूर्ण पर्व है जो नाग देवताओं की पूजा और उनके प्रति सम्मान का प्रतीक माना जाता है। ये पर्व सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है।
1: बिल्कुल। और सुना ली, नागपंचमी के दिन श्रद्धालु सर्प की पूजा करते हैं। भगवान शिव के गले में नाग का स्थान होने के कारण नागों का संबंध भगवान शिव से भी माना गया है। और नागपंचमी का महत्व ये केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा अधिक है। और सर्प हमारे पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो खेतों में चूहे और दूसरे हानिकारक जीवों की संख्या नियंत्रित करते हैं जिससे फसलों की रक्षा होती है। इसलिए नागों और अन्य जीव जंतुओं का संरक्षण प्रकृति के संतुलन के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है।
2: और इस दिन कई स्थानों पर जो है ना नाग देवता के चित्र और प्रतिमाओं की पूजा की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये पर्व विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। महिलाएं परिवार की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना करती हैं। अनेक स्थानों पर पूजा व्रत और धार्मिक कथाओं का आयोजन भी किया जाता है।
1: और आज जब हम ये पर्व मना रहे हैं तो इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए सोनाली कि सांपों को पकड़कर उन्हें परेशान करना या जबरदस्त उनको दूध उन्हें पिलाना ये सब उचित नहीं है। वन्य जीवों के प्रति प्रेम और सम्मान ही हमारी सच्ची पूजा और श्रद्धा मानी जानी चाहिए। यदि घर या आसपास कहीं सांप दिखाई दे तो उन्हें परेशान करने के बजाय प्रशिक्षित वन्य जीव बचाव दल की हमें सहायता लेनी चाहिए।
2: और ये दिन हमें एक संदेश भी देता है कि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नाग देवता के प्रति श्रद्धा तभी सार्थक है जब हम उनके सहित सभी जीव जंतुओं की रक्षा करें और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखें। इस प्रकार नागपंचमी हमारी धार्मिक आस्था और संस्कृति और प्रकृति प्रेम का एक सुंदर संगम है।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश भी आया है इसी के लिए कि ये जो पर्व है ये बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है हमारे देश में और बहुत ही सुंदर और धार्मिक मान्यता से जुड़ा हुआ ये पर्व है। इन दिनों नागों की पूजा की जाती है और कहीं कहीं नाग देवता को दूध पिलाने की भी विधि रखी गई है, देखा जाता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने गले में सर्प को धारण किया था।
2: ये हमारे साथी ने कहा और वक्त हो चुका है अंतराल का, तो हम हाजिर होते हैं अंतराल के बाद।
1: जी,

0: दीपा, हमारी एक सखी ने एक मैसेज लिखा है कि हमारे घर भी आज नागपंचमी की पूजा हुई है। नाग देवता को गोबर और मिट्टी से बनी हुई मूर्ति को धान का लावा, लैया, गुड़ और दूध चढ़ाया जाता है। वहीं सब साथ खाना खाते हैं और बहुत जगह पर, खासकर बिहार के कुछ प्रांत में, आज बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सभी के घरों में दाल की पूरी, खीर, आम, पका कटहल, भोग लगाया जाता है और प्रसाद बांटा जाता है। नीम की पत्तियों से घर के दरवाजे को सजाया जाता है। ये पूजा भी हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। सावन के महीने में खेतों में धान की फसलें लगाई जाती है और उन बारिश के दिनों में बहुत सारे कीड़े सांप रहते हैं, जो उन्हें भी देवता स्वरूप मान के साथ उनका भी पूजन किया जाता है और हर्ष और उल्लास के साथ इस दिन को मनाया जाता है।
1: और एक और संदेश आया, ये कहते हैं कि हमारे घर में कहा जाता है कि आप कहीं भी किसी भी देश में रहिए, वहां के परिवेश में अपने को ढाल लिए, पर अपना अपना कुल परंपरा का जो है परंपरा के निभा होनी चाहिए। तो कहती हैं कि बहू हमारी पुणे में रहती है, वो भी आज नागपंचमी की पूजा वहां करती है। यानी आप तो अपने गांव देश में रहते हैं, लेकिन बहू दूर रह रही है, लेकिन सारी परंपराओं को वो अपनाकर उसका
0: पालन कर रही
1: पालन कर रही
0: है। तो ऐसे ही होता है ना दीपा, की जो परंपराएं होती है या फिर पारंपरिक व्यंजन होते हैं,
1: है।
0: अगर वो बनेंगे घर में तभी तो उसका स्वाद बच्चों को पता चलेगा।
1: बिल्कुल।
0: अगर
1: और
0: वो
1: उसका
0: बनेंगे ही नहीं तो
1: जी,
0: बच्चों को पता ही नहीं
1: और
0: चलेगा।
1: उसका जो महत्व है, क्यों बनाया जाता है, हर एक चीज का महत्व है और हर एक चीज का कारण है। वो समझेंगे ही नहीं अगर उन्हें ना वो चखेंगे ना वो बनते हुए देखेंगे। वो सौंधी खुशबू जब घर में फैलती है उसका आनंद नहीं लेंगे, तब तक उसका महत्व उन्हें समझ नहीं आएगा।
0: और जब हम बताते हैं कि कितना पौष्टिक है, इसमें इतना सारा प्रोटीन है, इसमें विटामिन है, और इसमें यानी ये जो जो व्यंजन है, स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। जब
1: बिल्कुल
0: ये
1: सही
0: बात
1: कहा।
0: बच्चों को बताई जाती है ना, तो बच्चे जंक फूड के लिए जिद नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल। लेकिन देखो ना, अभी आज का ये जो जमाना है, तेज रफ्तार भागती भागती सी जिंदगी हमारी हो गई है, और इस बदलते परिवेश का सबसे ज्यादा जो प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है वो खान पान पर हम देख ही रहे हैं। एक समय था सोनाली, जब बच्चों में घर का बना ये दाल चावल सब्जी रोटी, या कहीं कहें खिचड़ी पोहा उपमा, कोई किसी भी प्रकार के पराठे फल, सब कुछ उनको बड़े चाव से खा लेते थे वो लोग, है ना।
0: पर आजकल बच्चे जो है ना, कलर और जो है ना रंगों के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, और उन्हें ना ये जो उसमें बहुत जो चटपटा बनाया जाता है जंक फूड, जैसे फिर पिज्ज़ा है, बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज़ है, नूडल्स, पास्ता, चिप्स,

0: चॉकलेट, केक, कोल्ड ड्रिंक और पैकेट बंद खाद्य पदार्थों ने ये जो जगह ले ली है बच्चों के जीवन में, और यही
1: बिल्कुल
0: कारण है कि जंक फूड बच्चों के जीवन का हिस्सा बनता चला जा रहा है।
1: और इन्हें इस तरीके से रंग बिरंगी पैकेजिंग में परोसा जाता है ना, और बड़े लुभावने फिर विज्ञापन भी बना दिए जाते हैं। जब विज्ञापन बच्चे टीवी मोबाइल पर या अपने किसी सोशल मीडिया हैंडल पर देख लेते हैं या कार्टून प्रोग्रामों के दौरान बीच में अगर देख लेते हैं तो बस फिर उनका मन उस पर तो आ ही जाता है और उसका बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है, वहां से शुरू हो जाती है जिद।
0: और छोटे बच्चे तो क्या बड़ों का भी मन आ जाता है,
1: बिल्कुल
0: वे तो
1: सही
0: बच्चे
1: कहा।
0: हैं। और जब उनके पसंदीदा अभिनेता है या खिलाड़ी है या कार्टून पात्र किसी खाद्य पदार्थ का प्रचार करते हैं ना, तो बच्चे भी उसे खाने की जिद करने लगते हैं। इसके अलावा फिर जन्मदिन है भाई, पार्टियां हैं मॉल में, मल्टीप्लेक्स में, स्कूल के आसपास की दुकानें, ऑनलाइन फूड डिलीवरी ने भी जंक फूड को बच्चों की पहुंच में बहुत ही आसान बना दिया है कि इतना इजीली उन्हें सब मिलता है, तो वो तो उन्हें इजी है
1: बिल्कुल,
0: और चटपटा
1: और
0: स्वादिष्ट है।
1: चटपटा स्वाद है। और चलिए स्वाद भी अगर किसी को पसंद ना आए तो एक बच्चा तो खा रहा है, शायद दो तीन खा रहे हैं, तो वो जो एक नहीं खा रहा है तो उसका भी मन करेगा या उसको बोला जाएगा कि देखो तुम ये खाकर देखो
0: कितना
1: कितना
0: अच्छा।
1: अच्छा है। तो
0: और फिर वो
1: बस
0: अपनी मम्मी से कहेगा कि सबकी मम्मियां तो लेकर देती है, आप ही हमारे साथ ऐसा क्यों करते हो।
1: ऐसा क्यों करते हो, बिल्कुल सही कहा। और जंक फूड स्वाद में भले ही लाजवाब लगे सोनाली, लेकिन स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, यानी हानिकारक है। और इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल होता है, सफ़ेद चीनी, नमक, मैदा, फिर ये प्रिजर्वेटिव डले होते हैं, कई प्रकार के फ्लेवर उसमें मिलाए जाते हैं और आर्टिफिशियल कलर्स उसके अंदर होते हैं। और ये वहीं पे देखो आप, विटामिन, प्रोटीन, फाइबर और कई तरह के खनिज जैसे पोषक तत्व की तो बहुत कमी होती है।
0: या फिर ना के बराबर होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। अच्छा, बच्चे तो नहीं समझ पाएंगे ये सारी बातें, हमें उनको बताना पड़ता है। अगर उनको बताएं कंपोजिशन में क्या लिखा है, देखो ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा है और तुम्हारे शरीर में इतनी ज़्यादा ये चली जाएंगी, ये मात्रा हमारे शरीर में ज़रूरत नहीं है इतनी जितना ये एक पैकेज के
0: थ्रू
1: द्वारा जा
0: मिलता
1: रहा
0: है।
1: है, तो वो बच्चे समझेंगे। उनको बिठा के बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, समझते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त उन्हें देना होता है।
0: और परिणाम हमारे सामने है ना दीपा, कि जब हम छोटे थे या फिर हमारे साथी मोटे नहीं थे, है ना।
1: बिल्कुल सही
0: आजकल के
1: कहा।
0: बच्चे देखिए ना कितने मोटे होते जा रहे हैं, जंक फूड खाने से बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, मधुमेह है छोटे छोटे बच्चों को,
1: बहुत छोटे।
0: डायबिटीज हमें मालूम ही नहीं था, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर मालूम नहीं था, दांतों की समस्या है। हम हार्डली बहुत कम डेंटिस्ट के पास जाते थे, पर आजकल तो हर बच्चा डेंटिस्ट के पास
1: बिल्कुल
0: जाते हैं।
1: सोनाली, पहले तो डेंटिस्ट इतने होते ही नहीं थे, अब तो पेडेटिक डेंटिस्ट भी होने लगे हैं जहाँ छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर डेंटिस्ट है, क्योंकि छोटेपन से ही उनको दांतों की समस्याएं, यानी उनके दूध के दांत भी अभी गिरे नहीं है, उसके पहले ही उन्हें बहुत ज्यादा बिल्कुल एक सीरियस दांतों की प्रॉब्लम होने लग जाती है।
0: साथ ही उनकी ना रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आने लग गई है, और कम उम्र में उन्हें अनेक स्वास्थ्य समस्याओं से का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए ना, हम यही चाहेंगे ना कि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे, खुश रहे। अगर ये चाहते हैं तो हमें जंक फूड से बच्चों को दूर रखना चाहिए, और अभी हमें एक गाना सुनना चाहिए।
1: उसके तो पास रहना चाहिए, है ना।

0: सोनाली, हमारे सभी साथियों ने, सहेलियों ने अलग अलग संदेशों से के द्वारा बताया है कि जंक फूड के बारे में उनके क्या विचार हैं। बहुत सी बातें तो बताइए, हम ये चाहते हैं कि आप कोई सखी या किसी भी हमारे सुनने वाले, इस वक्त सुनने वाले श्रोता बताएं, उनके घर में छोटे बच्चे हैं, अगर हैं तो क्या वो बाहर के खाने के लिए जिद करते हैं तो आप उन्हें कैसे समझा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं, दोनों ही बातें बताएं।
1: इस विषय पर भी हमें लिखकर बताएं, क्योंकि जब है ना श्रोता अपने कमेंट्स लिखते हैं ना तो ज्यादा दिल के करीब होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और उससे एक ना बहुत अच्छा संदेश भी जाता
0: और
1: है
0: और समझ में भी आता है कि क्या चल रहा है सबके घरों में, क्या एक सा चल रहा है, एक सा सही हो रहा है या एक सा गलत हो रहा है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कि मेरी प्रोविजन की शॉप है और मेरी शॉप में 5-10 रुपए वाले पैकेट वाला नाश्ता मैं बेचता हूँ। आजकल स्कूल के बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे पैकेट लेना पसंद करते हैं। लंच बॉक्स में घर का हेल्दी फूड देने के बजाय घर से पेरेंट्स भी यही खरीद कर नाश्ता में दे देते हैं। इसमें ज्यादा शुगर और नमक होने के कारण बच्चे छोटी उम्र में मोटापे के शिकार हो जाते हैं और घर पर भी पिज्जा जैसे जंक फूड आसानी से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं, जो हेल्थ के लिए अनुकूल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है।
0: बिल्कुल, वही एक और संदेश आया है कि आज के समय में खाने में जंक फूड बच्चों की पहली पसंद है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, चिप्स, ये तरह तरह के पैकेट स्नैक्स, खुशबू और आकर्षक पैकिंग की वजह से बच्चों को ये बहुत लुभाते हैं। इसके अलावा माता पिता की व्यस्त दिनचर्या और आसानी से ये सब अवेलेबल हैं, उसके कारण भी ऐसे खाद्य पदार्थ बच्चों के आदत का हिस्सा बन गए हैं जो उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए स्वाद के साथ बच्चों को संतुलित आहार का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जंक फूड को पूरी तरह खाने पर पाबंदी लगाने के बजाय उन्हें एक संतुलित भोजन का महत्व समझाना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए ज़रूरी है कि घर में जो भी आप हेल्दी फूड, जो भी स्वस्थ खाना बना रहे हैं पौष्टिक, वो बनाएं भी और खाएं, खुद भी खाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। क्योंकि जब आप खुद करेंगे उस चीजों को, उन आदतों को अपनाएंगे, तो बच्चे बिल्कुल उन आदतों का अनुसरण करेंगे।
1: अब देखिए ना, अब जैसे पिज्जा जैसे ही हम अगर मोटी मोटी रोटी बना के उस पे सारी सब्जियां डाल के उसको अच्छे से उसके ऊपर पनीर कद्दूकस करके उसमें चाट मसाला डाल के दिया ना, तो बच्चों को बताएं कि देखिए होममेड पिज्जा है, ये खाएंगे ना तो ये ज्यादा हेल्दी है। इस तरह से बच्चों को, अगर डोसा का बैटर है उससे आपने ABCD बना के दिया बच्चों को, तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। फिर पराठे को कट करके ABCD का शेप बना दिया तो बच्चे शौक से खाएंगे।
0: और इसी तरह से पराठे में जैसे किसी दिन पालक की प्यूरी डाल के आप हरे कलर के पराठे दीजिए, कभी बीट रूट का पराठा जो कि बिल्कुल लाल कलर का हो जाता है, या एक दिन जिस दिन आपके पास थोड़ा समय हो, ये सब अलग अलग कलर के पराठे बना के दीजिए, तो उनको बहुत सुंदर लगता है और बहुत खुशी से और बहुत स्वाद लेकर के चाव से खाते हैं बच्चे।
1: और एक हमारे साथी ने लिखा है कि जंक फूड हमने भी बहुत खाया है, हमारी मजबूरी होती थी क्योंकि कॉलेज इतना दूर था, वहाँ आसपास कॉलेज कैंटीन के सिवा कुछ भी नहीं होता था। भूख लगने पर मजबूरी में जो कैंटीन में मिलता था वही खाना खाना पड़ता था, लेकिन आज मैं कोई जंक फूड नहीं खाता हूँ।

0: बहुत अच्छी बात
1: ये
0: है,
1: बहुत अच्छी
0: कि
1: बात,
0: मजबूरी में हम
1: बिल्कुल
0: खा सकते हैं, पर जहां पर हम कोशिश कि ना खाएं वहां पे हम कोशिश कर सकते हैं।
1: अच्छा, एक संदेश ये कहता है कि भाई ये आकर्षक नहीं बल्कि घर में समय पर भोजन नहीं बना पाने का परिणाम है। अच्छा, इन्हें ऐसा लगता है, और वो भी वहां पर विशेष, जहां दंपत्ति भी ऑनलाइन ऑनलाइन ऑर्डर करके मनपसंद भोजन मंगवा लेते हैं। अरे, बच्चे तो अनुसरण करते हैं, और जब कर लिए तो उसका दुष्प्रभाव से मोटे होने पर उन्हें रोकते भी हैं, मगर वे भी तो तभी रुकेंगे जब आप रुकेंगे। ऐसे में तो यही कहना होगा कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग
0: चुग
1: गई
0: गई खेत।
1: खेत। तो
0: एक
1: भाई
0: साथ ही लिखते
1: यही
0: हैं।
1: बात हम पहले भी कर रहे थे कि
0: हाँ,
1: हमें पहले अपने आप में
0: पहल
1: सुधार
0: करनी
1: लाना होना,
0: पड़ेगी जी।
1: सुधार भी लाना होगा और पहल भी करनी होगी।
0: एक साथ ही कहते हैं कि सिर्फ बच्चों में ही नहीं, बड़ों को भी जंक फूड खाने की आदत होती है। चिप्स, पिज्जा और वो भी कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ, इन सभी का आकर्षण विज्ञापनों के साथ बड़ा प्रचार किया जाता है। रंग बिरंगी पैकिंग और इंस्टेंट डिलीवरी सुविधा के कारण गृहिणियों को भी आराम मिल जाता है।
1: जी बिल्कुल। और एक और संदेश ये कह रहा है कि जो बच्चे देखते हैं जंक फूड, बस उसे देखते ही मचल जाते हैं, और ये है कि इनके लिए बहुत नुकसानदायक है सेहत के लिए। इनमें जो मसाले केमिकल का प्रयोग करते हैं बनाने वाले, वो स्वास्थ्य का कतई ख्याल नहीं रखते। उनका उद्देश्य अधिक से अधिक बिक्री पर जोर देना होता है। चटपटे मसालेदार चीजें बड़े आदमियों की तरह बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उनका पाचन तंत्र इतना मजबूत नहीं होता, इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इन्हें अपने बच्चों को इनसे दूर
0: दूर
1: रखें।
0: रखें। वही एक साथी कहते हैं कि आजकल ये बहुत स्वाभाविक हो गया है। रंग बिरंगी पैकिंग, स्वाद और विज्ञापन उन्हें जल्दी आकर्षण करते हैं। कभी कभार पसंद की चीज खाना गलत नहीं है, लेकिन अगर यही रोज की आदत बन जाए तो पौष्टिक भोजन से दूरी बढ़ सकती है। अब तो जंक फूड 10 मिनट में घर पर आ जाता है। वही सुविधा हो गई है, इसलिए उस सुविधा का हमें दुरुपयोग नहीं करना है।
1: बिल्कुल।
0: कि हाँ भाई, कभी बीमार है, या कभी जन्मदिन है, या फिर कभी कोई खास अवसर है, 2-3 महीने में, 4 महीने में एक आध बार ठीक है, पर अगर रोज रोज वही हम खाने लग गए तो उसकी आदत भी बन जाएगी
1: और हाँ, आप
0: और
1: कुछ
0: बीमारियां भी करीब आ जाएगी।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक, हम गर्मियों की छुट्टी में जब सारी बहनें मिलती हैं, तो एक हमारी सिस्टर ने बताया, कजिन सिस्टर ने, कि हम अपने बच्चों को बिठा लेते हैं और उनको बोलते हैं कि पूरे हफ्ते भर के में आप क्या खाना चाहते हो बताओ, एक दिन सिर्फ आपको मिलेगा, वो भी क्योंकि छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, एक दिन बाजार का, बाकी सब चीज़ें घर में बनेंगी और आप भी हमारे साथ मदद करेंगे। तब उन बच्चों को बहुत मज़ा आने लगा, और अब वो बच्चे कहते हैं कि मम्मी आप हमें घर पर ही हर चीज़ बना के खिलाइए।
0: कितना सुंदर उदाहरण है। चलिए अब गीत सुन लेते हैं।
1: चलिए।

0: भाई दिल किसी पे भी आए, ये हानिकारक पदार्थों पे ना आए बस, है ना।
1: मिष्टी दोई पे आ जाए तो बात होगी,
0: हाँ ये
1: है
0: बिल्कुल सही है।
1: ना। एक हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, सामग्री है 1 लीटर फुल क्रीम दूध, 3/4 कप चीनी या गुड़, 3 से 4 चम्मच गाढ़ा दही, हंकड़। बनाने का तरीका दूध

0: लिए किसी गर्म जगह पर जमने के लिए रख दें। जमने के बाद इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा कर लें और फिर सर्व करें मिष्टी दोई।
1: तो भाई देखियो सखियो, हमारे सोनाली ने तो मीठा आपको पहले बता दिया, लेकिन साथ में क्या खास व्यंजन बनेगा, तो वो बनेगा आलू और दम, यानी कि दम आलू फेमसली उसे कहते हैं। छोटे छोटे आलू लेने होते हैं इसमें, जो दम आलू के लिए जाते हैं। आप ले लीजिए आधा किलो यानी 500 ग्राम, प्याज ले लीजिए 2 बारीक कटे हुए, टमाटर 2 बारीक कटे हुए, दही आधा कप, लहसुन अदरक का पेस्ट आपके हिसाब से ले लीजिए, तेल 3 बड़े चम्मच, जीरा आधा चम्मच, हल्दी छोटी आधी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आपके हिसाब से, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, गरम मसाला जैसे आपके घर में चलता है वैसे लीजिए, नमक भी आप अब जैसे आपके घर में डाला जाता है वैसा, और हरा धनिया सजाने के लिए। तो अब आलू उबाल करके छील लें, उनमें हल्के छेद छेद छोटे छोटे से कर दीजिए। कढ़ाई में तेल गर्म करके आलू को हल्का सुनहरा होने तक तल लें और निकाल लें। उसी कढ़ाई में जीरा डालें, फिर प्याज डालकर सुनहरा भुने, अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ और सेकंड के लिए भुने, फिर अब टमाटर हल्दी लाल मिर्च धनिया पाउडर डालकर मसाले को तब तक भुने जब तक तेल मसालों से अलग ना हो जाए। गैस धीमी करके फेटा हुआ दही डालें और लगातार चलाते हुए पकाते रहिए। अब तेल तले हुए जो आलू आपने रखे थे अलग से, नमक और लगभग 1 कप पानी उसमें डालना है। ढककर इसको आप धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकाएं ताकि आलू में मसाले खूब अच्छी तरह से घुल जाए और मिक्स हो जाए। आखिर में आप गरम मसाला डालिए और हरा धनिया डालकर थोड़ा सा और पकाइए।
0: और इसके साथ में लूची यानी बंगाल की बेहद लोकप्रिय पूरी है, जो सामान्य पूरियों से थोड़ी अलग होती है। आटे के बजाय मैदे से बनाई जाती है। इसमें मोयन के लिए थोड़ा सा घी या तेल और हल्की सी चीनी मिलाई जाती है, और इसका रंग सफेद और बनावट बाहर से हल्की खस्ता और अंदर से बेहद नरम होती है। और आलू और दम और ये लूची और साथ में मिष्टी दोई हो तो क्या कहने।

0: में व्यंजन में, बंगाल के व्यंजन में पूरी और दम आलू की बात ये हो रही है आज, लेकिन ये बिहार का भी लोकप्रिय व्यंजन है। जी हाँ बिल्कुल है, और जब भी कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है ना तो खीर पूरी तो बनती ही है, साथ में दम आलू भी बनता है, लेकिन आजकल कहीं कहीं जगह पर इस पनीर की सब्जी ने जगह ले ली है।
1: और एक साथी ने लिखा है, एक सखी ने, कि लूची व्यंजन पहली बार सुन रही हूँ,
0: जी
1: तो इनके घर में अब लूची बनने वाली है और हमारे घर में भी बनेगी। और हम श्रोताओं को दिल से धन्यवाद कहेंगे कि आपके कमेंट्स के कारण, आपके इतने सुंदर सुंदर संदेश के कारण कार्यक्रम में चार चांद लग गए।
0: बिल्कुल सही
1: और अब
0: कहा।
1: इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। आप सभी को सोनाली पाठक
0: और दीपा माहेश्वरी का
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: हमारे बहुत सारे साथियों ने भर भर के कमेंट्स लिखे हैं दीपा। एक साथी कहते हैं कि भाई है अपना दिल तो आवारा, बिल्कुल पहले अपने दिल पर मुंह पर कंट्रोल होगा जंक फूड के प्रति, तभी बच्चों को भी इसके लिए मना कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश आया है कि बंगाल

0: दोस्तों नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हर्षदा राज्याध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्षदा राज्याध्यक्ष, जो एक जानी मानी फिजियोथेरेपिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में
2: और मुझे यहाँ बुलाने के लिए थैंक यू।
1: डॉक्टर, ये जो फिजियोथेरेपिस्ट है, इसकी जरूरत आजकल लोगों को बहुत पड़ती है। जब किसी को टेनिस एल्बो हो जाती है, किसी की गर्दन टेढ़ी हो जाती है, शोल्डर में प्रॉब्लम हो जाती है, पर फिजियोथेरेपिस्ट का काम कितना गंभीर है, सबसे पहले तो ये बताइए।
2: सो फिजियोथेरेपिस्ट का काम गंभीर नहीं बोलूंगी मैं, बट जरूरी है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसे बन गई है कि इसकी जरूरत पड़ती है।
1: जी जी।
2: अगर हम सोचे कि हम कितना टाइम बैठे रहते हैं एक जगह पे, काम भी ऐसे हो गए हैं कि लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे काम करना,
1: सारा दिन बैठे,
2: सारा दिन 8 घंटा, समटाइम्स 4 या 5 घंटा एक साथ बैठे हैं लगातार, तो हमारा बॉडी का टेंडेंसी है कि शोल्डर्स क्रंच हो जाते हैं, हेड फॉरवर्ड आ जाता है, तो गर्दन की प्रॉब्लम्स होती है।
1: जी।
2: अभी ये जो लोग हैं उनको एक्चुअली लाइफस्टाइल डे टू डे में कोई एक्सरसाइज मिलती ही नहीं है, तो एक्सरसाइज एक्चुअली ये आर्टिफिशियल हो जाती है, मतलब करनी पड़ती है। तो जब भी हम करते हैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज के लिए, तो कभी कभी चॉइस भी गलत करते हैं या बहुत ज्यादा टाइम करते हैं। अगर टेनिस एल्बो टेनिस से रिलेटेड नहीं है, कोई भी चीज अगर हम बहुत ज्यादा करें या

0: बहुत हैवी कुछ उठाएं और हमको आदत नहीं है वो चीज की और वो हम बार बार करें, या तो समझो अगर टेनिस ही खेल रहे हैं तो शॉट परफेक्ट करने के लिए बार बार वही शॉट मारते रहें, तो तभी होता है ये. तो अभी बिकॉज साइंस हैज गॉन अहेड एंड रिसर्च ने दिखाया है कि क्या करना चाहिए, तो इसके लिए ये सब चीजों के लिए फिजियोथेरेपिस्ट आर इसेंशियल.
1: बिल्कुल.
0: जबी लाइफस्टाइल ही ऐसी थी जहां बहुत सारी एक्टिविटी जरूरी थी लाइफस्टाइल के लिए, तभी आर्टिफिशियल एक्सरसाइज या कुछ ऐसा नहीं था. और अभी स्पोर्ट्स में भी इतना पावर के साथ लोग खेलते हैं कि उनके लिए एक्सरसाइज करना, वो चीज मेंटेन करने के लिए, पावर बिल्ड करने के लिए जो एक्सरसाइज जरूरी है, उससे भी कभी कभी पेन बढ़ता है. तो इस चीजों के लिए हमारी जरूरत पड़ती है.
1: बिल्कुल. और एक और एरिया है जहां बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और वो है स्पोर्ट्स, जिसकी दिशा में आपका बहुत सारा काम है.
0: हाँ,
1: इस बारे में बताइए.
0: स्पोर्ट्स मतलब कि फिजिकल होता है और स्पोर्ट्स के लिए ट्रेनिंग भी जरूरी होती है. स्पोर्ट्स में एक्टिविटी ऐसी होती है कि वो बहुत अपने, मतलब यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट. इसके लिए जरूरी है कि उसका प्रेपरेशन भी ऐसा हो कि यू आर एट योर फिजिकल बेस्ट. फिजिकल ट्रेनिंग भी सख्त होती है, प्रैक्टिस ट्रेनिंग भी सख्त होती है, और फिर जब भी मैच में जाते हैं तो यू आर कॉम्पीटिंग विथ योर राइवल हु इज ऑल्सो बेस्ट. तो उन्होंने भी बेस्ट उनकी फिजिकल स्टेटस बनाई है, आपकी भी है, और आपको दोनों को जीतना है. तो मैं हमेशा बोलती हूँ ये वॉर के जैसा है, जो दो सोल्जर्स वॉर पे जाते हैं, बेस्ट देते हैं क्योंकि जीतना तो है. तो इस कंडीशन में इंजुरीज आर गोइंग टू हैपन. तो इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प अ लिटिल बिट टूवर्ड्स प्रिवेंशन. मतलब जो प्रिवेंटेबल है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं. अगर उसी टाइम कुछ हो गया, गिर गया कोई या कुछ हो गया, तो वो प्रिवेंटेबल नहीं है. बट जो प्रिवेंटेबल है वो कंडीशंस प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और जब भी इंजरी हो भी जाती है तो उसके रिकवरी में हम हेल्प करते हैं. अगर सर्जरी है तो सर्जरी के बाद तो बहुत सारा काम होता है. सो व्हाट आई कॉल लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन, क्योंकि सपोज ACL सर्जरी है या रोटेटर कफ जो शोल्डर की है या कुछ भी, अगर टेनिस एल्बो की भी हो, उसका रिकवरी पीरियड बिटवीन 3 months टू 9 to 12 months बाय द टाइम यू कम बैक.
1: तो वो पूरा साल
0: जाता है. ACL सर्जरी अगर हो तो स्पोर्ट में वापस आने के लिए 9 महीना जाता है. आई कॉल इट लाइक,
1: मतलब क्या होता है,
0: इट इज एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट. ये नी वाली लिगामेंट है, बहुत फेमस है, बहुत एथलीट्स को होती है.
1: अखबारों में हम पढ़ते हैं.
0: हाँ, स्पेशली फुटबॉल या ऐसे जो है जहां बैलेंस और रोटेशन होता है, तो ये होती है इंजरी. 9 महीने लगते हैं, इट्स लाइक गिविंग बर्थ, जेस्टेशन पीरियड उतना तो लगता है. तो वो पूरा 9 महीना हमारे अंडर होता है ट्रीटमेंट, और एंड वी कॉल इट ग्रेडेड. तो वो स्टार्ट होता है जैसे हम ABCD लिखते हैं वैसे, बहुत बेसिक से चालू होता है, और फिर हर 3-3 हफ्ते के बाद या 6 हफ्ते के बाद इंक्रीमेंट होता है. और इस तरह से पूरा 9 महीना चला जाता है. बाय द 7th month दे कैन गो बैक टू फील्ड एंड दे कैन स्टार्ट विथ फील्ड प्रैक्टिस एंड ऑल दैट, बट फिर भी टीम में आने के लिए 9 महीना लगता है.
1: बताइए ये कितनी
0: तो स्पोर्ट्समैन को बहुत ही जरूरत है फिजियोथेरेपिस्ट विद देम, अगर अफोर्ड होता है वो टीम के लिए. अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में सब लेवल पे ये नहीं होता है, क्योंकि टीम्स के पास उतने पैसे ही नहीं होते हैं. या मेनी थेरेपिस्ट डू गो फ्री ऑफ चार्ज, बट फिर वो क्वालिटी नहीं मिलती है.
1: बिल्कुल, आपने सही कहा. आम जीवन में जब फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है तभी हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं. आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, तो एक आपको हो सकता है कि अजीब सा सवाल लगे, पर क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो सावधानियां बरते हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े?
0: जरूर है, पर हम ऐसे हैं सब, इवन मी, कि जब तक एकदम जरूरत नहीं हो हम उसको एक्नॉलेज ही नहीं करते कि कुछ प्रॉब्लम है.
1: यानी जब आग लगती है तभी हम,
0: तभी हाँ, जब ही थोड़ा सा कुछ पता लगता है तभी कोई नहीं उस पे केयर करता है. मतलब फर्स्ट साइन इज पेन.
1: जी,
0: पेन ऐसी एक इंडिकेशन है बॉडी की, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है, कि वो बता देता है आपको कि कुछ गलत हो रहा है. कभी कभी पेन थोड़े टाइम के लिए आता है, मतलब एक जब भी आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तभी पेन आता है और इमीडिएटली जाता है. उसको भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि वो पेन कहाँ है, क्या वो जॉइंट में है, कितना है, एक्टिविटी के बाद चला

0: जा रहा है, पर आप अगर वो एक्टिविटी वापस करो, समझो आप स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हैं, तो अगर एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, एक 10 स्टेप्स आप चले ऊपर, घुटने में पेन हो, तो वो नॉर्मल नहीं है. अगर इमीडिएटली जाए तो ठीक है, एक दिन आप इग्नोर कर सकते हो. अगर 2-3 दिन लगातार आपको घुटने में पेन होता है 10 सीढ़ियां चलने में, तो आपको समझना चाहिए कि कुछ गलत हो रहा है, मे बी इट इज रॉन्ग. मैं एक स्टोरी बताती हूँ आपको. एक आदमी आया था शोल्डर इंजरी के साथ, तो मैंने पूछा क्या हुआ आपको, तो बोलता है कि एक हफ्ते पहले मैं मेट्रो में जा रहा था, तो ऊपर पकड़ा हुआ था हाथ, तो थोड़ा जर्क लग गया, उसी टाइम समझा कि कुछ गलत है, पेन हो रहा है, तो मैंने एक हफ्ते के लिए नहीं किया, वो ऊपर नहीं लेके गया हाथ, और सब ठीक हो गया, मेरा पेन चला गया. तो मैंने बोला तो फिर आप इधर क्यों हो, पेन तो चला गया. तो बोलता है नहीं, कल मैंने फिर से वही किया, मुझे लगा कि अगर मैंने नहीं किया तो शायद कभी नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने वही किया और फिर से पेन हो गया, तो मैं आपके पास आया हूं. तो ऐसा है कि हम सोचते हैं कि अगर हमने एक एक्टिविटी छोड़ दी तो वो पेन आएगा वापस या कुछ ठीक नहीं रहेगा. तो ये जो है बार बार पेन आना जाना, हम उसको टाइम देते हैं, जब तक हमें नहीं लगता ये सीरियस है तो नहीं करते. देखो, जो ओपन इंजरी होती है, अगर आपके हाथ में कोई कट आ जाए तो आप उसकी केयर लोगे, उसको ढक के रखोगे, ये देखोगे कि वो टच ना हो किधर, या आप उसको स्क्रैच नहीं करोगे, उसको केयर लोगे जब तक कि उसका कवरिंग ना आ जाए, वो भी गिर जाए, बहुत 15 दिन उसकी केयर लोगे. पर जो इनविजिबल इंजरीज होती है, जो अंदर होती है, उनको हम इग्नोर करते, हमें लगता है कि हमने अगर वो एक्टिविटी नहीं की तो ये अच्छा नहीं होगा. तो हम करते रहते हैं और उस वजह से वो बढ़ती है. वो एक है कि आपको रेस्ट उसी टाइम लेना चाहिए जब भी है, और अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग हैं जो केयर जो हम ले सकते हैं उसे बचाने के लिए. अगर आप बहुत स्पेसिफिक पूछोगे तो मैं बोलूंगी कि एक कॉमन है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी,
1: जी
0: अगर उस बारे में बात करनी है तो वो मैं बता सकती हूँ कि उसका केयर कैसा लेना है.
1: डॉक्टर साहब, यहाँ ये बात करेंगे लेकिन इस गाने की बात करेंगे, तो यहाँ इस प्रोग्राम का पहला गाना मुझे लगता है कि बजाते हैं, और वो गाना है राही तू रुक नहीं जाना, मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की छांव में. ये गाना इसलिए सुनते हैं क्योंकि जब भी कोई इंजरी होती है तो व्यक्ति रुक जाता है, अटक जाता है, उसके काम रुक जाते हैं, तो ये गाना सुनते हैं, फिर आगे की बातें करते हैं.
2: राही तू मत

0: डॉक्टर, ये गाना सुना है हेमंत कुमार की बड़ी मीठी सी आवाज में, और ये गाना ये कहता है कि रुक मत जाना, लेकिन जब समस्याएं होती हैं, शारीरिक समस्याएं, तो इंसान को रुकना ही पड़ता है। आप कुछ बताने वाली थी।
1: मुझे बोलना है कि ये अभी सब दुनिया के 50-60% लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी
0: जी
1: ये होता है, और फिर उसके लिए नी रिप्लेसमेंट भी होता है, बहुत कॉमन हो गया है।
0: महिलाओं में ज्यादा होता है?
1: महिलाओं में थोड़ा ज्यादा होता है, यस, उसके भी कारण हैं, बट ये एक्चुअली मैं प्रिवेंटेबल टोटली नहीं बोलूंगी, बट डिले तो जरूर हो सकता है, और अगर अर्ली केयर ले तो इसको शायद प्रिवेंट भी हो सकता है। मेनली ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो इधर डिसयूज के वजह से होता है, मतलब हम ज्वाइंट ज्यादा यूज नहीं करते, बहुत आराम की लाइफस्टाइल है, कुछ ज्यादा करना ही नहीं पड़ता है, वो एक है। दूसरा ये है कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, या तो बहुत सालों के लिए कुछ नहीं करके फिर इमीडिएटली एक्सरसाइज या कुछ बहुत ज्यादा कर लेते हैं। अभी देखो मैराथन भी अगर करना है तो फुल मैराथन करना है या हाफ मैराथन करना है, उसके लिए ट्रेनिंग ज्यादा करनी है, ये सब होता है, इसलिए नी पेन सेटल ही नहीं होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एज रिलेटेड बोला जाता है, बट उसका डाइट से बहुत ज्यादा संबंध है। ब्लड शुगर अगर बढ़े और बढ़ी रहे, सो डायबिटीज बेसिकली विल गिव यू अ कॉन्स्टेंट इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी विच विल अलाउ द जॉइंट टू डीजेनरेट, मतलब वो उसकी वेयर एंड टेयर हो सकता है। अर्ली साइंस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली ये जो वाटी होती है जो घुटने के आगे होती है,
0: कटोरी जैसा,
1: कटोरी, वो सबसे पहले उधर पेन होता है यूजुअली लोगों को। हमारे फ्रंट ऑफ द लेग बड़ा मसल है क्वाड्रिसेप्स करके, तो वो क्वाड्रिसेप्स नॉर्मल फंक्शन के लिए, मतलब ये जो कटोरी है सामने, पटेला जो हम बोलते हैं उसको, वो उसका स्मूथ फंक्शनिंग या स्मूथ मूवमेंट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम उसको थोड़ा सा मसाज करें या क्वाड्रिसेप्स को रिलैक्स करें, उसको स्ट्रेच करें, काफ मसल जो पीछे होता है लोअर लेग के पीछे, काफ मसल, उसको अगर हम स्ट्रेच करें रोज, तो सो क्वाड्रिसेप्स एंड पीछे का काफ मसल, ये दोनों अगर हम अच्छे से स्ट्रेच करें और उनको अगर हम लेंथ में अच्छा रखें, अगर आपको फ्लैट फुट है तो उसके लिए जब भी आप एक्सरसाइज करते हो या लॉन्ग वॉक्स करते हो, तो उसके लिए अगर आप अच्छे आर्च सपोर्ट वाले शूज वेयर करें, और वॉकिंग अगर आपको करना है तो आप थोड़ा उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। अभी ऐसा बोला जाता है कि वजन ज्यादा होने की वजह से घुटने पे दबाव आता है, पर वो ही एक कॉज नहीं है। फैट जो है बॉडी में वो भी अभी एक मेटाबॉलिक एंडोक्राइन ऑर्गन के जैसा फंक्शन करता है, तो उसके वजह से कोई ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो डिस्ट्रक्टिव हार्मोन्स होते हैं,
0: जो हड्डियों को तबाह करना शुरू करते हैं।
1: तो ये जो फैट बिल्डअप होता है वो भी कम रखना पड़ता है। सो शुगर, सॉल्ट, फैट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशनल फैट, बट जो बॉडी में फैट बढ़ता है वो अगर कम रखें, सब मसल्स लेग के स्ट्रेच रखें, एक्सरसाइज रोज का रोज सही मात्रा में करें, नॉट टू मच नॉट टू लेस, और कायम करें, मतलब ऑलमोस्ट एवरी डे आपका वॉकिंग, जो हमारी बॉडी एक्चुअली एक्सरसाइज के लिए ही बनी है, मूवमेंट के लिए बनी है, हम उसको मूवमेंट बंद कर देते हैं और फिर सडनली जब भी चालू करते हैं तो बहुत ज्यादा करते हैं। तो अगर ये सब आप करो तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस कैन बी प्रिवेंटेड और इट कैन बी डिलेड। अनफॉर्चुनेटली ये बात है कि जब तक हमें ये सब समझता है तभी ऑलरेडी लेट हो चुका होता है।
0: जी,
1: ऑल प्रिवेंशन हैज टू बी स्टार्टेड इन चाइल्डहुड,
0: बिल्कुल
1: बचपन से ही आदतें डालनी चाहिए।
0: आपने ये जो पूरा ब्यौरा बताया है इससे एक बात ये

0: समझ में आई कि रेगुलर सही एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब आप इन तमाम चीजों से बच सकते हैं। ये जो सही एक्सरसाइज वाला मुद्दा है, कितना इम्पोर्टेंट,
1: हिप्पोक्रेटस ने बोला था, जो हिप्पोक्रेटस इज द फादर ऑफ मेडिसिन, उन्होंने 400 बीसी में बोला है कि इफ वी कुड गिव एवरी इंडिविजुअल द करेक्ट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज एंड द करेक्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, दैट वुड बी द सेफेस्ट वे टू एंश्योर हेल्थ।
0: कितनी बड़ी बात
1: और ये कितनी पुरानी बात है, और हमारे भी संस्कृति में यही बात है
0: जी,
1: योगा में यही बात है,
0: संपूर्ण स्वास्थ्य की बात है। और उन्होंने क्या कहा कि सही मात्रा में एक्सरसाइज,
1: सही मात्रा
0: है ना, और
1: वही कैच फ्रेज है, नॉट टू लेस नॉट टू मच
0: जी। और आज आपने जब इस कार्यक्रम में बताया तो मुझे ये उम्मीद है कि लोग जो है वो अवेयर होंगे इस बात के लिए कि एक्सरसाइज
1: लाइफ में कभी बंद ही नहीं करनी चाहिए
0: जी।
1: जो हम चाइल्डहुड में जो थोड़ा रनिंग करते हैं या खेलते हैं वो कायम रखना चाहिए
0: जी। आपने एक बात कही थी कि महिलाओं में ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है, ये
1: ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला था, बट पोरोसिस भी,
0: हाँ दोनों चीजें
1: दो अलग हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज वेयर एंड टेयर, जो घिस जाती है जॉइंट्स, और पोरोसिस है जो
0: हड्डियां
1: कमजोर होती हैं, पोरस हो जाती हैं।
0: तो महिलाओं पर अगर फोकस किया जाए तो आपकी क्या राय और सलाह होगी, क्योंकि अमूमन महिलाएं सारे परिवार का ख्याल रखने के चक्कर में खुद पर फोकस सबसे कम रखती आई हैं।
1: ऑस्टियोपोरोसिस एक्चुअली ज्यादा डेंजरस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का तो है आंसर, कर सकते हैं सर्जरी, ऑस्टियोपोरोसिस बहुत डेंजरस है क्योंकि वो रिवर्स होता है कभी कभी, अभी तो बहुत अच्छे इंजेक्शन और सब आए हैं जो होता है रिवर्स, बट उसको टाइम लगता है, किसी में होता है किसी में नहीं। मेनली विमेन में क्या होता है, ईस्ट्रोजन जब भी कम हो जाता है मेनोपॉज के टाइम, तो उस वजह से कैल्शियम का
0: डेफिशिएंसी
1: होती है, विटामिन D3 एंड सम अदर मिनरल्स आर देयर, वो अगर नहीं हो तो फिर एब्जॉर्प्शन, बोन में एब्जॉर्प्शन कैल्शियम का कम हो जाता है। हमारे नॉर्मल फूड में अगर हम केयरफुल नहीं हो तो एक्चुअली उतना कैल्शियम नहीं जाता है बॉडी में जो रिक्वायरमेंट होती है। मतलब पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, दे शुड हैव 1500 mg ऑफ कैल्शियम अ डे, वो नहीं होता है। एक्चुअली अगर दही खाएं या ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं ये सब, पर इतना हमारा बैलेंस न्यूट्रिशन अभी नहीं रहा है और इस वजह से भी होता है। दूसरा है कि बोन को ग्रो करने के लिए, वो एक तो है ना, ये ऑस्टियोपोरोसिस अगेन आई कॉल इट अ चाइल्डहुड प्रॉब्लम, नॉट एडल्टहुड प्रॉब्लम,
0: उसका पता बड़े होने पर लगता है,
1: बट उसका अक्यूमुलेशन पहले 18 साल में ही होता है कैल्शियम, और वो बैंक के जैसा है, जितना भरो उतना बाद में घटा सकते हो आप, पहले भरना चाहिए, तो 18 तक भरना चाहिए, फिर उसको मेंटेन करना चाहिए 30-32 तक, और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा खर्चा कर सकते हैं पर उसको थोड़ा सा रिप्लेनिश भी करना चाहिए। तो अगर मेनोपॉज हो तो अभी हार्मोनल रिप्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है। बोन स्ट्रांग रहने के लिए मसल की बहुत जरूरत है, मसल अगर बोन पे पुल नहीं करेगा तो बोन को स्टिमुलेट ही नहीं होगा वो कैल्शियम उठाने के लिए। तो एक्सरसाइज न्यूट्रिशन मतलब कैल्शियम डाइट में, और फिर जो कमतरता है वो सप्लीमेंट से, मेंटेनिंग ऑल अदर मिनरल्स ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट एब्जॉर्प्शन के लिए, और एक्सरसाइज सो मसल्स का पुल रहे बोन्स पे, यही सब है। अगेन वेट मैटर्स, वेट ऑल्सो शुड बी अंडर कंट्रोल, बट मेनली एक्सरसाइज एंड फूड हैबिट्स एंड हार्मोन रिप्लेसमेंट व्हेनेवर रिक्वायर्ड। और अगर अर्ली डायग्नोसिस भी अभी बहुत है, मतलब आप BMD बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट रेगुलरली करो, 2-3 साल में जरूर करो, मेनोपॉज के बाद तो हमेशा करो 2-3 साल में। अगर अर्ली ऑस्टियोपेनिया मतलब एकदम थोड़ी पहली वाली कमजोरी अगर दिखे तो फिर बहुत अच्छे मेडिसिन हैं अभी रिवर्स करने के लिए, क्योंकि बेसिकली हमें ये चाहिए कि हम जब एज में बढ़ जाए तो गिर के फ्रैक्चर ना हो, या कभी कभी स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर्स भी होते हैं, अपने आप से ही फ्रैक्चर हो जाता है।
0: शरीर इतना मजबूत रहना चाहिए
1: क्योंकि अभी एज एक्सपेक्टेंसी बहुत है, मोस्ट पीपल आर लिविंग,
0: हाँ लंबा है, स्वस्थ जीना,
1: लंबा जीना चाहिए और स्वस्थ भी जीना चाहिए, सिर्फ लंबा नहीं अच्छा जीवन चाहिए।
0: बिल्कुल सही है। आगे की बातें करते हैं, यहाँ एक गाना सुनते हैं, तो बताइए कि किस गाने की गुजारिश करना चाहती हैं?
1: गुजारिश की गुजारिश करूंगी।
0: क्या बात है, तो चलिए ये गाना सुना जाए यहाँ पर, तेरा जिक्र है,
1: तेरा जिक्र है,
0: करेक्ट, क्या गाना है,
1: बहुत ही सुंदर।

0: देखिए, गाना हमने सुना और ये गाना सुन के मन थोड़ा रिलैक्स हो गया। ये जो जीवन की भागदौड़ है, इस भागदौड़ में हम सामान्य इंसान और स्पोर्ट्समैन अपने शरीर को कितना ज्यादा ओवरलोड करते हैं, कितना ज्यादा स्ट्रेस करते हैं कि उनको फिजियोथेरेपिस्ट की शरण में जाना पड़ता है।
1: बाकी फिर सेम हो गया कि हम बहुत बॉडी को अब्यूज ही करते हैं,
0: जी
1: एक तरफ से उसे बहुत आराम देते हैं, जैसे कि बॉडी हमारा बना है एक्टिविटी के लिए, मूवमेंट इज द नेसेसिटी फॉर लाइफ। एक्चुअली ऐसा है कि हमारा ये जो फिजिकल बॉडी है वो समझो हार्डवेयर है अपना, और उसके पीछे एक फिजियोलॉजी है, मतलब जो यू कैन से ब्यूरोक्रेसी है कि उसको चलाना कैसे है, और उसके ऊपर बैठा है सॉफ्टवेयर विच इज आर ब्रेन। तो ये तीनों मिलके बॉडी चलती है पूरे लाइफ, और उसको चलाने के लिए एक तरीका है जो इनबिल्ट है। ये सब बोलते हैं कि बॉडी इज अ मशीन, आई मीन ये मशीन से भी बेहतर है, बट ये है ऑल सेड एंड डन समथिंग लाइक अ मशीन। उसको चलाने का एक तरीका है, और उस तरीके का अंडरलाइंग करंट पूरा एक्टिविटी है।
0: बिल्कुल,
1: अगर
0: जिस
1: वो
0: पर आप सबसे ज्यादा जोर दे रही
1: वो
0: हैं।
1: ही है जो सब चलाता है,
0: जी
1: अगर एक्टिविटी नहीं है

0: सब जो हार्मोन सिस्टम है या नर्वस सिस्टम है या मस्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो भी सब सिस्टम्स, इवन कार्डियक, सब कुछ अलग तरह से चलता है और उसमें थोड़ी सी खराबियां आती है धीरे धीरे. देयर इज अनदर प्रिंसिपल कि जो बॉडी है अपनी वो एक इक्विलिब्रियम रखती है हमेशा. और जब भी हम एक्स्ट्रा कुछ करते हैं, अगर एक्सरसाइज करते हैं, आपको मालूम है हार्ट रेट बढ़ेगी, थोड़ा स्वेटिंग होगा, बॉडी हीट बढ़ेगी, दैट मींस वो इक्विलिब्रियम बिगड़ गया. फिर उसको वापस लाना है, वो होम्योस्टेसिस होता है, मतलब जो नॉर्मल स्टेट है उस पे वापस लाना उसको, वो बॉडी के इनबिल्ट ही है, वो मैकेनिज्म भी,
1: रिलैक्सेशन
0: की जरूरत है, तभी सब चलता है
1: जी.
0: एक ये करना है, एक वो करना है, उसके लिए हॉर्मोन्स की जरूरत होती है. थोड़े हॉर्मोन्स ऐसे हैं जो एक्सरसाइज को अलाउ करते हैं और थोड़े हॉर्मोन्स ऐसे हैं जो रिजुविनेशन को अलाउ करते हैं, वो वापस लाने का. तो ये दोनों चीजें जरूरी है कि आप सही तरह से एक्टिव रहो, सही तरह से रिलैक्स करो, इनफ आराम करो, स्लीप. एंड ये भी हमें याद रखना है कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वो होम्योस्टेसिस एक जगह से हिलते रहता है दूसरी जगह पे.
1: Okay.
0: मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा आप वही स्थिति पे वापस आओगे. अगर आप 5 साल एज में बढ़ गए तो आपका होम्योस्टेसिस अलग जगह पे रहेगा,
1: तो वो एक्टिविटी चेंज हो
0: गई. अभी हम ऐसे हो गया है कि सब सोचते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर, एक्चुअली है नहीं. फिजियोलॉजिकली एज इज समथिंग, उसको थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमारी एक्टिविटी थोड़ी चेंज करनी चाहिए. एक्टिविटी इज इम्पॉर्टेंट, बट हाउ मच यू डू इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो अगर ये हम सब मेंटेन करें तो हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी फिजियोथेरेपिस्ट की. अगर हम नियम से चले कि क्या खाना है, कितना एक्टिव रहना है और कितना आराम करना है,
1: ये बड़ा मुश्किल लगता है कि फिजियोथेरेपिस्ट
0: मुश्किल
1: की
0: है
1: ना पड़े.
0: नहीं, मुश्किल ही है, इसीलिए हमारी जरूरत पड़ती है. और कोई पूछेगा अगर ये इतना सिंपल है तो फिर आपकी जरूरत क्यों है
1: जी,
0: तो ये बताने के लिए हमारी जरूरत है.
1: क्या बात,
0: क्योंकि अदरवाइज ये समझाने के लिए मुझे तो कंसल्टेशन में आधा टाइम मैं आई थिंक काउंसलिंग ही करती हूँ.
1: जी जी बिल्कुल.
0: बाकी के सेशन में हम लोग जो करना है ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज वो करते हैं, स्पेशली जो कंसल्टेशन सेशन है फर्स्ट वाला.
1: हाँ.
0: उसमें तो ऑलमोस्ट फुल सेशन, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन ही होता है.
1: लोग बहुत सारे सवाल लेकर आते हैं.
0: एक्चुअली जरूरत इसलिए है क्योंकि हम नहीं देखभाल कर रहे हैं बॉडी की
1: जी.
0: या तो रेस्ट ही करते रहते हैं, कभी फिर डॉक्टर बोलता है कि ब्लड शुगर बढ़ गया है, ये बढ़ गया है, अभी एक्सरसाइज करो, तो सीधा जाके मैराथन के लिए एनरोल करते हैं या टेनिस क्लास चालू करते हैं,
1: जो दोनों एक्सट्रीम है. एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या क्या करती हैं, लोगों को समझाने के बाद वाली जो प्रोसेस है उसमें कितनी एक्सरसाइज है, कितनी मशीनों की मदद है?
0: मेरा थोड़ा अलग से सिस्टम है मेरे क्लिनिक में, मतलब जो अभी आई थिंक मेनी पीपल आर डूइंग, बट मेरा ग्रेजुएशन ही बहुत पहले, लाइक आई हैव ग्रेजुएट 1989 और तभी तो. लेट मी टेक यू टू हिस्ट्री ऑफ फिजियोथेरेपी. फिजियोथेरेपी इंडिया में आई है 100 साल अभी हुए नहीं है, इट इज अबाउट 75-76 years. सो व्हेन आई ज्वाइंड 84 में, मैंने ज्वाइन किया, 89 में मेरा खत्म हुआ, तभी फिजियोथेरेपी बहुत नई थी. और ये जो अभी सर्जरीज हैं वो भी तभी नहीं थे, मतलब जो अभी आर्थ्रोस्कोपिक, जैसे मैंने ACL बोला, रोटेटर क्रफ, जो छोटी इंसिजन से सर्जरी होती है, वो 1985 या कुछ से चालू हुई है, मतलब मैं तभी थी कॉलेज में, सर्जरीज उतने तभी नहीं थे. रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, ये भी 1980s में आई है, वो भी एकदम नई नई थी तभी. अभी जो जितनी सर्जरीज होते हैं और जितने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन होता है, मतलब जब भी मैं कॉलेज में थी तभी अगर कोई साइक्लिस्ट रास्ते पे दिखा, मतलब दिखते थे तभी बहुत, तो वो एक्सरसाइज के लिए साइकिलिंग नहीं कर रहा था,
1: एक्चुअली
0: जरूरत के लिए कर रहा था. जो अभी बढ़ गया है ये सब, इसके लिए ये सब आए हैं. तो बट मेरा थॉट प्रोसेस तभी से ऐसे ही था कि जो इंजरी और पेन और सब है, और दूसरी साइड है एक्सरसाइज और सब, तो उसके बीच वाला ब्रिज हम लोग बन सकते हैं. तो उसी तरह से मेरा क्लिनिक चलता है. पहले पेन मैनेजमेंट होता है. अगर आप आए, समझो आपके पीठ में पेन है, तो फर्स्ट स्टार्ट होता है पेन मैनेजमेंट से. मेरे ख्याल से पेन बहुत जल्दी मैनेज हो जाना चाहिए
1: जी.
0: अगर वो अक्यूट पेन है, अभी आया है, तो उसको मैनेज कर सकते हैं बहुत जल्दी से. अगर पेन मैनेज जब भी होता है तो पहले 2-3 दिनों के अंदर ही हम थोड़े एक्सरसाइज चालू करते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए. और जैसे समझो 1 घंटे का सेशन है, तो पहले मे बी 45 मिनट्स उसमें से पेन मैनेजमेंट में जाएंगे.

0: फिर धीरे धीरे वो कम होके पेन का समझो लास्ट 10 मिनट ही पेन मैनेजमेंट करेंगे, ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज वी कॉल इट रिहैबिलिटेशन, मतलब मेकिंग दैट पर्सन फंक्शनल अगेन, जो भी फंक्शन.
1: जी
0: और वो जो हमारे एक्सरसाइज है वो ऐसे डिजाइन होते हैं, एज अप्रोप्रिएट, फंक्शन अप्रोप्रिएट, मतलब आप कुर्सी में बैठ के कंप्यूटर का काम करने वाले हो, या आप कोई मेडिकल रेप, या आप कोई सेल्स के डिपार्टमेंट हो जहां आपको ज्यादा चलना पड़ता है, या आप हाउसवाइफ हो जहां आप क्लीनिंग करोगे या कुछ भी करोगे, या आप स्पोर्ट्समैन हो, या इवन वीकेंड स्पोर्ट्समैन हो, अगर आप ऑफिस में काम करते हो बट वीकेंड में आप स्पोर्ट्स खेलते हो, तो आपको उस तरह से एक्सरसाइज कराना चाहिए जो एज अप्रोप्रिएट, फंक्शन अप्रोप्रिएट एंड स्यूटिंग टू योर नीड्स, सो इंडिविजुअलाइज्ड होता है.
1: बिल्कुल
0: तो ये प्रोसेस होती है. अगर सर्जिकल है, पोस्ट सर्जिकल है, तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, फिर वो प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है.
1: जी, तो मरीजों को ये बताइए कि कितना ज्यादा मायने रखती है फिजियोथेरेपी, क्योंकि एक चलन जो अमूमन हमारे आसपास देखा जाता है कि जब तक आराम मिला, तकलीफ थोड़ी कम हुई, तो छुट्टी मारो, कौन जाएगा फिजियोथेरेपिस्ट
0: हाँ,
1: के
0: बट
1: पास।
0: अगर मैंने देखा है कि आप जितना बात करते हो ना, जितना समझाते हो या एक्सप्लेन करते हो पेशेंट को, उतना उनका इंटरेस्ट बढ़ता है.
1: जी
0: जरूरी तो है, जैसे मैं बोलती हूँ पेन मैनेज हो जाता है, पेन के लिए इतनी तकलीफ नहीं करनी पड़ती है, एंड लाइक यू करेक्टली सेड, थोड़े दिनों में पेन चला जाता है, फिजियोथेरेपी का वर्क इज ओवर एक्चुअली. बट जो प्रिवेंटिव है कि नेक्स्ट एपिसोड नहीं होना चाहिए, या ये बार बार नहीं होना चाहिए, या आपको समझना चाहिए कि आपकी बॉडी क्या कर सकती है, क्या नहीं करना चाहिए. एंड अगेन लाइक आई सेड, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप एक्सरसाइज करो फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग. जो बॉडी का नॉर्मल फंक्शन है वो मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट. तो वो कैसे करना है वो सीखने के लिए हम ज्यादा काम करते हैं, सिखाने के लिए, एंड टू क्रिएट इंटरेस्ट इन यू फॉर एक्सरसाइज. उसके लिए बात करना बहुत जरूरी है. उसका जितना आप इम्पोर्टेंस समझाओगे, पेशेंट का इंटरेस्ट उतना ही बढ़ेगा, और उनके लैंग्वेज में उन्हें जैसे समझे वैसे एक्सप्लेन करना चाहिए.
1: जी
0: जैसे मैंने बोला, इंजरी कहाँ है, आपको कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है, क्यों करना है प्रोटेक्ट. सो आई कॉल इट एम्पावरिंग द पेशेंट. अगर आप एम्पावर करोगे तो वो खुद से जान जाएंगे. और
1: और
0: मेरा अदर थिंग इज कि उनको एम्पावर इस तरह से करो कि वो अपने आप से एक्सरसाइज कर सके. हमारे पास आने की जरूरत नहीं है ज्यादा,
1: जी,
0: बट ऑफकोर्स लर्निंग प्रोसेस के लिए 1 महीना या 2 महीना जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज ऐसी चीज है कि आपने अगर थोड़े अलग तरह से की तो वो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकती है. सो वो सिखाने में थोड़ा टाइम जाता है, पर उसके बाद बार बार आने की जरूरत नहीं है.
1: इसका मतलब यह है कि अगर आपको जरूरत है फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की, तो पूरी शिद्दत के साथ जाएं और जो कुछ सिखाया जा रहा है उसको सीख के प्रिस्क्राइब टाइम तक पूरा करें।
0: करें और करते रहे उसके बाद.
1: हाँ,
0: ये
1: करते
0: लाइफ लॉन्ग
1: रहें, ये
0: है,
1: भी।
0: लाइफ लॉन्ग है. जैसे मैं बोलती हूँ डाइट एंड एक्सरसाइज, उसको टाइम मत रखो. ऐसा
1: जी
0: मत बोलो कि मैं 2 महीने डाइट पे हूं, मैं 2 महीने एक्सरसाइज के लिए, फिजियोथेरेपी के लिए जाती हूं या जाता हूं. लाइफ लॉन्ग है, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, बट एक्सरसाइज लाइफ लॉन्ग है.
1: जी अब हम उन बातों पर आते हैं जहां आपने कुछ बहुत ही मशहूर हस्तियों का इलाज किया है, बीमारियों से, चोटों से, तो उससे जुड़े कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए।
0: मैंने फिजियोथेरेपी क्यों ज्वाइन किया, तभी तो कुछ उसका यही नहीं था, मतलब नोबडी न्यू कि फिजियोथेरेपी क्या है.
1: जी
0: मुझे मेडिसिन करना था, एमबीबीएस, और उसके बाद एमडी या एमएस नहीं मिला, 1-2 मार्क्स से छूट गया.
1: अरे रे,
0: तो फिर मैं फिजियोथेरेपी में आई, और मुझे तभी कुछ मालूम नहीं था क्या है ये.
1: हाँ,
0: जैसे मैंने बोला, मैंने ज्वाइन किया केईएम हॉस्पिटल, इट वॉज द फर्स्ट हॉस्पिटल इन मुंबई विच ऑफर्ड, एंड इन 84, जैसे मैंने अभी बोला, मैंने ये डिसाइड किया 1-2 साल के बाद, समझने के बाद कि ये क्या है, मैंने ये डिसाइड किया कि ये जो गैप है, तभी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी करके कुछ नहीं था, स्पोर्ट्स साइंस ही नहीं था, 84-85 में कुछ नहीं था. फिर भी मैंने ऐसे सोचा कि ये जो सब्जेक्ट्स है वो इतने अलाइंड हैं इस चीज के लिए कि जो लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं या स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, तो उन्हें हम ब्रिज बन सकते हैं उनके पेन और इंजरी और परफॉर्मेंस के बीच में. तो उस तरह से मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, क्योंकि था नहीं एक कोर्स, तो मैंने योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया, टेपिंग, स्पोर्ट्स टेपिंग, बहुत सारे कोर्सेज किए मैंने, एक्चुअली एक्सरसाइज के बहुत सारे किए, एडवांस्ड वेट ट्रेनिंग।

0: कोर स्टेबिलिटी ऑन रीबॉक बॉल एंड बहुत सारे किए। तो मैं प्रिपेयर्ड थी कि कभी ऐसी जरूरत पड़े, और मैंने मेरा क्लिनिक भी वैसे ही डिजाइन किया कि ज्यादा एक्सरसाइज बेस्ड एंड लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन। और आई डोंट नो हाउ लक के वजह से मेरे आसपास के लोगों के और ऑफकोर्स मेरे काम के वजह से भी थोड़े लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली एक्टर्स जिनको ऐसे बॉडी बनानी है किसी रोल के लिए और जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो अचीव करने के लिए, वो लोग और स्पोर्ट्समैन थोड़े थोड़े मेरे पास आने लगे। मैं ये बोलना चाहूंगी कि रेसलर्स जो बहुत पुअर रेसलर्स हैं उनके साथ मैंने बहुत पहले से काम किया है।
1: अरे गजब।
0: दंगल बहुत बाद में आई, उसके मच बिफोर दैट मैं 2002 से लोकल महाराष्ट्र के और नेशनल लेवल रेसलर्स के साथ मैंने फ्री में काम किया है। मेरे क्लिनिक में आते थे। एक्चुअली नाम आपने पूछा है, मैं नाम थोड़े बड़े वाले बोल सकती हूँ, बट ये लोग जो हैं उनके साथ मैंने इतना काम किया है। और इवन क्रिकेटर्स जो लोअर लेवल के अभी भी आते हैं, अभी भी एक था जो रोटेटर कफ इंजरी था उसको, ही इज ओनली 20-21, अभी कोई टीम में नहीं है, जिसे एक जरूरत है उनको मैं देती हूँ ट्रीटमेंट। तो बड़े नाम बोलो तो एक तो सचिन तेंदुलकर,
1: बाप रे।
0: हाँ, आई हैव बीन ट्रीटिंग हिम फ्रॉम 2002 टू 2012, मतलब क्वाइट अ लॉट, 10 इयर्स। जब भी बिकॉज स्पोर्ट्समैन का ये है कि वो टीम के साथ ट्रैवल करते हैं तो उनका थेरेपिस्ट उधर होता है
1: जी,
0: मैं कभी उसमें नहीं थी। बट जब भी इंजोर होते हैं तो घर पे होते हैं तो फिर उन्हें कोई और लगता है, और अगर एक पे भरोसा आ जाए तो फिर वही होता है। तो अनऑफिशियली आई वॉज नॉट विद बीसीसीआई, बट बीसीसीआई ऑलवेज पेड मी फॉर सचिन्स ट्रीटमेंट्स। आई हैव ट्रीटेड सचिन फ्रॉम बैक इंजुरीज, मेनली द टेनिस एल्बो,
1: जो बहुत ही मशहूर
0: टेनिस एल्बो एंड शोल्डर। या सो या ही इज बीन अ प्लेजर, और इतना हम्बल कोई वो लेवल पे हो ही नहीं सकता है,
1: क्या
0: हो ही नहीं सकता है कोई भी नहीं। मतलब एक बार जब मैं बहुत, मतलब आई थिंक नाउ आई एम प्रिटी एडवांस्ड इन माई फील्ड, बट एट दैट टाइम आई वॉज अ नो बडी एंड ही वॉज एट द टॉप। तभी भी एक बार मुझे याद है मैं उसके घर में रुकी हुई थी, कोई अपॉइंटमेंट था उसके साथ, और उसका मुझे मैसेज आया कि मैं 5 मिनट लेट होने वाला हूं, आई एम वेरी सॉरी, और एक्चुअली इट वुडंट हैव मैटर टू मी, बट वो इतना टाइम का पंक्चुअल दैट इवन ही थॉट कि आई शुड मैसेज।
1: वाह,
0: बहुत ही हम्बल आदमी है, एंड प्रूफ इज दैट ही प्लेड फॉर दोस 10 इयर्स दैट वाज ट्रेनिंग, ही प्लेड वेरी वेल।
1: क्या बात है।
0: नो, मुझे ये बोलना था कि ये प्रोफेशन मैंने चुना नॉट बाय चॉइस बट बाय चांस, बट इसमें से प्लेजर मुझे बहुत मिला है। ऋतिक रोशन, आमिर खान, सचिन तेंदुलकर, शिल्पा शेट्टी, बहुत बहुत नाम है, बड़े वाले भी और छोटे विक्ट्रीज भी बहुत हैं।
1: क्या बात है। तो जब बड़े स्टार्स को ट्रीट करती हैं तो कैसा वो क्या फीलिंग
0: मुझे
1: होती
0: कुछ
1: है?
0: अलग नहीं लगता है नहीं, सच नहीं लगता है। इट्स अ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स अ सीन, आई रियली डोंट फील, बट इट फील्स गुड। कभी शिल्पा शेट्टी डांस करके बताएं कि मुझे ये मूव करना है, इधर दुख रहा है कभी सचिन तेंदुलकर 10 स्ट्रोक मार के दिखाएं कि ये बैटिंग में इधर दुखता है, ये ऐसा दुखता है। कभी ऋतिक रोशन पुशअप्स करके दिखाएं
1: कि ये प्रॉब्लम हो रही है
0: तो अच्छा लगता है।
1: क्या बात।
0: दीज आर द पर्क्स, साइड पर्क्स,
1: ऑफ कोर्स, ऑफ
0: कोर्स, बट नो, इन रियलिटी नथिंग इज डिफरेंट
1: जी। एवरीबॉडी चूंकि इन तमाम लोगों की हो रही है जो मशहूर लोग हैं जिन्होंने आपसे सलाह,
0: पर मशहूर लोगों से बहुत ज्यादा मैंने रेगुलर लोगों से, और मुझे तो प्लेजर उधर से ही मिलता है, बिकॉज वो उनके प्रॉब्लम्स कोई सॉल्व नहीं कर सकता है, यू नो, लाइक दीज पीपल आई नो मैंने नहीं किया तो कोई और करता था। मुझे आई एम एक्चुअली लकी दैट आई केम इन कॉन्टेक्ट विद देम, बट ऑल दी अदर्स, सो मेनी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ओवर 37-38 इयर्स, वही प्लेजर देता है।
1: क्या बात है। चूंकि जिक्र हुआ है ऋतिक रोशन और आमिर खान का, तो इन दोनों में से किसका गाना सुनवाया जाए?
0: अभी आमिर खान का सुनाइए।
1: ठीक है, चूंकि बात दंगल की हो रही है,
0: दंगल,
1: तो दंगल का,
0: यस, का
1: गाना सुनवाते,
0: यस,
1: हैं, नैना।

0: डॉक्टर साहब, इतनी सारी बातें स्पोर्ट्स इंजरी की और नॉर्मल इंजरी की हुई, और आपने एक बात पर बहुत जोर दिया कि एक बहुत लंबा समय ऐसा था जब फिजियोथेरेपी पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। आज ऐसा समय है जब फिजियोथेरेपी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गई है, पर फिर भी क्या आपको लगता है कि एक आम इंसान फिजियोथेरेपी को लेके थोड़ा कम सीरियस है? इस तरह की चीजें आपने देखी हैं?
1: मैं ये कहूंगी कि बहुत लोगों को ये एक्सपेंसिव हॉबी लगती है।
0: एक्सपेंसिव हॉबी
1: क्योंकि पेन इज अ रियल थिंग
0: जी,
1: बट उसके बाद मुंबई जैसे शहर में रह के कम्यूटिंग इज सो डिफिकल्ट, टाइमिंग्स आर डिफिकल्ट, उसमें आना है, रोज आना है या हफ्ते में 3 दिन आना है, फीस भरनी है, ये सब थोड़ा मुश्किल लगता है आम आदमी के लिए, इसलिए बोलूंगी मैं। अदरवाइज मुझे तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि जो हमारे पास आते हैं वो क्वाइट अ फ्यू टाइम्स आते ही रहते हैं
0: जी,
1: उनको अगर उनको
0: हाँ
1: महत्व अगर ठीक से समझे तो वो आते हैं। बट फिर भी ये मैं बड़े शहर की बात कर रही हूँ
0: जी,
1: मुंबई की बात कर रही हूँ, मे बी मुंबई, बैंगलोर, कैलकटा, पुणे, ये सब, और इवन मिड लेवल सिटीज, ये सब आई थिंक फिजियोथेरेपी, आई थिंक पीपल डू अंडरस्टैंड, आते हैं, करते हैं, पर छोटे गांवों में और अभी तक नहीं है उतना, आई थिंक उसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं मालूम है लोगों को
0: जी।
1: फिजियोथेरेपिस्ट का पॉपुलेशन भी वो जगहों पे कम होगा
0: जी, तो
1: सब इधर ही बड़े शहरों में भरे पड़े हैं।
0: ऐसे शहरों में जहां लोग हमें सुन रहे हैं, छोटे छोटे शहर, लोगों को छोटी छोटी फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, और जो जिनको फिजियोथेरेपी कहा जाता है और जो इस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं, एज एन एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या सलाह देना चाहेंगी जो बहुत ही कॉमन लोग हैं, छोटे शहरों के लोग हैं और बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, डॉक्टर ने कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, ये प्रोटोकॉल आपको करना है?
1: मैं वो उसको सलाह दे कि अगर उनके पास कोई हो उधर तो ही तो फायदा है, बिकॉज नहीं तो, और आप बोल रहे हैं छोटे छोटी चीजें, वो है एक छोटी चीजों की थोड़ी बातें कर रही अभी, बट बड़ी चीजें भी होती है लाइक पैरालिसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स
0: जी,
1: हेमिप्लीजिया,
0: बल्कि सर्जरी के बाद भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है।
1: हाँ, बहुत
0: सीरियस मैटर है,
1: बहुत है, अगर टाइमली फिजियोथेरेपी नहीं किया तो फिर वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिफॉर्मिटीज आती हैं पैरों में या हाथों में, तो फिजियोथेरेपी एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट है।

0: और मैं लोगों को कुछ सलाह दे नहीं सकती अगर उनके पास नहीं है फिजियोथेरेपिस्ट, बट अगर है तो सच में लाइफ बदल जाती है. बिकॉज ये जो सर्जरीज हैं वो काफी नहीं है. सर्जरी इज इम्पॉर्टेंट समटाइम्स, बट उसके बाद वाला फिजियोथेरेपी नहीं किया तो फंक्शन नहीं आता है. मतलब जो हमें चाहिए वो एंड रिजल्ट, फंक्शन, वो ही नहीं आता है.
1: इसीलिए इसको रिहैबिलिटेशन कहते
0: यस,
1: हैं।
0: इट इज रिहैबिलिटेशन एंड इट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. इट शुड बी ट्राइड कि हर छोटी जगह पे भी फिजियोथेरेपिस्ट हो. और क्योंकि कई चीजें छोटी है, समझो चल भी जाएंगी नहीं करेंगे तो, बट कई चीजें ऐसी हैं कि आपका लाइफ ही बदल जाएगा. अगर नहीं किया तो खराब हो जाएगा, किया तो मच बेटर हो जाएगा.
1: जी, बुजुर्गों में फिजियोथेरेपी
0: यस,
1: कितनी डिफिकल्ट होती है?
0: बहुत जरूरी है, बहुत बहुत बहुत जरूरी है. एज के वजह से जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर बिकॉज ऑफ मसल वीकनेस.
1: जी
0: मसल इज प्रोग्राम्ड, जैसे मैंने बोला ब्रेन हॉर्मोन्स ये सब डिसाइड करते हैं कि बॉडी फंक्शनिंग कैसे करेगी. अप टू 30 ईयर्स बॉडी इज ग्रोइंग, मतलब आई विल से टिल 20 इट इज ग्रोइंग. 20 to 40 थोड़ा मेंटेन होता है स्टेटस को, और 40 के पास थोड़ा सा डिटेरियरेशन चालू होता है. ये हमारा सेट प्रोग्राम्ड है, बॉडी प्रोग्राम्ड है इस चीज के लिए. मसल लॉस बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब अगर हम इनएक्टिव है तो 30 के बाद ही मसल लॉस चालू हो जाता है. पहले 5-5% पर डेकेड, देन 10-15-20%, 70 और 80 एज के बीच में तो ड्रास्टिकली कम हो जाता है. 20-30% का लॉस होता है तो वीकनेस बढ़ जाता है. उसके बाद स्टेयर्स अगर आपको चढ़ने हैं तो डिफिकल्टी होती है ऊपर चढ़ने में, कुर्सी से कभी उठने में तकलीफ होती है, तो सोशल एक्टिविटी कम हो जाती है, बोन लॉस उसके वजह से होता है, एज रिलेटेड अदर बीमारियां आती है बिकॉज एक्टिविटी कम हो जाती है हार्ट के. तो मसल मेंटेन करने के लिए एक प्रिवेंटिव प्रोग्राम जीरियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए बहुत ही जरूरी है.
1: जी
0: पेन तो होता ही है, पेन मैनेजमेंट के लिए भी लगता है, बट मेनली मसल लॉस इज द बिगिनिंग ऑफ एवरी प्रॉब्लम ओल्ड पीपल हैव, इंक्लूडिंग फॉलिंग एंड हैविंग फ्रैक्चर्स.
1: वो तो बहुत ही
0: फ्रैक्चर
1: कॉमन चीज।
0: की डेंजर्स ये हैं कि गिर के आपका हेड इंजरी और हिप इंजरी, दीज आर द टू डेंजरस थिंग्स विच कैन हैपन टू ओल्डर पीपल, दैट विल मेक देम बेड रिडन और ऑल्सो कैन बी फेटल. सो
1: बिल्कुल
0: वो सब मसल पे डिपेंडेंट है, क्योंकि बैलेंस और हम जो भी बोलते हैं वो सब मसल से चालू होता है.
1: जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। और मुझे ये लगता है कि बुजुर्गों की इंजरी और उनके पेन मैनेजमेंट और जो आपने कहा कि प्रिवेंटिव जो उपाय हैं
0: बहुत
1: वो
0: ही
1: बहुत
0: जरूरी है,
1: जरूरी
0: और
1: है।
0: वो प्रिवेंशन जल्दी ही चालू होना चाहिए, बट इट्स नेवर टू लेट.
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: मैं बोल रही थी हमारे पास बहुत सारे बुजुर्ग आते हैं और हम होम विजिट्स भी उनको प्रोवाइड करते हैं. एक तो 95 ईयर ओल्ड थे जो 80 के एज से हमारे पास एक्सरसाइज कर रहे थे रेगुलरली, 2 or 3 times a week यूज टू कम टू क्लिनिक. एंड 95 ही पास्ड अवे, 1 day बिफोर दैट ऑल्सो ही हैड रिक्वेस्टेड होम विजिट फॉर एक्सरसाइज.
1: क्या बात है, इतना
0: सो सम
1: ध्यान रखने
0: पीपल आर
1: वाले लोग भी
0: रियली.
1: हैं।
0: और पंडित जसराज जी आते थे हमारे पास,
1: वाह वाह
0: हाँ,
1: वाह,
0: और हमारे
1: क्या
0: क्लिनिक
1: बात
0: में
1: है,
0: गाना गाते थे
1: क्या बात है,
0: ट्रेडमिल पे चलते चलते.
1: क्या क्या बात है, क्या बात है। जिस स्टूडियो में यहां हम बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहां भी
0: हाँ, वो
1: हम
0: भी 10 साल
1: पंडित
0: आए
1: जसराज
0: हमारे
1: को रिकॉर्ड
0: पास
1: कर
0: जस्ट
1: चुके हैं।
0: एक्सरसाइज के लिए, कार्डियक रिहैब, बट ही वेंट ऑन टू एक्सरसाइज.
1: गजब, क्या बात है। चलते चलते एक गाना सुन लिया जाए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। आपने चूंकि पंडित जसराज का जिक्र किया है, तो उन्होंने एक बहुत ही शानदार गाना गाया था, 1920 नाम की एक फिल्म है, उसमें वादा तुमसे है वादा, वो गाना सुनते हैं थोड़ा सा।
0: यस.

0: डॉक्टर, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी बातें आपने की हैं, चलते चलते एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आम आदमी से आप वो कौन सी बात कहना चाहेंगी जो इस पल सबसे ज्यादा जरूरी है?
1: एक्सरसाइज करते रहो
0: जी,
1: एब्सोल्युटली करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो। जब भी पेन हो
0: जी
1: तो किसी को कंसल्ट करो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली सॉल्विंग द प्रॉब्लम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत लगे तो जरूर जाना चाहिए, बिकॉज एट अ वेरी सिंपल लेवल मेनी मेनी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड।
0: बहुत जरूरी सूत्र आपने दिए हैं कि ये तमाम चीजें माने तो बहुत सारी
1: एक्सरसाइज एंड डाइट इज, एंड आई ऑलवेज टेल पीपल दैट एक्सरसाइज एक्चुअली मेडिसिन से भी डिफिकल्ट है प्रिस्क्राइब करना, हर एक के लिए इंडिविजुअलाइज होना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन में ना एक आता है, उसके पीछे पर्ची आती है जहां पे लिखा रहता है डोसेज, एज रिलेटेड, वेट रिलेटेड, ये वो। एक्सरसाइज में बहुत सारा, हर दिन भी बदलना पड़े तो बदलना चाहिए। अगर आप टायर्ड हो तो नहीं करना चाहिए ज्यादा, थोड़ा हल्का वॉक करो, जिस दिन एनर्जेटिक लगता है उस दिन ज्यादा करो, क्योंकि उसका रिकवरी उस तरह से अच्छा होगा।
0: बिल्कुल,
1: सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडवाइस लेके एक्सरसाइज करो।
0: एडवाइस लेके एक्सरसाइज करो, ये आज के इस प्रोग्राम की बॉटम लाइन है। डॉक्टर हर्षदा, बहुत बहुत शुक्रिया कि विविध भारती के स्टूडियो में आके आपने इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई। आगे फिर आइएगा और फिर हमारे श्रोताओं से मुखातिब होकर जरूरी

0: बातें बताइएगा।
1: आई एंजॉयड, थैंक यू।
0: शुक्रिया।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हर्षदा राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग काजल भदरगे, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के छाया गीत में गुलजार के अशार और उन्हीं के नगमे। शहतूत की शाख पे बैठा कोई बुनता है रेशम के तागे, लम्हा लम्हा खोल रहा है, पत्ता पत्ता बीन रहा है, एक एक सांस बजाकर सुनता है सौदाई, एक एक सांस को खोलकर अपने तन पर लिपटाता जाता है, अपनी ही सांसों का कैदी रेशम का ये शायर एक दिन अपने ही तागों में घुटकर मर जाएगा।

एक पुराना मौसम लौटा, याद भरी पुरवाई भी, ऐसा तो कम ही होता है, वो भी हूं तन्हाई भी। यादों की बौछारों से जब पलकें भीगने लगती हैं, कितनी सूंधी लगती है तब माजी की रुसवाई भी, और खामोशी का हासिल भी, एक लंबी सी खामोशी है, उनकी बात सुनी भी हमने, अपनी बात सुनाई भी।

0: न आने की आहट न जाने की टोह मिलती है, कब आते हो कब जाते हो। इमली का ये पेड़ हवा में हिलता है तो ईंटों की दीवार पे परछाई का छींटा पड़ता है और जज्ब हो जाता है, कब आते हो कब जाते हो। बंद कमरे में कभी कभी जब दिए की लौ हिल जाती है तो एक बड़ा सा साया मुझको घूंट घूंट पीने लगता है। आंखें मुझसे दूर बैठकर मुझको ही देखती रहती हैं, कब आते हो कब जाते हो। दिन में कितनी कितनी बार मुझको तुम याद आते हो।
1: बस रे।

0: हमारा गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा।
1: जाग के काटे सारे रैना, जाग के काटे।
0: हम अभी हाजिर हुए।

दिल में ऐसे ठहर गए हैं गम, जैसे जंगल में शाम के साए, जाते जाते सहम के रुक जाएं, मुड़ के देखें उदास राहों पर, कैसे बुझते हुए उजालों में दूर तक

रात चुपचाप दबे पांव चली जाती है। रात खामोश है, रोती नहीं, हंसती भी नहीं। कांच का नीला सा गुंबद है, उड़ा जाता है। खाली खाली कोई बजरा सा बहा जाता है। चांद की किरणों में वो रोज सा रेशम भी नहीं। चांद की चिकनी डली है कि घुल जाती है, और सन्नाटों की एक धूल उड़ी जाती है। काश एक बार कभी नींद से उठकर तुम भी हिज्र की रातों में ये देखो तो क्या होता है।

बस एक ही सुर में एक ही लय पे सुबह से देख कैसे बरस रहा है उदास पानी। फुहार के मलमली दुपट्टे से उड़ रहे हैं, तमाम मौसम टपक रहा है, पलक पलक रिस रही है ये कायनात सारी। हर एक क्षय भीग भीग कर देख कैसी बोझल सी हो गई है, दिमाग की गीली गीली सोचों से भीगी भीगी उदास यादें टपक रही हैं। थके थके से बदन में बस धीरे धीरे सांसों का गर्म लुभान चल रहा है।

0: फिल्म शक, संगीत वसंत देसाई का। फिल्म इजाजत, पंचम का संगीत।
1: चुप सी लगी।
0: फिल्म सन्नाटा, संगीत हेमंत कुमार का। फिल्म खुशबू, संगीत पंचम का।
2: अब के सावन बरसे।
0: फिल्म किनारा, संगीत पंचम। फिल्म लीला, संगीत जगजीत सिंह। आज का छाएगी इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं अमित कुमार की आवाज में बालिका वधू फिल्म के गाने के साथ। आनंद बख्शी हैं गीतकार और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया
3: पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी
4: मैं निकला हो गड्डी लेके और रास्ते पर
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छपकर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
7: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
8: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
7: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
9: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
7: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
10: तुम्हारी याद सताते हैं
7: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
11: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। लीजिए अब सुनिए जसपाल सिंह की आवाज में नदिया के पार फिल्म का गाना। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में हिम्मत वाला फिल्म का गाना इंदिवर के बोल और बप्पी लहरी के तर्ज़।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की, जो आतंकवाद के प्रति भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति की सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के भी निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा गया है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि वे पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वे विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पुणे और उसके आसपास लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इससे शहर को भीड़भाड़ और प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकेगा। लावले स्थित सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आयोजित बुनियादी ढांचा विकास विकसित भारत की राह विषय पर श्री गडकरी ने कहा कि पुणे शिरूर हडपसर यावत तलेगांव चाकन शिकरापुर और शिरूर संभाजीनगर सहित कई प्रमुख परियोजनाएं चल रही हैं। यूपीआई से संचालित पोस ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सेवा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय

0: के लोगों को कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजी जा सकती है। ईरान ने कहा है कि उसने ओमान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही को व्यवस्थित करने की योजना पर सहमति बना ली है। दोनों देश अब इससे संबंधित अंतिम संयुक्त बयान की तैयारी कर रहे हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह फिर से खोलना अमरीका की प्रमुख मांग रही है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो गई। पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-7 21-11 से हराकर दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। गॉल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। लीजिए अब सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में सलामी फिल्म का ये गाना।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: पहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
3: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
2: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
4: मैं अगले दिन आशुतोष ग्वारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3:30-4:00

0: चार घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां से हुजूर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम तराने नए पुराने। लीजिए सुनिए जसपाल सिंह की आवाज में गीत गाता चल फिल्म का गाना। रविंद्र जैन है गीतकार और संगीतकार।

अगला गाना हमने लिया है क्रोधी फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने। आनंद बख्शी ने लिखा इसे और संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज दिन भर के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आज के शेष कार्यक्रम शाम 6:35 से आप सुनेंगे संध्या रंजन, 6:45 से संगीत सरिता। इन दिनों आशय श्रृंखला प्रारंभ की है ताल प्रवाह, तबला वादक भाग एक, कलाकार है पंडित कालीनाथ मिश्र, प्रस्तुति मनीषा जैन की। शाम 7 से फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला प्रस्तुत किया जाएगा। शाम 7:45 से सुनेगा इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से, आज की फिल्म है 1942 अ लव स्टोरी। रात 8 से हवा महल के अंतर्गत झलकी सुनिएगा शाहिद दावत, लेखन पीवी राव का, निर्देशन साधना भरद्वाज का, चित्रलोक सुनिएगा रात 8:15 से, आपके लिए रात 9 से। रात 9:30 से सुनवाएंगे आज के फनकार, ये केंद्रित होगा निर्देशक डेविड धवन पर। रात 10 से छाया गीत, आलेख सलमा सैयद का, रात 10:30 से सुनिएगा ढलती जाए रात, और रात 11 से रंग तरंग। कल 18 अगस्त के कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। सुबह 6:05 से सुनेगा वंदनवार, 6:30 से झरोखा, 6:35 से सुनवाएंगे आपको श्री रामचरित मानस गान भाग 284। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से सुनेगा संगीत सरिता। इन दिनों श्रृंखला सुन रहे हैं आप ताल प्रवाह, तबला वादक भाग दो सुनिएगा, कलाकार हैं पंडित कालीनाथ मिश्र। सुबह 7 से भूले बिसरे गीत, 7:30 से हम है राही प्यार के। सुबह 8:15 से सुनिएगा त्रिवेणी, आलेख स्वर सविता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 से चित्रलोक, सुबह 9:30 से आपको सुनवाएंगे आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार गुलजार पर, प्रस्तुति तेजश्री कामले की। सुबह 10 से पिटारा के अंतर्गत सुनेगा सेहतनामा, इसके अंतर्गत फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हर्षदा राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत सुनवाएंगे आपको, प्रस्तुति जुबैर खान की। सुबह 11 रात्रि 11 से रंग तरंग, दिन में 12:05 से सुनेगा यादों की महफिल, दोपहर 1 से सुरीला सफर, दोपहर 2 से त्रिवेणी, दोपहर 2:15 से दोपहर समाचार।

दोपहर 2:30 से सदाबहार नगमे सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त होता है दोपहर 3 से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। शाम 4 से सुनवाएंगे आपको पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉयड के सितारे अभिनेता यशपाल शर्मा और अभिनेत्री प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग सुनिएगा प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। छायागीत का पुनर्प्रसारण शाम 5:30 से सुनिएगा तराने नए पुराने। संध्या रंजन आप सुनते हैं शाम 6:35 से। शाम 7 से फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनिएगा शाम 7:45।

फिर से इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस रात 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत झलकी सुनेगा। एक पत्र अंग्रेजी में लेखन चंद्रशेखर पांडे, निर्देशक अनूप सेठी। चित्रलोक रात 8:15 से। रात 9 बजे से सुनवाएंगे आपको कार्यक्रम आपके लिए, रात 9:30 से आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री मनीषा कोइराला पर, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। रात 10 बजे से छाया गीत, आलेख एवं स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी की। ढलती जाए रात, रात 10:30 से सुनेंगे, और रंग तरंग रात 11 बजे से। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या रंजन। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं हेमंत कुमार, सुधा मल्होत्रा और मन्ना डे की आवाजों में। नरसी भगत फिल्म के गाने के साथ गोपाल सिंह नेपाली हैं गीतकार और संगीतकार हैं रवि।

0: नमस्कार मित्रों, समूची सृष्टि एक निश्चित लय में गतिमान है और इस चराचर जगत की गति लय जैसे किसी ताल में निबद्ध है और यह मानव जीवन प्रवाहमान है इसी ताल में। श्रोताओं, आज से आरंभ हो रही है श्रृंखला ताल प्रवाह। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की पहली कड़ी।
1: संगीत सरिता के सभी रसिक श्रोताओं, आप सभी को मैं रामकृष्ण दास एक नई श्रृंखला में स्वागत करता हूं। इस संगीत श्रृंखला का नाम है ताल प्रवाह। इस कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं बनारस घराने के जाने माने तबला वादक श्री कालीनाथ मिश्र जी। मिश्रा जी, आपका स्वागत है, आपको मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: हमारे साथ सारंगी में संगति प्रदान करेंगे उस्ताद फारूक लतीफ खान साहब। खान साहब, आपको मेरा नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: और हारमोनियम पर संगति प्रदान करेंगे श्री विनोद बड़गे जी। विनोद जी, आपको भी मेरा नमस्कार।
4: नमस्कार।
1: आज से लेकर कई दिनों तक ये ताल प्रवाह चलता रहेगा, जिसमें तालों के बारे में और तबला वादन के विभिन्न शैलियों के बारे में श्री कालीनाथ मिश्रा जी वादन करेंगे और इसके बारे में बोलेंगे भी। मिश्रा जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपके तबला वादन का शुभारंभ बहुत कम उम्र में हुई होगी, और जितना मुझे पता लगा कि आप गायक परिवार से हैं और आपने तबला वादन की तालीम पंडित शंभुनाथ मिश्रा, पंडित मदन मिश्रा एवं बनारस घराने के मूर्धन्य कलाकार पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज से प्राप्त की। मिश्रा जी, हम आपके बारे में और अधिक कुछ जानना चाहेंगे।
4: दास बाबू, सबसे पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ संगीत सरिता का, जिन्होंने मुझे इस स्टूडियो में बुलाया। मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैं एक संगीत परिवार में जन्म लिया। 4.5 साल की उम्र में हमने तबला शुरू कर दिया।
1: वाह।
4: और कहते हैं कि पूजा पाठ करने में सबसे पहले भगवान गणेश को याद करते हैं। हमारे गुरुजी पंडित किशन महाराज जी हमेशा अपने कार्यक्रम का समापन गणेश परण से करते थे, तो मैं सोच रहा हूं कि क्यों न गणेश परण से शुरू किया जाए। 3 ताल से लेता हूं दास बाबू। 3 ताल सभी तालों का राजा है, और कहते हैं कि जिसने सा सीख लिया वो रे तक पहुंच जाएगा, जिसने धा सीख लिया वो तधा तक पहुंच जाएगा।
1: क्या कहने।
4: तो हम सोच रहे हैं कि सबसे पहले विलंबित 3 ताल लिया जाए। गंग गंग दड़पति गज मुख मंगल गिट गिड गिट गिड गिट गिड तुन तुन तत्थई जय जग बंदन वक्त तुंड दानी दाता विघन हरन।

शुभ करण धागे ना धागे धूमकीट धूमकीट तक धूमकीट धूमकीट तक धूमकीट थुड़ंग तिटक तक था। तो मैं इसे विलंबित तीन ताल में बजाता हूँ फारूक भाई।

पहले मैं ये गणेश परन पढ़ के सुनाता हूँ। गंग गंग गणपति गज मुख मंगल गीट गीड गीट गीड गीट गीड थुन थुन तत् तत् थी जय जग वंदन वक्र तुंड दानी दाता विघन हरण शुभ करण धागे न धागे धूम कीट तक धूम कीट। इसमें खास पखावज का अंदाज है कि भगवान गणेश पखावज कैसे बजाते थे, उन्हीं का एक अंदाज है, क्योंकि भगवान गणेश पखावज बजाते थे।

ये था भगवान गणेश का आराधना। अब बनारस का उठान का क्या अंदाज है? प्रस्तुत है उठान।

बनारस का जो एक अंदाज है वो खुले हाथों से बजाने का एक अंदाज है। तो श्रोता, एक क्या होता है पहाड़, उसी का एक अंदाज है।

ये जो एक अंदाज है बनारस का, थाप, चाट और गत्ता तीनों कैसे बोलता है,

0: ये था हमारा उठान।
1: क्या बात है, बहुत खूबसूरत चीजें आपने प्रस्तुत की।
0: धन्यवाद,
1: बहुत अच्छा लगा।
0: धन्यवाद।
1: हम ये जानना चाहेंगे, आपने जो उठान की बात की, ये किस लिए बजाया जाता है? हमने सुना है कि नृत्य में कुछ आमद या सलामी ये भी कहते हैं, तो ये क्या चीज है?
0: उठान का मतलब होता है जोरदार बोलों का प्रवाह, नाम है तार प्रवाह, और सरिता में भरी हुई संगीत। उठान का जो एक अंदाज है वो सिर्फ नाच में नहीं होता है, एक सारंगी प्लेयर, एक सितार प्लेयर, हर इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले पहले एक मूड बनाते हैं, तो वो अपने सुर को देखते हैं। लेकिन बनारस का जो अंदाज है, हमारे गुरुजी पंडित किशन महाराज जी या शंभुनाथ मिश्रा जी, उनका जो एक अंदाज है, उठान का मतलब होता है माहौल बनाना। जब बरसात होती है

0: साउंड, बोलों के साथ तालमेल, एक प्रेम विलाप बोलों के साथ, छोटी छोटी तिहाइयां लेके तब वो पहाड़ पे चढ़ते हैं। फिर उठान का जो साउंड होता है वो पखावत से आया है। वो
1: अच्छा
0: जी हाँ, वो पखावत से आया है। तो उठान का मतलब होता है कि पहले ही पब्लिक में ऐसा उठान बजा दो कि पूरी पब्लिक कम से कम एक घंटे आपको देखती रहे, और वो बड़ा पावरफुल साउंड होता है।
1: वाह
0: जी
1: मिश्रा जी, आपने इतना खूबसूरत माहौल तैयार किया है, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया।
0: धन्यवाद।
1: तो कोई एक गीत आप बताइए ना हमारे श्रोताओं के।
0: देखते हैं कि हमें संगीत सरिता ताल प्रवाह में कौन से गाना सुनाते हैं हमारे श्रोताओं को।

ताल प्रवाह। इस श्रृंखला की ये थी पहली कड़ी। सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र से बातचीत कर रहे थे रामकृष्ण दास। तकनीकी सहयोग वंदना ठाकुर और निखिल धामापुरकर का। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला लेकर हाजिर होंगे बस थोड़ी ही देर में।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम जयमाला। सभी फौजी साथियों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं एक देशभक्ति गीत के साथ, जिसे हमने लिया है द लेजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म से। आवाजें हैं सोनू निगम और हरिहरन की, समीर के बोल और ए आर रहमान की तर्ज़।

फौजी साथियों, अब आपको सुनवा रहे हैं स्वानंद किरकिरे का लिखा और शांतनु मोइत्रा का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की। फिल्म का नाम लगे रहो मुन्ना भाई।

फौजी साथियों, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जयमाला विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से। लीजिए अब सुनिए समीर अंजान का लिखा और राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया गाना, मोहित चौहान और अलीशा चिनॉय ने गाया इसे, कृष थ्री है फिल्म का नाम।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है जयमाला। फौजी साथियों लीजिए अब सुनिए सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में जोड़ी नंबर वन फिल्म का गाना। इसे लिखा है सुधाकर शर्मा ने और संगीतबद्ध किया है हिमेश रेशमिया ने।

फौजी साथियों, आपकी सेवा में प्रस्तुत है दिल तो पागल है। फिल्म का गाना लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल और उत्तम सिंह की तर्ज।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है जयमाला। फौजी साथियों लीजिए अब सुनिए उदित नारायण आशा भोसले और साथियों की आवाजों में लगान फिल्म का गाना जावेद अख्तर ने लिखा इसे और तर्ज बनाई है ए आर रहमान ने।

फौजी साथियों, अभी आप सुन रहे थे ड्रीम गर्ल 2 फिल्म का गाना मीत ब्रदर्स और नेहा कक्कर की आवाजों में, कुमार के बोल और मीत ब्रदर्स की थी तर्ज। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश सुनिधि चौहान की आवाज में पुष्पा फिल्म से। रकीब आलम ने लिखा इसे और संगीतबद्ध किया है देवी श्री प्रसाद ने।

फौजी साथियों, इस गाने के साथ ही आज का जयमाला कार्यक्रम संपन्न होता है। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है 1942 अ लव स्टोरी।

सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाज़ों में, जावेद अख्तर के बोल और आरडी बर्मन के तर्ज। फिल्म एक ही फिल्म से है, सभी गाने 1942 अ लव स्टोरी से।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल

0: ये तुझे हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
3: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
2: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
4: मैं अगले दिन आशुतोष ग्वारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा हुजूर।
6: और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में 1942 अ लव स्टोरी फिल्म का ये गाना।

0: मैंने कभी तुम्हें निराश किया है?
1: नहीं नहीं नहीं, नहीं।
0: और एक अच्छे पति होने के नाते तुम्हारा भी फर्ज है कि तुम भी मुझे निराश ना करो। हाँ
1: ओके ओके। अच्छा अब ये बताओ कि तुम्हारी समस्या क्या है?
2: तुम तो जानती ही हो खाजापुर के महाराजा और महारानी हमारे शहर में आए हुए हैं।
1: अच्छा अच्छा फिर आगे बोलो।
2: महाराजा साहब अपने पैसे से खाजापुर में एक अस्पताल बनवा रहे हैं।
1: अच्छा।
2: वो उदार हैं इसलिए दूसरी संस्थाओं को इस अस्पताल में निर्माण के लिए दान देने की इजाजत भी दे रहे हैं।
1: अरे वाह, इसमें संदेह नहीं कि वो बहुत ही उदार हैं।
2: हिज हाइनेस ने हमारे महिला मंडल की कार्यकारिणी समिति की दो मेंबर्स अंबिका और लक्ष्मी से इस विषय में बातचीत की है।
1: अच्छा।
2: लेकिन हिज हाइनेस ने मुझसे जिक्र तक नहीं किया। हाँ।
1: अरे ये तो अच्छा ही हुआ, तुम्हें अपने भाग्य को सराहना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें इस पचड़े से दूर ही रखा।
2: लेकिन मैं अपमानित महसूस कर रही हूँ जी।
1: ओह।
2: मैं चाहती हूँ कि हिज हाइनेस मुझसे भी सिफारिश करवाएं।
1: तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ?
2: इसका एक ही तरीका है।
1: क्या?
2: उनको डिनर देना।
1: डिनर?
2: अंबिका और लक्ष्मी ने भी अपने अपने घरों पर उन्हें डिनर दिया था और हिज हाइनेस ने इन्हीं डिनर पार्टियों में उनसे कहा कि हमारा मंडल अस्पताल के लिए दान दे सकता है।
1: लेकिन सुशीला,
2: और तू और लक्ष्मी और अंबिका हमेशा उन्हीं पार्टियों का जिक्र किया करती हैं और मुझे वो बातें मुंह बंद करके सुननी पड़ती हैं। जी मैं क्यों पीछे रहूं उनसे?
1: लेकिन लेकिन सुशीला, ऐसे बड़े लोगों को डिनर देना बहुत ही खर्चे का काम है।
2: अरे नहीं, ज्यादा खर्चा नहीं होगा। बस किसी अच्छे होटल से खाने की चीजें मंगवा लेंगे और थोड़ी ड्राइंग रूम की सजावट सुधार लेंगे और कहीं से थोड़ी देर के लिए बढ़िया फर्नीचर किराए पर ले आएंगे।
1: किराए पर?
2: और अब रही बात मेरी पोशाक की, तो सोचती हूँ कि खाजापुर की किसी महिला की पोशाक पहन लूंगी। इससे हिज हाइनेस बहुत प्रभावित होंगे।
1: सुशीला,
2: लेकिन एक बटलर तो जरूर चाहिए।
1: बटलर?
2: हाँ, अगर इतना रौब जमाने के बाद मैं खुद ही डिनर सर्व करूं तो कितना बुरा लगेगा।
1: ठीक है, तुम कह सकती हो कि हमारा बटलर छुट्टी पर है।
2: छुट्टी पर है और डिनर मैं सर्व करूं? हरगिज नहीं।
1: तुम क्या चाहती हो कि मैं बटलर की पोशाक पहनकर बटलर का रोल अदा करूं?
2: हाँ, मैं बिल्कुल यही चाहती हूँ।
1: सुशीला, आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ।
2: डार्लिंग, इसीलिए तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ।
1: पर सुशीला,
2: मेरे प्यारे सुधी, याद करो वो दिन जब तुम रात को देर से लौटे थे और तुमको मैंने बता
1: दिया। ये सब गड़े मुर्दे खाने का क्या फायदा है? मुझे तो तुम्हारी रिक्वेस्ट वैसे भी माननी ही पड़ेगी क्योंकि और कोई चारा भी तो नहीं है मेरे पास।
2: डार्लिंग, तुम सचमुच आदर्श पति हो, आइडियल हस्बैंड। बस तुम्हें बटलर की पोशाक पहनकर थोड़ी देर के लिए डाइनिंग टेबल के चारों तरफ जरा चक्कर ही तो काटना है।
1: अब तो ये वक्त ही बताएगा कि मुझे क्या करना है।
2: सुधाकर, अजी सब कुछ ठीक ठाक लगा दिया है ना?
1: हाँ, लगा दिया है।
2: मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है, पता नहीं कब वो लोग आ जाए।
1: मुझे तो तुमने नौकर बना के रख दिया है।
2: लगता है वो लोग आ गए।
1: मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ।
2: अरे तुम मत देखो, मैं जाती हूँ, अंदर जाओ तुम।
3: धन्यवाद सुशीला जी। भाई वाह, आपको इस आदिवासी निवास में देखकर हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अब हम अपनी ही रियासत में हैं। क्यों दीवान जी?
4: यस योर हाइनेस,
3: आपको तो ये पोशाक बेहद सूट कर रही है।
2: जी धन्यवाद।
3: आप है हमारे गुरुजी।
2: नमस्कार।
5: आयुष्मती भव।
3: और आप है हमारे दीवान जी।
2: नमस्कार।
3: हेलो। और आप हैं हर हाइनेस।
6: हमें तो आपका ये फ्लैट बहुत ही पसंद आया।
2: थैंक यू।
6: कितना सादा है मिसेज
1: सुशीला।
6: हाँ सुशीला जी, आपके पति कहाँ है?
2: वो मुझे अफसोस है योर हाइनेस, सुबह ही सुबह उन्हें टोक्यो से मैसेज मिला कि नेक्स्ट फ्लाइट से सिंगापुर पहुँचो। सुबह सुबह ही रवाना हो गए। आपसे न मिलने के कारण वो खुद भी बहुत निराश थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी ओर से हिज हाइनेस से क्षमा मांग लेना।
3: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम उनसे अगली बार मिल लेंगे।
6: आपके यहाँ ये बटलर ही नजर आ रहा है, बाकी नौकर कहाँ हैं?
2: बाकी नौकर? योर हाइनेस, एक ड्राइवर है जो मेरे पति को इम्पोर्टेड कार में लेकर एयरपोर्ट छोड़ने गया है। और एक नौकर है जिसे मैंने अपने जौहरी के यहाँ भेजा है। वो मैंने पिछले हफ्ते एक हीरो का हार बनाने का ऑर्डर दिया था।
6: अच्छा?
2: उसी को लाने भेजा है, पर आप तो जानती हैं नौकर कैसे होते हैं, अभी तक नहीं लौटा।
6: आपका हार काफी महंगा होगा।
2: नहीं नहीं, यही 50,000 का होगा।
6: इसका मतलब आप फिजूल खर्च नहीं है।
7: बच्चों, तुम अपनी इच्छाओं को जितना बढ़ाते जाओगे वो बढ़ती

0: हवा मेल कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पीवी राव की लिखी झलकी शाही दावत। निर्देशिका है साधना भारद्वाज।
1: तूफान में 28 मरे।
2: जी सुनते हो सुधाकर?
1: एडिटोरियल।
2: अजी सुनो जी, तुम हमेशा न्यूज़पेपर को चाटने में लगे रहते हो, जरा मेरी भी तो सुनो। मेरी एक समस्या है।
1: इसका मतलब है कि मेरी मुसीबत आई।
2: सुधाकर अच्छा बताओ,

0: जाएंगी। ये विलासिता की वस्तुएं जीवन को बोझिल बनाती हैं।
1: डिनर सर्व हो चुका है योर हाइनेस, तशरीफ लाइए आप सब लोग।
0: मैं डाइनिंग टेबल पर नहीं खाता, मेरे लिए तो फल और दूध ही पर्याप्त है।
1: जैसा आप चाहें, आप सब लोग आइए। योर हाइनेस प्लीज और लीजिए।
2: खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। आपका बटलर तो बड़ा फोहड़ है, इसने हमारे ऊपर सब्जी गिरा दी।
1: आई एम सॉरी योर हाइनेस, ये अभी नया है। बटलर तुम्हें कुछ भी सलीका नहीं। तुम बुरा मत मानना डियर।
2: सुशीला जी, हम कहते हैं इसे आप निकाल दीजिए अभी इसी वक्त फौरन।
1: योर हाइनेस, बटलर मिलना बहुत ही मुश्किल है। इस शहर में पति मिलना तो आसान है, पर बटलर मिलना नामुमकिन सा है। जरा फुहड़ी सही, लेकिन ये बटलर पढ़ा लिखा और वफादार है। बटलर जरा पूरी देना। ये क्या किया? अब पूरी मेज के दूसरी तरफ से फेंकने नहीं चाहिए थी।
3: इस पढ़े लिखे बटलर से तो अनपढ़ बटलर ही भला, जो खाना परोसते वक्त कम से कम पूरी उसमें बैडमिंटन तो नहीं खेलता।
1: बटलर, तुम हमारे यहाँ बटलर का काम करना चाहते हो या डिस्कस थ्रोइंग के करतब दिखाना चाहते हो?
4: सॉरी मैडम, आई एम रियली वेरी सॉरी। एक्चुअली मैं ये पूरियां हर हाइनेस को परोसना चाहता था, पर वो गलती से हिज हाइनेस की गोद में जा गई।
5: रियल बटलर तो इंग्लैंड में होते हैं।
3: वहीं से।
5: वाह क्या कंट्री है, मैं अपना लाइफ का ज्यादा हिस्सा वहीं बिठाया है और मेरा बिलीफ है कि इनकी जितनी पेश की जाए वो थोड़ी है।
6: डिनर बहुत बढ़िया रहा सुशीला जी।
1: थैंक यू।
6: हम आपके महिला मंडल को अपने अस्पताल के लिए दान देने का अवसर देना चाहते हैं।
1: योर हाइनेस, मुझे इस बात का फख्र है कि आपने मुझे इस लायक समझा। मैं कार्यकारिणी से सिफारिश करूंगी कि वो आपके अस्पताल को भरपूर दान दे।
6: दीवान जी।
5: यस योर हाइनेस।
6: अस्पताल में दान देने वाले कागजात कार में से मंगवाया जाए।
5: बटलर।
4: क्या? यस सर, यस सर।
5: ड्राइवर से ब्रीफ केस लेकर आओ।
4: लाते हैं।
7: ब्रीफ केस लेके आओ, नौकर बना रखा है, सुबह से बुरी हालत कर।
6: क्या भाई,
8: तुम्हारे यहाँ फैंसी ड्रेस है क्या?
9: अरे आज तो पूरे बटलर लग रहे हो यार, तुम्हें फर्स्ट प्राइज मिलना निश्चित है।
4: इनको बेवकूफ बनाने का अच्छा मौका है। वो फैंसी ड्रेस।
8: सुधाकर यार, तुम तो जानते हो मैं और ये मेरा साला फैंसी ड्रेस पार्टियों में कितनी दिलचस्पी रखते
4: हैं। वो तो मुझे अच्छी तरह से याद है। दरअसल वो मैंने ये सोचा कि सुशीला ने तुम्हें इनवाइट कर दिया होगा और सुशीला ये सोचती रही कि वो मैंने तुम्हें इनवाइट कर दिया।
8: माफ करना यार, ये थोड़ी सी गलती हो गई है,
4: लेकिन अभी ज्यादा देरी नहीं हुई है। मेहमान अभी अभी आने शुरू हुए हैं, वो फैंसी ड्रेस में आए हैं, तुम दोनों भी शामिल हो सकते हो।
8: अच्छा ये बताओ, मेहमान किस ड्रेस में आए हैं?
10: वो कोई महाराजा बना है, कोई महारानी बनी है, स्वामी जी बने हैं।
4: अच्छा? एक अंग्रेज भी है।
8: ये बताओ सुधाकर यार, हम दोनों किस ड्रेस में?
4: हाँ, बोलो बोलो।
8: हम दोनों चंद्रा, तुम एक काम करो, तुम ड्राइवर की ड्रेस में आ जाओ।
4: अच्छा।
8: और प्रकाश तुम आओ घरेलू नौकर बनकर।
6: सुधाकर ग्रेट,
8: बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये पोशाकें आसानी से मिल भी जाएंगी, टाइम भी कम है। थैंक यू भाई।
7: हम पार्टी में पहुंचे,
8: जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे वो ब्रीफ केस लेके जाना है।
4: लीजिए
5: ब्रीफ केस बटलर
4: जी।
5: गिव मी
4: लीजिए।
5: योर हाइनेस, ये रहे वो पेपर।
6: यस सुशीला जी,
1: जी
6: ये रहे वो कागजात जिनसे आपको अस्पताल में दान देने की अनुमति मिलेगी।
1: थैंक यू योर हाइनेस।
8: तो पार्टी खूब जम रही है बटलर साहब।
2: कैसा बदतमीज ड्राइवर है।
1: ड्राइवर, एयरपोर्ट से तुम इतना लेट क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं था कि बहुत बड़े मेहमान आ रहे हैं?
8: मैं ड्राइवर।
4: हाँ ड्राइवर, इधर आओ तुम्हें समझाता हूँ। अरे बेवकूफ, ये खास किस्म की फैंसी ड्रेस पार्टी है, तुमने देखा नहीं कि महाराजा असली महाराजा का अभिनय कर रहा है? अरे जो पोशाक तुमने पहन रखी है ना, वैसा ही तुम्हें अभिनय भी करना है, समझ गए? तभी तो इनाम मिलेगा।
8: अच्छा, फिर तो बड़ी मजेदार पार्टी होगी।
9: इस बार पार्टी में फर्स्ट प्राइज मेरा ही होगा।
7: आइए पार्टी में।
8: मुझे माफ करें मेम साहब, बटलर ने मुझे अभी बताया कि हमारे मेहमान कितने बड़े आदमी हैं।
1: लीजिए, हमारा नौकर प्रकाश भी आ गया।

0: प्रकाश
1: जी मैम साहब
0: अभी तक कहाँ थे? मेरा वो हीरो का हार लाए या नहीं?
1: हीरो का हार?
0: हाँ
1: हीरो का हार। वो मेम साहब मुझे अफसोस है कि मैं टैक्सी का इंतजार कर रहा था कि आपका हार जो था ना वो गुम हो गया।
0: गुम हो गया
1: जी।
0: खैर कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा होशियार रहना।
1: जी
0: मैं एक और हार का ऑर्डर दे दूंगी।
1: जी बहुत अच्छा।
2: नौकर का हार खो बैठा और इसके माथे पर शिकन तक नहीं, इसका मतलब है वो बहुत धनी है।
3: हम आपके प्यार और मेहमान नवाजी से बहुत प्रभावित हुए हैं सुशीला जी। हम इसके एवज में कुछ देना चाहते हैं। हम आपको भी अपने अस्पताल की निधि में दान देने का अवसर देना चाहते हैं।
0: थैंक यू।
3: इसके लिए हमें धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं, हमें भी तो आपका ऋण चुकाना है।
0: अच्छा?
4: क्या ये इतनी ना समझ है कि ऐसा स्वर्णिम अवसर खो देंगी? ये जरूर दान देंगी।
1: तो हम हैं। स्वामी जी आपकी दाढ़ी तो।
4: अरे उस ड्राइवर के बच्चे, तुम्हें मेरी दाढ़ी में हाथ लगाने का साहस कैसे हुआ?
0: मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ गुरुजी।
4: ना समझ
0: ड्राइवर, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं, बाहर जाओ। आई से गेट आउट।
5: अच्छा अच्छा जाता हूँ।
0: पुलिस इंस्पेक्टर साहब, आप गलत जगह पहुंची हैं। आपको तो
5: बिल्कुल नहीं।
1: अच्छा तो सुशीला जी हम लोग चलते हैं। आइए दीवान जी।
0: अरे
1: आइए गुरु जी।
5: अरे महाराजा साहब, महारानी साहिबा, दीवान जी, गुरु जी, आप लोग कहाँ भाग रहे हैं?
0: ये क्या हो रहा है? हमारे सम्मानित शाही अतिथियों को आप इस तरह बेइज्जत नहीं कर सकते इंस्पेक्टर साहब।
5: मैडम ये धोखेबाज है,
0: धोखेबाज।
5: और योर हाईनेस, आपकी ये शाही 420 आज से खत्म।
1: क्या कह रहे हैं?
5: मैडम हमें इनकी बहुत दिनों से तलाश थी।
0: तलाश थी?
5: ये किसी सामाजिक या धार्मिक कार्य के बहाने लोगों से पैसा ऐंठ कर गायब हो जाते थे।
0: नो
5: चंद्रा साहब, आपने हमें सूचित करके अपनी सूझबूझ का परिचय दिया है और एक आदर्श नागरिक होने के नाते आपने अपना कर्तव्य निभाया है। आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। सिपाही इनको गिरफ्तार करो।
6: क्या
5: कर रहे हैं आप?
6: ठीक है आप कड़ी पहनाइए।
7: देख लिया मेम साहब। पर यार चंद्रा, ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि?
8: अरे यार सुधाकर, वो हुआ यूं कि मैंने जब स्वामी जी की दाढ़ी पर हाथ फेरा तो वो खड़ गई। मुझे उनका बेनकाब चेहरा नजर आया।
0: अच्छा।
8: मुझे लगा मैंने इसे कहीं देखा है। फिर याद आया कि अखबारों में देखा था। वो उसी गिरोह का सरगना था जो लोगों से दान के नाम पर रुपए वसूल कर फरार हो जाया करता था। मैं फौरन बाहर गया और पुलिस को फोन कर दिया।
7: वाह चंद्रा वाह, रियली यू आर ग्रेट।
0: चंद्रा भाई साहब, आपने तो मेरी आंखें खोल दी, वरना इन उच्चकों को मैं तो सचमुच की महाराजा समझ रही थी।
8: जरा सोचो, इन बदमाशों को खुश करने के लिए मुझे बटलर और तुम्हें ड्राइवर बनना पड़ा।
0: सुधाकर डियर, आई एम रियली वेरी सॉरी। चंद्रा भाई साहब आप मुझे माफ करें ना।
8: अरे कोई बात नहीं भाभी, कोई बात नहीं। चंद्रा यार कुछ भी हो, आज के फर्स्ट प्राइज के हकदार तो तुम ही हो।
9: शाही दावत। आप सुन रहे थे पीवी राव की लिखी ये झलकी। निर्देशन था साधना भारद्वाज का। आकाशवाणी दिल्ली की इस भेंट के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं साहो फिल्म के गाने के साथ। इसे गाया है एलिसा मेंडोंसा, रवि मिश्रा और शंकर महादेवन ने। मनोज यादव के हैं बोल और तर्ज, शंकर एहसान लॉय की।

0: किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए टाइगर श्रॉफ और निशा सेट्टी की आवाजों में हीरोपंती 2 फिल्म का गाना। महबूब ने लिखा इसे और तर्ज बनाई है ए आर रहमान ने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए एनिमी फिल्म का गाना ऐश्वर्या कुमार, दर्शना मेनन, रीना गिलबर्ट और विद्या गोपाल और यश काजिक की आवाजों में।

सुनहरे दौर के सदा बहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं

0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए अब सुनिए अल्तमश फरीदी की आवाज में कौसर मुनीर का लिखा और अमित त्रिवेदी का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी

0: एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से

सुपर 30 फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न हुआ। नमस्कार। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारी

0: अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं की गहन जांच करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से UPI के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और हमलों की साजिश नाकाम की। एक रिपोर्ट।
1: ये आतंकी गतिविधियां स्वतंत्रता दिवस के आसपास की जानी थी। इस ऑपरेशन के तहत 14 राज्यों में 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51 और पंजाब से 44 लोग शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान ISI समर्थित इस आतंकी संगठन के पास से IED, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले CCTV कैमरे बरामद किए गए। शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान में स्थित और ISI समर्थित एक आतंकी सिंडिकेट है जो पूरे भारत में ग्रेनेड, IED और पेट्रोल बम हमलों और टारगेटेड हत्याओं से जुड़ा है। अब तक इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से ज्यादा FIR दर्ज की गई हैं और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। अमन यादव के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलीन ब्लैक, स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है।
2: भारत में पिछले 12 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना बढ़ी है, अब 13 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स 11 गुना बढ़कर 4 लाख करोड़ से ज्यादा के इलेक्ट से होने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, उसके बाद में मॉड्यूल्स और उसके बाद में कंपोनेंट्स और आगे डीप जाने पर कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले मटेरियल्स और कैपिटल इक्विपमेंट, जिन मशीनों से इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चर होती है।
0: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। एक रिपोर्ट।
3: श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति की सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत

0: राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त पदाधिकारी पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारी विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा है कि ब्रिक्स संगठन पिछले 2 दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है। आज नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य समूह और संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान में मध्य करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे वर्ष 2002 और 2003 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 1 दशक में भारत की विदेश नीति किस प्रकार विकसित हुई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान किए। पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण, पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने नियमों को समाप्त करने और नए नियम बनाने, प्रशासन में तकनीकी बदलाव तथा लेखा व्यवस्था जैसी विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार बदलती प्रशासनिक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार पेंशन प्रक्रिया को लगातार सरल बना रही है। उन्होंने बताया कि पेंशन फॉर्म से अनावश्यक प्रावधान हटाए गए हैं और जटिल प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है।
2: भारत सरकार में सेवानिवृत्त या पेंशनर्स की संख्या, जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, वर्किंग एम्प्लॉय, उससे कहीं अधिक है। रिटायरमेंट हैपनिंग एट द एज ऑफ 60 व्हेन द लाइफ स्पैन हैज गॉन ऑलमोस्ट अप टू 70, सो मोस्ट ऑफ दीज रिटायरिंग कुलीग्स आर इन द प्राइम ऑफ देयर हेल्थ, ऑल्सो प्राइम ऑफ देयर एक्सपर्टाइज, प्राइम ऑफ देयर एक्सपीरियंस, और इसलिए उनको इस तरह से छुट्टी पे न जाने दिया जाए। उनकी सेवाएं, उनका योगदान किसी न किसी तरह से राष्ट्र निर्माण के कार्य आए और किस प्रकार आ सकता है, ये उनके साथ चर्चा करने का माध्यम बने।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने फर्जी जमानतदारों को लेकर चिंताओं के बीच मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम से संबंधित मामलों में आरोपी विदेशी नागरिकों के लिए जमानत की शर्तें कठोर करने का आदेश दिया है। इस संबंध में कई निर्देश जारी करते हुए न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्ट ने कहा कि जमानत पर रिहा किए गए विदेशी नागरिकों को अपने पासपोर्ट संबंधित न्यायालयों में जमा करने होंगे और वे पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा नहीं कर सकेंगे। देश की 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी के लिए बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 5.1% रह गई, जो इस वर्ष जून में 5.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मासिक श्रम बल और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जारी किए हैं। ग्रामीण बेरोजगारी दर पिछले महीने घटकर 4.5% रह गई, जबकि जून में यह 5% थी। हर घर तिरंगा अभियान का आज समापन हो गया। हर घर तिरंगा अभियान के 5वें वर्ष में लाखों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने, तिरंगा यात्राओं में शामिल होने और वंदे मातरम गाने के लिए एकजुट हुए। 2022 में शुरू हुआ यह अभियान अब देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। एक रिपोर्ट। घर घर।
3: इस वर्ष का अभियान भारत के राष्ट्र गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर केंद्रित था, जिसमें देशभक्ति के अनोखे जश्न के तौर पर राष्ट्रध्वज और राष्ट्र गीत को एक साथ लाया गया। देश भर में तिरंगा

0: यात्राओं, साइकिल और मोटरसाइकिल रैलियां, सांस्कृतिक जुलूसों, स्कूल कॉलेज के कार्यक्रमों और सामुदायिक आयोजनों में हर घर तिरंगा की भावना साफ दिखी। पिछले 5 वर्षों में हर घर तिरंगा लोगों की भागीदारी और गर्व का एक देशव्यापी प्रतीक बन गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 281 अंक लुढ़क कर 77,728 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी में 78 अंक की गिरावट देखी गई और ये 24,288 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 18 पैसे कमजोर होकर 95.61 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब कुछ खेल खबरें। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगभग 42,000 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है।
2: केंद्र भद्रक बालेश्वर मयूरभंज जाजपुर और केंद्रापड़ा में बाढ़ का असर हुआ है, जिससे 1,304 गांव के लगभग 800,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बैतरणी ब्राह्मणी और सालंदी नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को भोजन पीने का पानी और बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक और जाजपुर जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। राज्य के जल संसाधन विभाग का कहना है कि यह स्थिति अगले 4 से 5 दिनों तक बनी रह सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने झारखंड में कल के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से UPI के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में गाइड फिल्म के गाने के साथ, शैलेंद्र के बोल और तर्ज SD बर्मन की।

हमारी अगली पेशकश मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में राम और श्याम फिल्म से शकील बदानी हैं, गीतकार और संगीतकार हैं नौशाद।

आइए अब सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में मेरा नाम जोकर, इस फिल्म का गाना। इसे लिखा है हसरत जयपुरी ने और तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में अपना देश फिल्म का गाना। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

श्रोताओं, आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मुकेश और शारदा की आवाजों में। शैलेंद्र हैं गीतकार और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम अराउंड द वर्ल्ड

0: प्रकृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल,
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है, हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, देखिए मेहंदी हसन साहब की खास उठंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने खाक क्यों कहा।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार में आज हैं हिंदी फिल्म जगत के मनोरंजन का हंसता हंसाता गुदगुदाता दर्शकों की जिंदगी में मुस्कुराहट बिखेरने वाला फिल्मकार डेविड धवन यानी डबल डी। डेविड मतलब सेल्यूलाइट का धमाल।
1: ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता।

0: वाले छोटे वाले तेरा नाम तो बता।
1: आंखें वो फिल्म थी जिसकी सफलता के साथ डेविड धवन ने एक फिल्मकार के रूप में फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बतौर एक निर्देशक स्वर्ग, शोला और शबनम, साजन चले ससुराल, जुड़वा, जुड़वा दो, बड़े मियां छोटे मियां, दुल्हन हम ले जाएंगे, मुझसे शादी करोगी, पार्टनर और मैं तेरा हीरो जैसी फिल्मों से डेविड धवन मनोरंजन की बहार लेकर आए।

1993 की एक्शन थ्रिलर आंखें और 1999 की कॉमेडी फिल्म बीवी नंबर वन ने इन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड के लिए नामांकन दिलवाया।

डेविड धवन का मूल नाम राजेंद्र धवन है। राजेंद्र धवन का जन्म 16 अगस्त 1951 को अगरतला में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। अब चूंकि इनके पिता बैंक में थे तो उनका स्थानांतरण कानपुर हो गया और वहीं क्राइस्ट चर्च कॉलेज और बीएनएसडी इंटर कॉलेज में 12वीं तक की पढ़ाई के पश्चात अपने बड़े भाई के पद चिन्हों पर चलते हुए डेविड धवन ने फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एफटीआईआई में एक्टिंग के कोर्स के लिए एडमिशन ले लिया। एफटीआईआई की बातें अभी बाकी है, आइए पहले आगे बढ़े बोल राधा बोल के इस गीत को साथ लेकर। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे ऋषि कपूर और जूही चावला।

जी हम बात कर रहे हैं FTII की। यहाँ राजेंद्र धवन ने एडमिशन तो एक्टिंग के कोर्स में लिया था, पर कलाकार सतीश शाह और सुरेश ओबराय से वहां मिलकर, जो वहां के विद्यार्थी थे, इन्हें लगा कि एक्टिंग इनके बस की बात नहीं है, तो इन्होंने विकल्प के रूप में एडिटिंग को चुना और गोल्ड मेडल के साथ अपनी परीक्षा पास की। वैसे तो मनमोहन देसाई और ऋषिकेश मुखर्जी आपके पसंदीदा निर्देशक थे, पर ऋत्विक घटक की बांग्ला फिल्म मेघा ढाका तारा देखकर आपने एक निर्देशक बनने का सोचा, और जो सोचा वही किया, और कमाल का किया।

डेविड धवन के नाम को लेकर बड़ा ही रोचक और आत्मीय संबंध है। अगरतला में इनके पड़ोसी कैथोलिक परिवार ने इन्हें डेविड कहकर पुकारा, इस तरह से उन्हें पुकारा करते थे, और यही नाम इन्होंने अपने पहले नाम राजेंद्र की जगह चुना और FTII में इसी नाम से दाखिल हुए। वैसे ये जानना भी कुछ श्रोताओं के लिए सुखद होगा कि डेविड के बड़े भाई हैं मशहूर अभिनेता अनिल धवन। छोटे छोटे शहरों से हम तो झोला उठा के चले, डेविड की जीवन यात्रा से जुड़ता हुआ ये गीत है। ये अलग बात है कि चेतना और पिया का घर फेम हीरो अनिल धवन, इनके बड़े भाई, फिल्मों में उस वक्त सक्रिय थे, पर फिल्मों में काम मिलना तब भी उतना आसान नहीं था। मुंबई पहुंचे डेविड ने आरंभिक दौर में बॉम्बे टीवी के न्यूज सेक्शन में एडिटिंग से शुरुआत की। पहला एडिटिंग का ब्रेक सावन कुमार और पहलाज निहलानी ने इन्हें दिया। फिर राजेंद्र कुमार की लव स्टोरी, महेश भट्ट की नाम और सारांश जैसी फिल्मों के सफल संपादन से आपने अपना नाम किया। राजेश खन्ना और संजय दत्त डेविड धवन की संपादन कला के मुरीद थे। डेविड धवन भी मानते हैं कि संजय दत्त ही थे जिनके कारण इन्हें बतौर निर्देशक पहला मौका मिला, और फिल्म थी शोला और शबनम।

डेविड धवन का जिक्र हो और गोविंदा का नहीं, या फिर गोविंदा का जिक्र हो और डेविड धवन का नहीं, तो बात अधूरी लगती है। चलिए बात को पूरी कर लेते हैं। पहले कुली नंबर 1 फिल्म का ये गाना सुनते हैं।

डेविड और गोविंदा की जोड़ी ने हिंदी फिल्म दर्शकों को अनेक हंसाती गुदगुदाती हास्य प्रधान फिल्में दी। 18 फिल्में इन्होंने साथ की। चलिए इनके साथ की गई फिल्मों के गीतों की एक मेडली सुन लेते हैं।

एक निर्देशक के लिए गोविंदा को फिल्म में लेना निश्चित रूप से सफलता का प्रतीक था। जहां तक डेविड धवन की बात है तो आपका मानना है कि गोविंदा इज द बेस्ट एक्टर, एक ऐसा अभिनेता जो मामूली सीन को भी मनोरंजक बना देता है। और जहां तक गोविंदा के सेट पर देरी से पहुंचने की बात है तो निर्देशक का मानना है कि इससे फिल्म पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि गोविंदा एक तेज कलाकार है, 10 घंटे का काम 4 घंटे में बड़ी ही सफलता और कामयाबी के साथ कर लेते थे। डेविड धवन एक भावुक और आत्मीय इंसान है। 90 के दशक में जरूर काम की अधिकता ने इन्हें एक बैड टेम्पर का बना दिया था, पर आज अपनी 41 फिल्मों के बाद इनका मानना है कि वे अब काफी कूल हैं। अपनी पत्नी करुणा चोपड़ा धवन को आप अपने परिवार का सबसे महत्वपूर्ण भावनात्मक इमोशनल एंकर मानते हैं, जिन्होंने इनके परिवार को सहेजा, दुलारा, प्रोत्साहित किया। डेविड धवन के दो बेटे हैं, एक रोहित और दूसरे वरुण धवन।

एक कलाकार और निर्देशक का ये बाप बेटे का प्यारा रिश्ता है जो फिल्मों में भी साथ साथ देखने को मिलता है। वरुण धवन को आप एक नटखट बालक के रूप में पाते हैं, पर फिल्म के सेट पर जब डेविड धवन होते हैं तो वरुण सिर्फ एक निर्देशक का कलाकार होता है।

0: तो ये था आज के फनकार, जो केंद्रित था निर्देशक डेविड धवन पर। आलेख और स्वर जी श्याम का, संपादन आकांक्षा सिंह का, और प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल,
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है, हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास उठंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने खाक क्यों कहा।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संग

सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सलमा। छाया गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कोई उसे बताए जाकर, दिल धड़कता है उसके लिए, अब तक वो समझाता किस्सा हुआ तमाम। हम जीते हैं उसके सहारे अब तक, वो जो कहता था भूल जाओगे मुझे, दिल न माना उसके इशारे अब तक। रातों की तन्हाई गवाह है, आंखें ढूंढती हैं उसे तारों में अब तक। वक्त ने लाख समझाया दिल को, मगर जख्म देते हैं उसके नजारे अब तक। कोई उसे बताए जाकर इतना के, हमने रखा है दिल संभाले अब तक।

उजाड़ लम्हों की दास्तानें जो तुम कहो तो सुनाए तुमको। बहुत हम जागते हैं, आओ जरा सा जगाएं तुमको। ये तन्हा रात, ये दिल उदास और आंखें नम, अगर इजाजत हो तो ये हाले दिल भी सुनाए तुमको। तुम्हें जो बताएं दास्तानें गम अपनी, तो क्या सुन सकोगे? दिल पे जो बीती कयामत, वो सब लफ्जों में बुन सकोगे? दिल खामोशी में ढाल के बैठा है दर्द सारा, मेरे दिल की सदा को सुन सकोगे? सुनो, इस इश्क ने कहीं का ना छोड़ा हमको, वीरान हुआ दिल का नगर सारा मेरे हमदम। हम जिसको समझ बैठे थे मोहब्बत, वो बन गया आखिर दिल का खसारा मेरे हमदम।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। वो शबो रोज के सिलसिले अब नहीं रहे, हम जिंदा तो हैं मगर जिंदा नहीं रहे। जो ख्वाब मेरी आंखों में भरे थे तूने, वक्त की धूप में वो हरे नहीं रहे। वफा की राह में क्या कुछ नहीं लुटाया, फिर भी तेरे नसीब में हम नहीं रहे। हम अपने आप से भी बिछड़ते चले गए, आईनाए दिल में वो पहले से नहीं रहे। अब कौन इंतजार की शम्में जलाएगा, वो लौट के आने के वादे अब नहीं रहे।

आओगे लौट कर कभी, ये दिल को यकीन सा है, हर एक ख्वाब में तेरा निशान सा है। हवा के दोष पे आती है खुशबू, लगे यूं जैसे करीब तेरा मकान है। मैं जागती हूँ रात भर तेरी याद की हरारत में, मेरे वजूद में एक दर्द जाविदा सा है। अगरचे दूर हो तुम, फिर भी दिल गवाही दे रहा है कि इस हिजर के पीछे विसाल का जहां सा है। ना पूछ हाले दिल बेकरार ऐ हमदम, तेरी जुदाई में हर लम्हा इम्तिहान सा है।

तुझको भी बिछड़ने का बहाना चाहिए, मुझको भी अब शायद चले जाना चाहिए। जो तेरा है रख ले तू, जो है मेरा मुझको दे दे। एक दूसरे का वक्त हमें लौटाना चाहिए। और ना झेलेगा अब आंधियां तूफान, रेत का ये मकान ढह जाना चाहिए। हो गया है दो दिलों में फासला, अब हमको जुदा हो जाना चाहिए। ये तय है कि अब ना मिलेंगे हम कभी, एक आखिरी बार अब गले लग जाना चाहिए।

साथियों, अब वक्त आ गया है छाया गीत कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का। आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुनिए
1: कहिए
2: सुनिए एक खुशखबरी
1: कहिए ना।
2: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे।

0: रंग तरंग
1: विविध भारती पर कार्यक्रम रंग तरंग के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

अनुप जलोटा, संजय राज की आवाजों में आपने सुना नलिन वर्मा का लिखा ये भजन। सचिन सतीश ने इसे संगीत से सजाया था। एल्बम शिव शंकर देवाधिदेव, इस एल्बम से हमने इस भजन को आपके लिए सुनवाया।

0: शिव आराधना। इस एल्बम से आप सुन रहे थे भजन अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाजें, महेंद्र दहलवी की बोल, दिलीप सेन, समीर सेन का संगीत।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

बैजू मंगेशकर और साथियों की आवाज में कबीर दास का लिखा ये भजन आप सुन रहे थे मन मस्त कबीरा। इस एल्बम से बैजू मंगेशकर ने ही इसे संगीत से सजाया था। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

कविता कृष्णमूर्ति, करसन सगार्थिया और साथियों की आवाजों में हम दिल दे चुके सनम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। महबूब ने इसे लिखा, स्माइल दरबार का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं आई लव यू इस एल्बम से

0: या मांसपेशियों की समस्याएं, तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
1: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
0: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
1: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
0: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा।
2: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
0: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
2: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
0: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
2: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
0: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
2: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
0: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम रंग तरंग।

0: शमीम जयपुरी का यह कलाम आप सुन रहे थे। अनूप जलोटा की आवाज में उन्हीं का संगीत भी इसमें आपने सुना।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

बाबा सहगल की आवाज में आप सुन रहे थे जुगनी मस्त कलंदर एल्बम से ये गीत। बाबा सहगल और देव कोहली ने इसे लिखा और बाबा सहगल का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर रंग तरंग। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। जाने मन फिल्म का ये गीत गुलजार ने लिखा है, अनु मलिक का संगीत, सोनू निगम और साधना सरगम की आवाजें।

किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन, भूपिंदर सपन चक्रवर्ती और गुलशन बावरा की आवाजों में सुन रहे थे सत्ते पे सत्ता फिल्म का ये गीत, गुलशन बावरा के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम में हम अभिनेता सचिन पिलगांवकर के जन्मदिन पर उनकी फिल्म के कुछ गीत सुन रहे हैं।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और अंतराल में जाने से ठीक पहले हमने आपको सुनवाया गीत गाता चल फिल्म का गीत, जिसे लिखा और संगीतबद्ध किया रविंद्र जैन ने, और आवाज आपने सुनी जसपाल सिंह और साथियों की। कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं नदिया के पार फिल्म से।

0: नदिया के पार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। चंद्रानी मुखर्जी, जसपाल सिंह और हेमलता की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल, उन्हीं का संगीत।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा से हुजूर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। अभिनेता सचिन पिलगांवकर के जन्मदिन पर उनकी फिल्मों के कुछ गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: गोपाल कृष्णा। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, रविंद्र जैन का गीत और उन्हीं का संगीत, यशदास और हेमलता की आवाजें।
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं, हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं, तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता है आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

आंखियों के झरोखों से फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हिमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल, उन्हीं का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। त्रिशूल फिल्म के इस गीत में सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश को, साहिल उद्यानवी के बोल, खयाम की तर्ज़।

0: लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में आप सुन रहे थे त्रिशूल फिल्म से ये गीत, साहिल लुधियानवी के बोल, खय्याम का संगीत।
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहत नामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: ज्वेल थी फिल्म का गीत। आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के शब्द और सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
5: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
4: सखी सहेली?
5: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
4: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
5: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
6: सखी सहेली।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: ब्रह्मचारी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की

0: सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जय
3: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल, सपन चक्रवर्ती का संगीत, जमीर फिल्म के इस गीत में।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में रोजाना हम एक इबारत पोस्ट करते हैं हमारे फेसबुक पेज पर और उस इबारत में ही छुपे होते हैं वो गीतों उन गीतों के शब्द जो आज के इस कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। तो चलिए आज की इबारत आपको पहले एक बार पढ़कर सुना दें। हालांकि आपने उसे पढ़ ही लिया है और बहुत सारे शब्द भी आपने बता दिए हैं, फिर भी हमारे जो साथी फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनके लिए वो इबारत हम एक बार पढ़ते हैं। न जाने लोग क्यों कहते हैं कि चार दिन की जिंदगी में सभी से प्यार करो, निभाते चलो, किसी का दिल न दुखाओ, जो मिले उसे अपनाओ। पर क्यों ना ये सोचा जाए कि इस चार दिन की जिंदगी में अपने मन का काम करो, न झूठे मुखौटे न झूठी मुस्कान धरो। भले न रखो अभिमान पर ऊंचा रखो स्वाभिमान, खुद पे करो भरोसा और बढ़ते चलो अपनी राह। शायद हमारा कुछ ऐसा ही व्यक्तित्व रचा होगा ऊपर वाले ने और हम इस दुनियादारी में कहां से कहां पहुंच गए। ये हमारी आज की इबारत है और इस इबारत पर भी बहुत सी बातें हमारे साथियों ने लिख भेजी हैं। हमारे एक साथी ने एक कविता लिखी कि चार दिन की है जिंदगी फिर क्यों इतना अभिमान, आज जो अपना लगता है कल बन जाता अनजान। कुछ पल हंस लो कुछ पल बांट लो अपनों के संग प्यार, क्या पता फिर मिले ना मिले जीवन का ये सुंदर उपहार। न शिकायतों का बोझ रहे न मन में कोई मलाल, जो मिला उसे स्वीकार करें हर पल को करें खुशहाल। वहीं हमारे एक साथी कह रहे कि जिंदगी के सफर में सबसे मित्रतापूर्ण व्यवहार बनाए रखने के संदेश देती भारत का स्वागत है, प्यार बांटते चलो। और हमारे साथी ने कहा कि मन को पिंजरे में न डालो, मन का कहना मत डालो। बिल्कुल सही बात ये आपने कही। तो और हमारे एक और साथी कहना है कि भगवान की भक्ति करो बाकी सब मोह माया है। आप भी अपने विचार हमारे तक हम तक पहुंचाइए हमारे फेसबुक पेज के जरिए www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर जाकर आपको विविध भारती का फेसबुक पेज मिल जाएगा और अगर आप अब तक फेसबुक का ऐप अगर आपके पास है तो वहां आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा टाइप कर सकते हैं। देवनागरी में लिखा है ये और आपको एक नीले बैच के साथ मिल जाएगा हमारा पेज। और कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाते हैं एक गीत, लेकिन उससे पहले हमें ये बताइए कि क्या आपने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम किया है जिसे सिर्फ आपने अपने लिए किया हो, किसी और के बारे में ना सोचा हो।

आह, फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। और कभी कभी आह निकल जाती है जब हम दूसरों के लिए ही जीते जाते हैं। क्या आप भी दूसरों को खुश रखने के लिए अपना मन मारते हैं? आपका मन ना हो लेकिन वो काम करते हैं, कुछ रिश्तों को इस तरह से निभाते हैं जब बिल्कुल भी मन ना हो उन्हें निभाने का, या दूसरी तरफ से कोई भी कोशिशें नहीं दिख रही हूँ। हमारे एक साथी तो कह रहे हैं कि किसी का दिल न दुखाएं, तो ये तो सही है, सही है ना? ऐसा नहीं कर सकते कि सबको परेशान करते हुए आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के लिए किसी को रास्ते से हटाना नहीं बल्कि सबका अच्छा करते हुए बढ़ें, तो इसमें क्या खराबी है? हाँ, अगर बिना मतलब कोई परेशान करे तो फिर इसको छोड़ना सही है, ऐसा वो कह रही हैं। लेकिन हम तो इन्हें ये बताना चाहते हैं कि हम तो ये नहीं कह रहे कि आप किसी का दिल दुखाएं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप अपना दिल ना दुखाएं और अपने बारे में भी थोड़ा बहुत सोचें। और जरूरी नहीं कि आप सभी से सिर्फ मुस्कुराकर मिलें, ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने बारे में सोचें। हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जो आपसे मिलता हो लेकिन आप उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, सिर्फ दुनियादारी निभाने के लिए ही आप उनके साथ बने रहते हैं या मुस्कुराते रहते हैं कि भाई निभाना तो है ही। तो ये निभाते रहना कितना सही है कितना गलत, इस पर कर रहे हैं हम आज बात। क्योंकि अगर है सिर्फ 4 दिन की जिंदगानी तो क्यों ना उसे हम अपने लिए जिएं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वे दूसरों को हर हाल में खुश रखने की प्रवृत्ति के मानसिक दबाव पर ये एक सटीक कटाक्ष है। अक्सर 4 दिन की जिंदगी मुहावरे का उपयोग समझौता करने और चुप रहने के लिए किया जाता है, किंतु यहाँ इसी मुहावरे का प्रयोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मखोज के अधिकार को सिद्ध करने के लिए किया गया है। और हमारे साथी कहते हैं कि आज का गद्यांश जीवन के यथार्थ स्वाभिमान और निष्कपट प्रेम से जुड़ा हुआ है। जिंदगी यदि 4 दिनों की है, ये वाक्य सीधे तौर पर एक अर्थ दे रहा है कि जिंदगी की नश्वरता का बोध है। अस्तित्ववाद कहता है कि जिंदगी सीमित है, इसलिए मनुष्य को बिना कोई मुखौटा लगाए अपने अस्तित्व के वास्तविक और सच्चे स्वरूप को पहचानकर जिंदगी को जीना चाहिए। यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि स्वाभिमान का अर्थ अहम प्रेम नहीं बल्कि अपनी आत्मा के स्वरों को सर्वोपरि रखना है, जिससे आत्म सम्मान और विवेक जिंदगी का आधार बन जाए। सभी को प्यार करो यानी

0: सार्वभौमिक प्रेम के सिद्धांत को अपनाया जाए। हमारे एक और साथी हैं, वो कहती हैं कि आज के भारत में आम आदमी का, उसके वर्तन का और समाज मन का सही चेहरा उभर रहा है। रूढ़ियों और अपेक्षाओं के नीचे दबे सर्वसाधारण आदमियों के सामने खुद के लिए जीना कब सीखोगे, ऐसा सवाल भी खड़ा कर दिया है। अभिमान यानी आत्मसम्मान और गरिमा की रक्षा करते करते स्वाभिमान रखना यानी खुद को विनम्र और आत्मानंद के लिए मजबूत बनाना भी उतना ही जरूरी है। तो ये भी बात है कि क्या हम दूसरों की मर्जी के अनुसार ही सारे काम करते हैं। तो ये भी आप हमें बताइए कि अगर एक दिन आपको ऐसा पता चले कि आज आपको किसी भी चीज के लिए रोका टोका नहीं जाएगा, किसी भी चीज के लिए कोई जजमेंट पास नहीं होगा, या ये नहीं कहा जाएगा कि इस उम्र में आप ये काम नहीं कर सकते, या आप इस खास जगह पर हैं तो आपको ये नहीं करना चाहिए, अगर इस तरह की बंदिशें एक दिन के लिए भी आपसे हट जाएं, या आपके मन की जो ये दुनियादारी है वो आपसे हट जाए, तो कौन सा काम आप करेंगे, ये हमें बताइए। तब तक सुनाते हैं आपको एक ऐसा ही गीत जो आपको काम इस तरह का, अपने मन का काम करने के लिए प्रेरित करेगा। और ये गीत किस फिल्म का है हमें बताइए, किस पर फिल्माया गया है ये भी बताइए।
1: जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे,

जी मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें, चाहे कोई

0: जो भी कहे कहने को जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे कहने को जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे।
1: जंगली फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे। शमी कपूर इसमें नजर आते हैं। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया और हमने आपसे पूछा था कि क्या आपने कभी कोई ऐसा काम किया है जो बिल्कुल अपने मन से आपने किया हो। साथ ही

ये भी बताइए कि आज जिंदगी में कोई ऐसा काम किया जिसके लिए सब रूठ गए हों, सबसे बगावत करके कोई काम आपने किया हो तो भी हमें बताइए। और हमारे साथी ने लिखा है कि मैंने अपना जीवन यापन करने का एक हुनर अपने लिए किया है और मेरा जीवन अच्छे से मैं चलाता हूँ उससे। और हमारे एक साथी कहती है कि 4 दिन की जिंदगी में सबको खुश रखते चलो, ये कहते हैं सभी, लेकिन ये नहीं कोई पूछता कि इस कोशिश में खुद को कितना खो दिया। इस छोटी सी जिंदगी में दूसरों को रिझाने के लिए नकली मुस्कान ओढ़ने से बेहतर कि हम वो करें जो हमारे दिल को सुकून दे। झुकना वहां ठीक है जहां रिश्ते मायने रखते हों, पर अपने आत्मसम्मान का सौदा करके किसी के सामने गिरना खुद के साथ अन्याय है। ईश्वर ने हमें किसी के सांचे में ढलने के लिए नहीं बल्कि अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए भेजा है, इसलिए झूठे मुखौटों को उतारिए, खुद पर विश्वास रखिए और अपने स्वाभिमान के साथ अपनी चुनी हुई राह पर आगे बढ़िए। हमारी एक और साथी ने कविता लिख भेजी कि वक्त मुट्ठी में रखी रेत सा फिसलता रहता है और हम हैं कि उसे रिश्तों, ख्वाहिशों और फर्जों में बांधते रहते हैं। मन की सुन लेना भी जरूरी है मगर किसी अपने की खामोशी पढ़ लेना भी। अपने रास्ते पर चलना आजादी है और चलते हुए किसी का हाथ न छूटे शायद यही इंसानियत है। इसलिए इन चंद दिनों को न मुखौटा बनाइए न शिकायत, बस इतना कीजिए कि जो बनना चाहते थे थोड़ा सा बन जाएं, जो अपने थे उन्हें थोड़ा सा अपना कह जाएं। फिर जब शाम उतरेगी जिंदगी की तो अफसोस कम होंगे और यादें शायद थोड़ी ज्यादा। हमारे एक साथी का कहना है कि चल अकेला ये गीत भी सुन सकते हैं क्या आज? हालांकि आज की थीम पर ये गीत तो बिल्कुल भी नहीं जमता क्योंकि अकेले चलने की बात नहीं हो रही है, बात आप सबके साथ रहकर भी अपने मन की कुछ कर सकते हैं इसकी हो रही है। और साथ ही ये शब्द भी इसमें कहीं ना कहीं मिल नहीं रहा। हमारे और साथी कह रहे हैं कि स्वाभिमान अपने आप को दूसरों से बड़ा समझना नहीं बल्कि अपने अस्तित्व और अपनी भावनाओं का सम्मान करना है। जीवन में हर किसी को खुश रखना संभव नहीं होता। स्वाभिमान वो ताकत है जो कहती है मैं किसी से कम नहीं और किसी को छोटा करके बड़ा बनने की जरूरत भी नहीं। किसी के स्वाभिमान की लकीर खींची गई हो उस लकीर से अपनी लकीर को बड़ा करना होता है, किसी की लकीर को मिटाना नहीं होता। तो बस ये बात तो हो रही है, साथ ही साथ फिल्मों की बातें भी हो रही हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उन्होंने कि क्षणभंगुर जीवन की यथार्थता परिभाषित करता सुंदर गीत। आह फिल्म के गीत के बारे में ये कह रहे हैं और भी बहुत से गीतों के बारे में हमारे साथियों ने कहा है कि ये गीत शामिल हो सकते हैं। देखते हैं कि आज के जो गीत शामिल हो रहे हैं उनमें आपके लिस्ट के, हालांकि बहुत से गीत तो हैं आपके लिस्ट से उसमें से, लेकिन फिर भी आप हमें बताते चलिए कि कौन से गीत आपके लिस्ट में से आज शामिल होते जा रहे हैं इस कार्यक्रम में। और ये भी बताइए कि कौन कौन सी बातें जो आपके जीवन में रही हैं वो आज के इस कार्यक्रम से संबंधित है, कि आप अपने जीवन को किस तरह से बांधते हैं, किस तरह से देखते हैं, किसके लिए आप करते हैं अपने मन को थोड़ा सा नरम और कब कब अपने मन के काम करने के लिए, मनमर्जी करने के लिए मचल उठते हैं आप। हमारे एक साथी ने बहुत अच्छा किस्सा भेजा है, बताएंगे, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं। बताइए कि कौन सी फिल्म से ये गीत हमने लिया और इसे लिखा किसने।

आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों में सच्चाई फिल्म का गीत आपने सुना, जिसे लिखा राजेंद्र कृष्ण ने, और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे साथी कह रहे हैं कि आज की इबारत पढ़ते ही दिल गहरी सांस लेकर बुदबुदाया कि होना तो ऐसा ही चाहिए, पर होता कहाँ है। रिटायरमेंट के दिन सहकर्मी भी यही कहते हैं कि अब आपकी दूसरी पारी शुरू हो रही है, अभी तक आप दूसरों के लिए जिए, अब अपने लिए जिए और सभी इच्छाओं को पूरा करें। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। हम जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों का मन रखने और लिहाज करने में व्यतीत कर देते हैं और इसकी ऐसी आदत हो जाती है कि जब होश आता है तब तक इच्छाएं मर चुकी होती हैं और शरीर अक्षम हो चुका होता है। संक्षेप में एक शेर आज की इबारत का माकूल जवाब हो सकता है, उम्र दराज मांग के लाई थी चार दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। भाई क्या बात आपने कही, बिल्कुल मर्म को समझा आपने आज की इबारत की। और कुछ यही बातें की जा रही है कि एक वक्त के बाद एहसास होता है कि बहुत सा काम हमें करना था अपने मन का जो हमने बिल्कुल नहीं किया। हम दूसरों के बारे में सोचते रहे, कभी कभी कुछ जो बंदिशें या सीमाएं थी वो हमारी अपनी ही बनाई हुई थी, जो हमें बाद में समझ में आता है। हमारे साथी कहने की लता जी की आवाज का एक गीत है, दो दिन की जिंदगी कैसी है जिंदगी। जब जब इस गीत को सुनती हूँ तो लगता है जिंदगी चाहे दो दिन की हो या चाहे चार दिन की, हम जो भी पल जिए उसमें किसी तरह का अपराध बोध ना हो। हम अक्सर ये सुनते हैं कि दूसरों का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, पर अपने दिल के सुनते हैं अपने दिल को कितना दुखाते हैं। हर समय पूर्ण बनने की कोशिश में दिन गुजर जाते हैं और हम हाथ मलते रह जाते हैं। सो अपने दिल के सुने, न किसी को दुखी करें न खुद दुखी हो, ये जो जितने दिल मिले हैं इन्हें भरपूर जी लें। वाकई बहुत ही अच्छी बात हमारे एक साथी ने दी है, नागपंचम की बधाई, तो हम भी देते हैं उन्हें बधाई और साथ ही साथ उन्हें देते हैं ये संदेश कि अपने मन की जीना बहुत जरूरी है। कभी कभी मन नहीं होता कि हम मुस्कुराएं, या कभी कभी मन उदास होता है फिर भी हम कहते हैं कि हम ठीक हैं, तो इस तरह की बातों से भी हमें बचना चाहिए। तो क्या वाकई हम अपने मन के सुनते हैं? आप हमें बताइए और सुनिए ये गीत जिसमें बात है कुछ ऐसी ही, और आपको ये बताना है कि किस फिल्म का ये गीत है। आवाज तो आप पहचान ही जाएंगे, संगीतकार का नाम पहचानिए।

सच्चा झूठा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कल्याण जी आनंद जी का संगीत इसमें आपने सुना, किशोर कुमार की आवाज, और हमने नहीं पूछा था फिर भी आपने बताया कि राजेश खन्ना नजर आते हैं इस फिल्म में, इस गीत में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सही जवाब दिया। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन से ही उनका सपना था कि वो एक आरजे बने रेडियो में, लेकिन समय के साथ बैंकिंग जॉब करना पड़ा, फिर 36 साल के बाद रिटायरमेंट हुआ और आरजे बनने की इच्छा हुई तो ऑडिशन क्लियर किया और अब अपना सेकंड फेज यानी लाइफ की जो दूसरी पारी है वो एक आरजे के रूप में कम्युनिटी रेडियो में बिता रहे हैं। और ये उनकी एक चॉइस थी, उनका एक शौक था और इसे उन्होंने चुना और आज वो बड़े खुश हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आपने अपने इस शौक को, अपने मन की बात को बिल्कुल ध्यान रखा कि आपका मन क्या चाहता था। भले ही आपको कुछ और करना पड़ा, लेकिन जैसे ही मौका मिला आपने ये नहीं सोचा कि उम्र है आप क्या करें, और आप आगे बढ़े। इसके लिए बहुत बहुत आपको हम शुभकामनाएं देते हैं। और हमारे साथी कहते हैं अगर आप किसी की मदद चाहकर भी ना कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, पर उसकी राह में रुकावट ना डालें। अगर ये बात हर आदमी मानने लगे तो दुनिया की आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम वो क्या करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं खूब खेलूंगा क्रिकेट, अगर उन्हें जज ना किया जाए तो वो क्रिकेट खेलना चाहेंगे। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अगर उन्हें कोई रोके टोके नहीं तो मैं छोटे छोटे निक्के निक्के से बच्चों के साथ खेलना चाहूंगी। हम तो कहेंगे कि कोई रोकता टोकता भी है तो रहने दीजिए, आप अपना जो ये खेलने का मन है

वो कर लीजिए भाई। इतना अच्छा सा शौक आपने सोचा, इतना अच्छा आपका मन में ये छोटी सा एक ख्याल है, इसके लिए भी इतना सोचेंगे तो क्या होगा, है ना। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कुछ सच कहें तो अपने लिए ज्यादा तो कुछ नहीं किया, बस दूसरों की खुशी कैसे मिले इन्हीं बातों का ध्यान रखा। पहले मायके में सबका ध्यान रखना, सबके काम करना, सबको खिला के खाना, फिर ससुराल में भी बच्चों और सबका ख्याल सदा रखा, लेकिन अब जीना है खुद के लिए और हम करते हैं कुछ ऐसे काम जिससे हमें खुशी मिले। मिलते हैं अपने दोस्तों से, ढूंढते हैं छोटी छोटी खुशियां, कभी कभी खुद की पसंद का खाना भी बनाते हैं और बच्चों से कहते हैं कि आज हम यही बनाएंगे। ये हुई ना बात, क्योंकि ऐसा करना बहुत जरूरी है। अगर आप रोजाना दूसरों की पसंद का ही ख्याल रखते रहेंगे तो आपकी पसंद का ख्याल कौन रखेगा। हमारे एक और साथी कहते हैं कि क्या कहने इस गाने के, बहुत साल हो गए इस फिल्म को देखे हुए, लेकिन इतने सालों बाद भी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब कल की बात हो। शमी कपूर और सायरा बानो की बहुत सुंदर अदाकारी इस फिल्म में, और देखकर पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई। जंगली फिल्म के गीत के लिए इन्होंने कहा। हमारे एक और साथी ने कहा कि अगर उत्तरदायित्व का बोझ हट जाए तो जरूरतमंद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा, शिक्षण मेरा शौक है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कुछ रिश्तों को समर्पित है ये कहावत। तो अलग अलग बातें हमारे साथी कह रहे हैं, और जो बाकी और साथी भी हैं वो भी बता सकते हैं कि अगर उन्हें एक दिन के लिए ये मौका मिले कि वो सिर्फ अपने मन का कोई भी काम कर सकते हैं, भले ही आज उन्हें इस चीज की पाबंदी हो स्वास्थ्य के कारणों से या किसी और कारण से, मान लीजिए कि वो सब कुछ हट जाए तो क्या करेंगे आप उस एक दिन, क्या होगा आपके मन का वो काम जो आप करना चाहते हैं और कभी नहीं कर पाए, वक्त नहीं मिला या कुछ समय इस तरह का था, परिस्थिति ऐसी थी, लेकिन अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे आप, ये हमें बताइए। क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि किस चीज की एक कसक मन में रह गई है, तो वो क्या है हमसे साझा कीजिए आज। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत, हमें बताइए कौन से फिल्म का है, किस पर फिल्माया गया।

छोटी सी बात फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। विद्या सिन्हा इसमें नजर आती हैं। हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है इस गीत के बारे में। हमारे साथी कह रहे हैं कि ये गीत समझ में आया था आज के भारत के बारे में, पर काम का लोड होने के कारण मैं लिख नहीं पाया। हमारे एक और साथी कह रही हैं कि मेरा तो मन है कि एक दिन ऐसा आए मैं आप सबके साथ स्टूडियो आकर मिल सकूं, आप सभी के साथ एक फोटो खिंचवाऊं। हमें तो पूरी उम्मीद है कि ये दिन जरूर आएगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि इस गीत की प्रतीक्षा कर रहे थे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन से स्कूल टीचर बनना चाहती थी, अब रिटायरमेंट के बाद जरूरतमंद बच्चों को स्कूल में जाकर फ्री में पढ़ाती हूं, उनके साथ खेलती हूं। अब इस तरह अपनी सेकेंड इनिंग चल रही है। बहुत ही खूब अच्छी तरह से आपने ये काम किया। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तो स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, मन भी लगा रहता था, स्कूल में हर खेल में भागीदारी रहती थी, फिर पढ़ाई के कारण सब छूट गया। अब अवसर मिले तो पहले अवसर मिले और पहले वाली थोड़ी स्फूर्ति भी मिल जाए तो खेलों में जाएंगे। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि शमी कपूर साहब की जो जंगली फिल्म का गीत उन्होंने सुना, उसके लिए वो कहने की कुछ लोग को इसी तरह की जिंदगी पसंद आती है तो उनके लिए तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन दूसरों की नजर में खटकते रहते हैं, पर कोई बात नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अनेक विवादों का कारण बहुत छोटी सी बात होती है जो बड़ा विकराल रूप धर लेती है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जिनके साथ नहीं बनती उनसे एकदम दूर हो जाते हैं। हम तो जबरदस्ती नहीं निभाते किसी के साथ बात, ये नहीं कि सारे विचार सबसे मिलें, पर कुछ लोग अपनी ही बात मनवाने में लगे रहते हैं। हमारे एक और साथी कहने कि अपनों के साथ काहे का स्वाभिमान, ये तो बाहर वालों के साथ होना चाहिए। भाई हमें लगता है कि आप स्वाभिमान नहीं अभिमान लिखना चाहते हैं, क्योंकि अभिमान किसी से नहीं करना चाहिए पर स्वाभिमान बनाए रखना चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जिंदगी की इस भाग दौड़ में जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो एहसास होता है कि मैंने हर लम्हा दूसरों की खुशियों को संवारने में गुजार दिया। पहले बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने की फिक्र रही तो कभी परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने की जद्दोजहद, उनके चेहरों पर खिलती मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी कमाई बनी और उनकी जरूरतों के आगे मेरी अपनी इच्छाएं चुपचाप पीछे छूटती चली गई। सच्चाई तो ये है कि अभी तक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए हो, लेकिन इस बात का मुझे कोई मलाल नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको इस बात का कोई मलाल नहीं, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप कोई ऐसा काम कीजिए जो सिर्फ आप अपने लिए करें और उससे आपको जो खुशी मिलेगी उसकी तो क्या ही कहने, उसके बारे में भी हमें बताइएगा कभी न कभी। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें ये बताइए कि क्या आप वाकई परवाह करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। और इस फिल्म का नाम भी बताइए।

दिल चाहता है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हमारे कई साथियों ने सही नाम बताया फिल्म का, और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मैं तो सोच भी नहीं पा रही कि एक दिन में क्या करूं, मैं फिर से बचपन में जाकर उन सब दोस्तों से मिलकर वही मस्ती भरा पल एक बार और जीना चाहती हूं, जहां हर पल बस खुशियां ही खुशियां हो। तो हम आपको एक आइडिया देते हैं कि आप ये कर सकती हैं कि बचपन में जो चीजें आप किया करती थी अपनी सहेलियों से, अब भी आप मिलने की कोशिश कीजिए, तो आपको वो खुशी थोड़ी बहुत तो जरूर मिल जाएगी। क्योंकि अपने मन के करने के लिए हम आपको काल्पनिक तौर पर नहीं कह रहे कि सिर्फ सोचिए, नहीं, करके देखिए, बड़ा मजा आएगा। हमारे एक और साथी कहने कि चाहे कोई हमें बुरा कहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। बहुत से लोग हमसे 36 का आंकड़ा रखते हैं, पर हम जीते अपनी ही इच्छा से हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वो गार्डनिंग उन्हें बहुत पसंद है और वो ये काम करती हैं, वॉलंटियर करती हैं वो अपनी सोसाइटी के लिए। 15 साल हो गए और वो ग्रीनरी अवार्ड भी उन्होंने 2 बार जीता है, कैश भी मिला है, सर्टिफिकेट मिला है, और ये अवार्ड उन्होंने खुद दिल्ली में ये कलेक्ट किया अपने आप ही। 200 पॉटेड प्लांट उन्होंने खुद लगाए और उनकी रखवाली करती हैं, और किसी की सहायता नहीं लेती, खुद उनकी रखवाली करती हैं। तो बहुत ही अच्छी बात आपने की, और अपने मन की आप ये कर रही हैं, और उससे लोगों का भी फायदा हो रहा है। तो ये भी होता है, जब हमारा मन हम खुद खुश रखते हैं तो उससे ही हम दूसरे लोगों को अपने आप ही खुशियां बांटते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। वैसे ही हमारे एक साथी कह रहे कि दिल चाहता है पुरानी फिल्मों के गीत सुने, मगर अब नई फिल्म का दिल आ गया है तो दिल इसको भी सुन लेगा, कान भी सुन लेंगे। भाई, नई और पुरानी दोनों फिल्मों का दौर है और अच्छे अच्छे गीत हैं, हमारी थीम के साथ मैच कर रहे हैं, तो क्यों ना सुना जाए। हमारे एक और साथी कह रही, हम तो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, जिससे हमें बहुत खुशी मिलती है। ऐसा लगता है हम कहीं जाकर कुछ गीत गाएं, भले ही उसमें सुर ना हो, बस अपनी खुशी के लिए। एक बात और, जब कहीं हम देखते कोई गीत गा रहे तो हम माइक लेकर एक लाइन ही सही गा लेते हैं, फिर बच्चे कहेंगे कि क्या मम्मी आप ये क्या करती रहती हैं। वहीं हमारे एक और साथी का कहने है, कहते हैं ना परवाह के लोग क्या कहेंगे, शायद इसलिए ही अपने लिए हम कभी जिए नहीं। वही हमारे एक और साथी कहते, दिल तो नहीं करता कि उनकी बातों की परवाह करें, पर आप नहीं करेंगे तो लोग जबरदस्ती आपसे परवाह करवा कर ही रहेंगे। भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर आप ठान लें कि आप किसी की परवाह नहीं करेंगे तो देखिए, फिर धीरे धीरे बेपरवाह होने का भी एक मौका मिलने लगेगा आपको। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि मन की तुलना चंद्रमा से की गई, जिस प्रकार चंद्रमा घटता बढ़ता है उसी प्रकार मनुष्य के मन की मनोदशा कही गई है। कभी इच्छाओं से अभिभूत होकर श्रृंक हो जाता है, कभी निराशा से बोझिल थकासा, कभी आशा की किरण से चमकता हुआ, हर दर्द से बेपरवाह। सच, कितनी असीम शक्तियां छुपी हैं इस मन में, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि उनका मन था कि आकाशवाणी में प्रोग्राम करूं, एक दो बार गई भी, लेकिन कुछ हालात की वजह से रेगुलर नहीं हो पाया। अब आप लोगों से मिलने का भी मन करता है, मुंबई स्टूडियो जाऊं और आप

सबसे मिलूं, तो आपका ये मन जरूर आप मन का काम पूरा कर सकती हैं ऐसा हमें लगता है, और भविष्य में जरूर ये होगा ऐसा भी हमें लगता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि तबला बजाने की इच्छा थी जो नहीं पूरी हो सकी, लेकिन अब मैंने तबला क्लास लगाया है और सीख रहा हूं। भाई क्या कहने, क्योंकि जब आपका मन किसी चीज को करने का हो और आप उसकी ओर कदम बढ़ाने की कोशिश करते रहें तो यकीन मानिए वो काम तो होकर ही रहेगा। जैसा कि हमारा मन कर रहा है कि आपके मन की बात सुनते हुए गीत आपको सुनवा दें, तो देखिए ये काम पूरा हो रहा है। बताइए कौन से फिल्म का गीत है।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष तिवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा से हुजूर।
3: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर और आज हम बात कर रहे हैं कि अपने मन की कब करेंगे हम, अपने मन की बातें कब सुनेंगे हम, क्योंकि बचपन से हमने तो ये सीखा है कि खुद को तो बाद में रखिए, दूसरों को पहले रखिए, खुद की खुशी के बारे में हम ना सोचें, ऐसा कई बार हमें सिखाया जाता है। लेकिन एक बात जो हमें नहीं सिखाई जाती वो ये कि हमारी जिम्मेदारी अपने प्रति है, हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई और हमारा ख्याल कैसे रखेगा। और बहुत सी बातें ऐसी भी होती हैं जो उम्र को देखकर कही जाती हैं कि आपकी उम्र इतनी हो गई है, अब आप ऐसा ना करें, वैसा ना करें। तो हमारे एक साथी कह भी रहे हैं कि इस जीवन के रंगमंच में अनेक किरदार निभाते निभाते हम अपने को ही खो बैठते हैं, सबके सुख और खुशी में हम भी सुख और खुशी पा जाते हैं, अपने निज सुख और आनंद की ओर ध्यान नहीं जाता और कर्तव्य करते करते अपने को हम ना भूलें, ऐसा ये कह रहे हैं। और कई बार हमें देखना चाहिए कि अपनी खुशी भी आगे रखनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात आपने कही और लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यही गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। राजेश खन्ना नजर आते हैं पर्दे पर, ये बात किसे समझा रहे हैं पर्दे पर ये बताइए और फिल्म का नाम भी बताइए।

अमर प्रेम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसमें शर्मिला टैगोर को समझाते दिखते हैं पर्दे पर राजेश खन्ना ये बात, और हमारे साथियों ने तो लिखा है कि पुष्पा को समझाते हैं ये बात, जो कि उस फिल्म में उनका किरदार का नाम था। हमारे एक और साथी कहते हैं कि लोगों का क्या है, वो तो इधर से भी बोलते हैं उधर से भी बोलते हैं, जो मन में आए कहते रहते हैं और उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि, और एक साथी का कहना है कि हम तो इस बात की परवाह नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि अपने हिसाब से हम चलते हैं, लोग भी अपने हिसाब से चलते हैं, तो हमसे अपेक्षा क्यों करते हैं कि हम उनके अनुसार जिए। और एक और साथी का भी कहना है कि वो लोगों की परवाह नहीं करती, क्योंकि लोग तो कुछ कहेंगे ही, कुछ उनका काम कहना है। मैं सबका अच्छा करती हूं, परवाह नहीं करती लोगों की, अपना काम है कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो। और हमारे एक और साथी कहने कि अगर एक दिन के लिए स्वतंत्रता ईश्वर दे दें तो मैं असीम सच्चिदानंद को हर के ही हृदय में भर दूं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पहली कक्षा की सहेलियों से भी वो मिलती हैं, और एक साथी हैं वो जो वो बना रही हैं अपनी दूसरी श्रोता साथी के साथ प्लान विविध भारती स्टूडियो आने की। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अगर परवाह न करें, सपने न देखें, तो हर शख्स आपसे कोई भी नाराज ना हो, यानी एक सपना है ये कि कोई नाराज ना हो। हमारे कौर साथी कह रहे हैं कि यदि ऐसा एक दिन हो जाए तो अपनी फेवरेट स्कूल टीचर, स्कूल की बेस्ट फ्रेंड के साथ पूरा दिन बिताना चाहेंगे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सच और झूठ में यही खेल है, सौ सुनार की एक लोहार की। और एक और साथी अपने दोस्त को याद कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो हमारा पल अपनी बातों से, चुटकुलों से खुशहाल कर दें। हमारा एक दोस्त था जो अपनी बातों से इतना हंसाता था कि सांसें फूल जाती थी, उसके आने का इंतजार करते थे। तो बस जीवन में अपने मन की भी कीजिए, अपने मन की बातों के लिए भी ध्यान रखिए। और आज के इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

Ah!

नहीं दुनिया, नहीं दुनिया ऐसे वैसे की, भाई सब माया है पैसे की, भाई सब माया है पैसे की।

0: आप क्या जोगी क्या भोगी भैया, पैसा सबका बाप। पूछो भाई क्यों
1: क्यों
0: भाई, सब माया है पैसे की,
2: भाई सब माया है पैसे की,
0: नहीं दुनिया नहीं दुनिया ऐसे वैसे की, भाई सब माया है पैसे की,
2: भाई सब माया है पैसे की,
0: भाई सब माया है पैसे की, भाई सब माया है पैसे की,
2: नहीं दुनिया नहीं दुनिया ऐसे वैसे की, भाई सब माया है पैसे की,
3: भाई सब माया।

0: है मोटर, और बिन पैसे जित जाओ, मिलती है क्या ठोकर। पूछो भाई क्यों
1: क्यों
0: क्यों, अरे जय पैसे लाल की ठन ठन गोपाल की,
2: जय पैसे लाल की ठन ठन गोपाल की,
0: बोलो जय पैसे लाल की ठन ठन गोपाल की,
2: जय पैसे लाल की ठन ठन गोपाल की,
0: बोलो जय पैसे लाल की ठन ठन गोपाल की,
2: जय पैसे लाल की ठन ठन गोपाल की,
0: ठन ठन ठन ठन
2: ठन ठन ठन ठन
0: ठन ठन
2: ठन ठन,
0: जय पैसे लाल की ठन ठन गोपाल की,
2: जय पैसे लाल की ठन ठन गोपाल की,
0: जय पैसे
2: लाल की ठन ठन गोपाल की, जय पैसे लाल की।

0: सखी सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को और दीपा आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सोनाली आपको और हमारी सभी सखियों सहेलियों श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का
0: हेल्दी नमस्कार। मैं समझ गई थी कि आपका हेल्दी नमस्कार होगा।
1: क्योंकि भाई स्वास्थ्य है तो धन है, वो ही हमारा सच्चा धन है।
0: बिल्कुल,
1: है ना।
0: और अभी बारिश का मौसम है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए।
1: बिल्कुल, सबका, घर वालों का, परिवार का और स्वयं का। सखियां अपने आप को सबसे पीछे छोड़ देती हैं स्वास्थ्य के मामले में।
0: ये बिल्कुल सही बात आपने कही, क्योंकि सबका ख्याल रखती है पर खुद के लिए बहुत हमेशा कभी सोचती नहीं खुद के लिए, है ना।
1: ये तो हम अपनी सखियों से कहेंगे कि भाई परिवार का ध्यान रखते रखते आप अपने आप को पीछे कहीं न छोड़ दीजिएगा, क्योंकि परिवार की धुरी तो आप ही हैं।
0: और जब हम खुश रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे तो हर त्योहार हम उसी उमंग उसी उत्साह के साथ मनाते हैं।
1: बिल्कुल, जैसे कि आज नाग पंचमी मनाई जा रही है।
0: बिल्कुल, है ना? आज हर घर में नाग पंचमी का उत्सव मनाया जा रहा है, तो सारे श्रोताओं को सखियों को नाग पंचमी की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस विषय पर कमेंट्स लिखना भी शुरू कर दिए।
1: बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और साथ में जब भाई बात हो रही है कोई पर्व की, तो पर्व आते ही याद आ जाता है खाना पीना, भोग प्रसाद, अलग अलग तरह के व्यंजन बनते हैं। लेकिन इन सब के बीच में ये जो बच्चे जो बाहर के खाने की जिद करते हैं, जंक फूड खाने की जिद करते हैं, तो इन सब बातों से कैसे निपटा जाए या उस आकर्षण को कैसे कम किया जाए। बहुत सारे कमेंट्स तो आए हैं सोनाली, और हम बात भी करेंगे, इस पे विचार विमर्श भी होगा, तो जानेंगे कि कैसे भाई मिलजुल करके ये चीज के प्रति जरा जो अट्रैक्शन है ये बच्चों का कम
0: किया जाए। और साथ ही आज बहुत सारे साथियों को, श्रोताओं को इंतजार है कथा सुधा का, हमें भी इंतजार है, क्योंकि आज तेतर भाग दो आज हम सुनने वाले हैं। और साथ ही पश्चिम बंगाल के व्यंजन, इसके अंतर्गत लूची, आलूरदम और मिष्टी दोई, ये सारे व्यंजन बहुत बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो हमारे श्रोताओं से भी कहेंगे कि क्या आपने चखे हैं, और चखे हैं तो कैसे लगे आपको, या आपको उसकी विधि अगर मालूम है व्यंजन की तो आप हमें लिख कर भेजिए।
1: बिल्कुल।
0: और आप क्या करें,
1: बाहर तो आज बारिश हो रही
0: झमाझम।

0: वृष्टि टापुर टुपुर जब पड़ती है ना दीपा, तो कितना उमंग और उत्साह का मौसम हो जाता है।
1: बिल्कुल, और दिल भी कहीं एकदम ऐसा करने लगता है कि मन में जैसे एक स्वाभाविक से संगीत टापुर टुपुर वाली ही उत्पन्न होने लग जाती है।
0: और अब इंतजार है श्रोताओं के साथ हमें भी कथा सुधा का,
1: तो चलो
0: तो सुनते हैं आज तेतर कहानी का भाग दो।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। इस कहानी में पिछले हफ्ते आपने सुना
4: आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, जिसकी चिंता में घर के सभी लोग विशेषतः प्रसूता पड़ी हुई थी। अनर्थ, महा अनर्थ, भगवान ही कुशल करे तो हो, ये पुत्री नहीं राक्षसी है। इस अभागिन को इसी घर में आना था, आना ही था तो कुछ दिन पहले क्यों ना आई। भगवान सातवें शत्रु के घर में भी तेतर का जन्म ना दे। पिता का नाम था पंडित दामोदर दत्त, शिक्षित आदमी थे, शिक्षा विभाग में ही नौकर भी थे, मगर इस संस्कार को कैसे मिटा देते जो परंपरा से हृदय में जमा हुआ था कि तीसरे बेटे की पीठ पर होने वाली कन्या अभागिन होती है, या पिता को लेती या माता को या अपने को।
5: लड़की तो जरा देखो, दुबली पतली भी नहीं है, तीनों लड़कों से हृष्ट पुष्ट है, ये बड़ी बड़ी आंखें हैं, पतले पतले लाल लाल होंठ हैं, जैसे गुलाब की पत्ती, गोरा चिट्टा रंग तो देखो, लंबी सी नाक, कल मुई नहलाते समय रोई भी नहीं, ठुकुर ठुकुर ताकती रही। ये सब लक्षण कुछ अच्छे थोड़े ही हैं, हाँ?
6: इस बेचारी का मेरे घर जन्म लेने में क्या दोष है? मुझ पर या इसकी माता पर जो कुछ भी पड़े, उसमें इसका क्या अपराध? हम कितनी निर्दयता कर रहे हैं। कुछ भावी अनिष्ट की आशंका के कारण उसका इतना तिरस्कार कर रहे हैं। माना कि कुछ अमंगल हो भी जाए तो क्या उसके भय से इसके प्राण ले लिए जाएंगे? अगर अपराधी है तो मेरा प्रारब्ध है। इस नन्हे से बच्चे के प्रति हमारी कठोरता क्या ईश्वर को अच्छी लगती होगी? आ जाओ गुड़िया, आ जाओ।
4: उन्होंने उसे गोद

ने उठा लिया और उसका मुख चूमने लगे। लड़की को कदाचित पहली बार सच्चे स्नेह का ज्ञान हुआ। वो हाथ पैर उछालकर गुंगुंग करने लगी और दीपक की ओर हाथ फैलाने लगी। उसे जीवन ज्योति सी मिल गई।

0: बाबू साहब ने बड़े लड़के से कहा,
1: सिद्धू सिद्धू जरा उस बकरी को पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ला ला ला ला ला लाओ, तेरी बहन को दूध पिलाएंगे, शायद भूखी है बेचारी। देखो तुम्हारी नन्ही से बहन है ना, इसे रोज हवा में खिलाया करो।
0: सिद्धू को दिल लगी हाथ आई, उसका छोटा भाई भी दौड़ा, दोनों ने घेर कर बकरी को पकड़ा और उसका कान पकड़े हुए सामने लाए। पिता ने शिशु का मुंह बकरी के थन में लगा दिया। लड़की चुबलाने लगी और एक क्षण में दूध की धार उसके मुंह में जाने लगी, मानो टिमटिमाते दीपक में तेल पड़ जाए। लड़की का मुंह खिल उठा, आज शायद पहली बार उसकी शुधा तृप्त हुई थी। वो पिता की गोद में हुमक हुमक कर खेलने लगी। लड़कों ने भी उसे खूब नचाया कुदाया।

0: पिता का प्यार, भाइयों का दुलार मिलने से नन्ही बच्ची दिन ब दिन निखरती जा रही है। आगे क्या होता है इसके लिए सुनिए इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग।
1: उस दिन से सिद्धू को मनोरंजन का एक नया विषय मिल गया। बालकों को बच्चों से बहुत प्रेम होता है। अगर किसी घोंसले में चिड़िया का बच्चा देख पाए तो बार बार वहां जाएंगे, देखेंगे कि माता बच्चे को कैसे दाना चुगाती है, बच्चा कैसे चोंच खोलता है, कैसे दाना लेते समय परों को फड़फड़ाकर चेंचे करता है। आपस में बड़े गंभीर भाव से उसकी चर्चा करेंगे, अपने अन्य साथियों को ले जाकर उसे दिखाएंगे। सिद्धू ताक में लगा रहता। जो ही माता भोजन बनाने या स्नान करने जाती, तुरंत बच्ची को लेकर आता और बकरी को पकड़कर उसके थन में शिशु का मुंह लगा देता। कभी दिन में दो दो तीन तीन बार पिलाता। बकरी को भूसी चोकर खिलाकर ऐसा परचा लिया कि वो स्वयं चोकर के लोभ से चली आती और दूध देकर चली जाती। इस भांति कोई एक महीना गुजर गया। लड़की हृष्ट पुष्ट हो गई, आंखें जग उठी, शिशुकाल की सरल आभा मन को हरने लगी। माता उसे देख देख कर चकित होती थी। किसी से कुछ कह तो न सकती, पर दिल में उसे आशंका होती कि अब वो मरने को नहीं, हमें लोगों के सिर जाएगी, कदाचित ईश्वर इसकी रक्षा कर रहे हैं। जब ही तो दिन दिन निखरती आती है, नहीं तो अब तक ईश्वर के घर पहुंच गई होती। मगर दादी माता से कहीं ज्यादा चिंतित थी।
2: मुझे तो लगता है दूध पिलाती है ये बिटिया को। अरे दूध क्या पिला रही है, सांप पाल रही है सांप। क्यों लड़की का बड़ा छो करती हो? हाँ भाई, माँ हो कि नहीं, अब तुम न छो करोगी तो कौन करेगा भला।
3: अम्मा जी, ईश्वर जानते हैं जो मैं इसे दूध पिलाती हूँ।
2: अरे तो मैं मना थोड़े ही करती हूँ। अरे मुझे क्या गरज पड़ी है कि मुफ्त में अपने ऊपर पाप लू है। अरे कुछ मेरे सिर तो जाएगी नहीं। हाँ
3: अरे अम्मा जी, अब आपको विश्वास ही ना आए तो कोई क्या करे।
2: हाँ तो क्या, मुझे पागल समझती है तू? हाँ पागल समझती हो, वो हवा पी पी कर ऐसी हो रही है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता क्या?
3: सही कह रही हैं। भगवान जाने अम्मा जी, मुझे तो आप ही अचरज होता है
4: कि इसका चेहरा कैसे खिलता ही जा रहा है।
1: बहू ने बहुत निर्दोषिता जताई। दादी को लगा ये मेरी शंका को निर्मूल समझती है, मानो मुझे इस बच्ची से कोई बैर है। उनके मन में ये भाव अंकुरित होने लगा कि इसे कुछ हो जाए तब ये समझे कि मैं झूठ नहीं कहती थी।

0: जिन प्राणियों को अपने प्राणों से भी प्रिय समझती थी उन्हीं लोगों की अमंगल कामना करने लगी, केवल इसलिए कि मेरी शंकाएं सत्य हो जाएं। वो ये तो नहीं चाहती थी कि कोई मर जाए, पर इतना अवश्य चाहती थी कि किसी बहाने से मैं चेता दूं कि देखा तुमने, मेरा कहा ना माना ये उसी का फल है। उधर सास की ओर से ज्यों ज्यों ये द्वेष भाव प्रकट होता था, बहू का कन्या के प्रति स्नेह बढ़ता था। ईश्वर से मनाती रहती थी कि किसी भांति एक साल कुशल से कट जाता तो इनसे पूछती। कुछ लड़की का भोला भाला चेहरा, कुछ अपने पति का प्रेम वात्सल्य देखकर भी उसे प्रोत्साहन मिलता था। विचित्र दशा हो रही थी, न दिल खोलकर प्यार ही कर सकती थी, न संपूर्ण रीति से निर्दय होते ही बनता था, न हंसते बनता था न रोते। इस भांति 2 महीने गुजर गए और कोई अनिष्ट ना हुआ। तब तो वृद्धा सास के पेट में चूहे दौड़ने लगे।
1: बहू को 2-4 दिन ज्वर भी नहीं आ जाता कि मेरी शंका की मर्यादा रह जाती। कुछ समझ में नहीं आता, पुत्र भी किसी दिन पैरगाड़ी पर से नहीं गिर पड़ता, न बहू के मैके से ही किसी के स्वर्गवास की सुनावनी आती है।
0: एक दिन दामोदर दत्त ने खुले तौर पर कह भी दिया,
2: अम्मा ये सब ढकोसला है, तेतर लड़कियां क्या दुनिया में होती नहीं, तो सबके सब माँ बाप क्या मर जाते हैं।
0: अंत में उसने अपनी शंकाओं को यथार्थ सिद्ध करने की एक तरकीब सोच निकाली। एक दिन दामोदर दत्त स्कूल से आए तो देखा कि अम्मा जी खाट पर अचेत पड़ी हुई है, स्त्री अंगीठी में आग रखे उनकी छाती सेक रही है और कोठरी के द्वार और खिड़कियां बंद हैं।
2: अरे अम्मा क्या हुआ,
1: अरे
2: कैसी तबीयत है, अरे हो क्या गया।
3: अरे आ गए आप, देखिए ना अम्मा जी को दोपहर से ही कलेजे में शूल सा उठ रहा है, बेचारी बहुत तड़प रही हैं।
1: अरे क्या बताऊं बेटा, तुम आ गए दामोदर, आओ अब ना बचूंगी, हाय भगवान अब ना बचूंगी, जैसे कोई कलेजे में बर्छी चुभा रहा हो, ऐसी पीड़ा कभी नहीं हुई थी, इतनी उम्र बीत गई बेटा, ऐसी पीड़ा कभी नहीं हुई, तो लेकर ही बीतेगी मेरी जान।
3: ये सब ना इसी के कारण हो रहा है, ये कलमुही छोकरी ना जाने किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई है।
2: मैं जाकर डॉक्टर साहब को बुला लाऊं ना, देर करने से शायद रोग बढ़ जाए। अम्मा अम्मा कैसी है तबीयत।
1: हाय अरे बेटा भगवान साफ करते हैं, हाँ अरे बड़ा दर्द हो रहा है, ये बेचारी क्या जाने, तो बच्चा है, देखो हाँ मैं मर जाऊं तो उसे कष्ट मत देना, आए, आए, उसे कष्ट मत देना।
2: जाकर डॉक्टर बुला लाऊं, अभी लौट आता हूँ।
1: अरे नहीं बेटा रहने दो सब, अच्छा हुआ मेरे सिर गई है, हाँ तू बैठ बेटा बैठ, अब किसी के सिर जाती ही हाँ तो मेरे ही सिर सही, हाँ बेटा अब ना बचूंगी, हाय राम हाय भगवान अब ना बचूंगी दामोदर, समझ लो कि बस सब सब खत्म, हाँ कह देती हूँ, अच्छा हुआ मेरे सिर आई, बड़ा दर्द हो रहा है दामोदर, हाय कहीं कोई मत जाओ।
2: अम्मा अम्मा अभी अभी जाकर डॉक्टर बुला लाऊं, अभी लौटा आता हूँ, ठीक हो जाओगी तुम।
1: अरे कहाँ जाते हो, अरे नहीं नहीं बेटा डॉक्टर के पास जाकर क्या करोगे, अरे अरे वो कोई ईश्वर है क्या है, डॉक्टर कोई अमृत पिला देगा है? 10-20 वो भी ले जाएगा हमारा डॉक्टर, पैसे कुछ ना होगा, कुछ ना होगा बेटा, बस अब तो बस आखिरी समय आ गया है बेटा,

0: बस मेरे पास बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, अब बैठकर भागवत पढ़ो। हाँ, अंतिम समय है, अब ना बचूंगी, हाय राम, अब ना बचूंगी, पढ़ो पढ़ो बचो, भागवत पढ़ो बेटा, अंतिम समय है, बस तो जान लेकर ही जाएगी। हाँ कह देती हूँ।
1: तेतर तेतर बुरी चीज है। मैं समझता था कि ढकोसला ही ढकोसला है।
2: मुझे पता था, इसी से मैं उसे कभी मुंह नहीं लगाती थी।
0: अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो बेटा, नहीं, बच्चों को सब आराम से रखना, भगवान करे तुम सब सुखी रहो, तुम लोगों को भगवान सुखी रखे, बस यही आशीर्वाद देती हूँ। अच्छा हुआ मेरे ही सिर गई, तुम लोगों के सामने मेरा परलोक हो जाएगा, बस यही अच्छा है, राम करे। कहीं किसी दूसरे के सिर जाती तो क्या होता, राम राम। अरे बस अंतिम समय है, भगवान ने मेरी विनती सुन ली, बस यही विनती है, तुम सब खुश रहो। हाय हाय, अब न बचूंगी, बस मैं तो चली दामोदर, खुश रहो तुम सब, बच्चों को ठीक से रखना। हाँ कह देती हूँ, कष्ट ना हो किसी को।
3: दामोदर दत्त को निश्चय हो गया कि अब अम्मा न बचेंगी। बड़ा दुख हुआ। उनके मन की बात होती तो वो मां के बदले तेतर को न स्वीकार करते। जिस जननी ने जन्म दिया, नाना प्रकार के कष्ट झेलकर उनका पालन पोषण किया, अकाल वैधव्य को प्राप्त करके भी उनकी शिक्षा का प्रबंध किया, उसके सामने एक दुधमुही बच्ची का क्या मूल्य था, जिसके हाथ का एक गिलास पानी भी वो न जानते थे। शोकातुर होकर मां के सिरहाने बैठकर भागवत की कथा सुनाने लगी। रात को बहू भोजन बनाने चली तो सास से बोली,
2: अब कैसा लग रहा है अम्मा जी? आप कहें तो आपके लिए थोड़ा सा साबुदाना बना दूं?
0: हाय बड़ा दर्द होता है। अरे बेटी, अन्न के बिना ना मारो है, भला साबूदाना मुझसे खाया जाएगा है? जाओ जाओ, थोड़ी सी पुड़िया छान लो। हाँ अब पड़े पड़े जो इच्छा होगी खा लूंगी। और हाँ सुनो बहू, कचौरियां भी बना लेना, अब मरती हूं तो भोजन को तरस तरस के क्यों मरूं भला। हाय बड़ा दर्द होता। सुन अब बेटी, थोड़ी मलाई भी मंगवा लेना। हाँ वो भी चौक से। हाँ अब फिर थोड़े ही खाने आऊंगी, अब गई तो गई, हम तो समझो कि अब बेटी अब ना बचूंगी। बेटा थोड़े से केले मंगवा लेना, कलेजे में दर्द में केले खाने से आराम होता है। हाँ है बड़ा दर्द है भैया।
3: भोजन के समय पीड़ा शांत हो गई, लेकिन आधे घंटे के बाद फिर जोर से होने लगी। आधी रात के समय कहीं जाकर उनकी आंख लगी। एक सप्ताह तक उनकी यही दशा रही। दिन भर पड़ी कराहा करती, बस भोजन के समय जरा वेदना कम हो जाती। दामोदर दत्त सिरहाने बैठे पंखा झलते और मातृ वियोग के आगत शोक से रोते। घर की मेहरी ने महल्ले भर में यह खबर फैला दी। पड़ोसी ने देखने आई तो सारा इल्जाम बालिका के सिर गया। एक ने कहा,
4: ये तो कहो भैया कि बड़ी कुशल हुई जो बुढ़िया के सर गई, नहीं तो तैतर माँ बाप दो में से किसी एक को लेकर जाए तो ही शांत होती है। देव ना करे कि किसी के घर तैतर का जन्म हो।
5: हाँ हाँ सही कहती हो, तैतर का नाम सुनते ही मेरे भी रोए खड़े हो जाते हैं। भगवान भले ही औलाद ना दे पर तेतर ना दे।
3: एक सप्ताह बाद वृद्धा का कष्ट निवारण हुआ। मरने में कोई कसर ना थी, वो तो कहो पुरखों का पुण्य प्रताप था। ब्राह्मणों को गोदान दिया गया, दुर्गा पाठ हुआ, तब कहीं जाके संकट टला।
6: कथा सुधा में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी

0: तेतर। आज आपने सुना इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। कहानी में भूमिका सहित पात्रों का परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार जी श्याम, वृद्ध दादी रेणु चतुर्वेदी, दामोदर दीपक के सावलेकर, दामोदर की स्त्री स्वप्निल श्रीवास्तव, लक्ष्मी चंचल वर्मा, पड़ोसन मंजरी वर्मा, बाल कलाकार प्रज्वल सिंह, वेदांत सिंह और रुद्र सिंह, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, संकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
1: तो आपने सुनी कहानी तेतर, और हम तो बहुत मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। आशा है आप सभी को भी बहुत अच्छी लगी होगी ये कहानी।
2: और आज घर में क्या चल रहा है? आज घर में हो रहा है नाग पंचमी का त्योहार मन रहा है।
1: बिल्कुल।
2: तो ये जो है ना, ये जो त्योहार होता है ना, ये हमारा देश त्योहारों और परंपराओं की विविधता वाला देश है। यहाँ मनाया जाने वाला प्रत्येक पर्व अपने साथ धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक और पर्यावरण की रक्षा के लिए एक संदेश भी लेकर आता है। नाग पंचमी हमारा एक महत्वपूर्ण पर्व है जो नाग देवताओं की पूजा और उनके प्रति सम्मान का प्रतीक माना जाता है। ये पर्व सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है।
1: बिल्कुल। और सुना ली, नागपंचमी के दिन श्रद्धालु सर्प की पूजा करते हैं। भगवान शिव के गले में नाग का स्थान होने के कारण नागों का संबंध भगवान शिव से भी माना गया है। और नागपंचमी का महत्व ये केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा अधिक है। और सर्प हमारे पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो खेतों में चूहे और दूसरे हानिकारक जीवों की संख्या नियंत्रित करते हैं जिससे फसलों की रक्षा होती है। इसलिए नागों और अन्य जीव जंतुओं का संरक्षण प्रकृति के संतुलन के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है।
2: और इस दिन कई स्थानों पर जो है ना नाग देवता के चित्र और प्रतिमाओं की पूजा की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये पर्व विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। महिलाएं परिवार की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना करती हैं। अनेक स्थानों पर पूजा व्रत और धार्मिक कथाओं का आयोजन भी किया जाता है।
1: और आज जब हम ये पर्व मना रहे हैं तो इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए सोनाली कि सांपों को पकड़कर उन्हें परेशान करना या जबरदस्त उनको दूध उन्हें पिलाना ये सब उचित नहीं है। वन्य जीवों के प्रति प्रेम और सम्मान ही हमारी सच्ची पूजा और श्रद्धा मानी जानी चाहिए। यदि घर या आसपास कहीं सांप दिखाई दे तो उन्हें परेशान करने के बजाय प्रशिक्षित वन्य जीव बचाव दल की हमें सहायता लेनी चाहिए।
2: और ये दिन हमें एक संदेश भी देता है कि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नाग देवता के प्रति श्रद्धा तभी सार्थक है जब हम उनके सहित सभी जीव जंतुओं की रक्षा करें और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखें। इस प्रकार नागपंचमी हमारी धार्मिक आस्था और संस्कृति और प्रकृति प्रेम का एक सुंदर संगम है।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश भी आया है इसी के लिए कि ये जो पर्व है ये बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है हमारे देश में और बहुत ही सुंदर और धार्मिक मान्यता से जुड़ा हुआ ये पर्व है। इन दिनों नागों की पूजा की जाती है और कहीं कहीं नाग देवता को दूध पिलाने की भी विधि रखी गई है, देखा जाता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने गले में सर्प को धारण किया था।
2: ये हमारे साथी ने कहा और वक्त हो चुका है अंतराल का, तो हम हाजिर होते हैं अंतराल के बाद
1: जी।

0: दीपा, हमारी एक सखी ने एक मैसेज लिखा है कि हमारे घर भी आज नागपंचमी की पूजा हुई है। नाग देवता को गोबर और मिट्टी से बनी हुई मूर्ति को धान का लावा, लैया, गुड़ और दूध चढ़ाया जाता है। वहीं सब साथ खाना खाते हैं और बहुत जगह पर, खासकर बिहार के कुछ प्रांत में आज बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सभी के घरों में दाल की पूरी, खीर, आम, पका कटहल, भोग लगाया जाता है और प्रसाद बांटा जाता है। नीम की पत्तियों से घर के दरवाजे को सजाया जाता है। ये पूजा भी हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। सावन के महीने में खेतों में धान की फसलें लगाई जाती है और उन बारिश के दिनों में बहुत सारे कीड़े सांप रहते हैं, जो उन्हें भी देवता स्वरूप मान के साथ उनका भी पूजन किया जाता है और हर्ष और उल्लास के साथ इस दिन को मनाया जाता है।
1: और एक और संदेश आया, ये कहते हैं कि हमारे घर में कहा जाता है कि आप कहीं भी किसी भी देश में रहिए, वहां के परिवेश में अपने को ढाल लिए, पर अपना कुल परंपरा का जो है परंपरा के निभा होनी चाहिए। तो कहती हैं कि बहू हमारी पुणे में रहती है, वो भी आज नाग पंचमी की पूजा वहां करती है। यानी आप तो अपने गांव देश में रहते हैं लेकिन बहू दूर रह रही है, लेकिन सारी परंपराओं को वो अपनाकर उसका पालन कर रही है।
0: तो ऐसे ही होता है ना दीपा, की जो परंपराएं होती है या फिर पारंपरिक व्यंजन होते हैं, अगर वो बनेंगे घर में तभी तो उसका स्वाद बच्चों को पता चलेगा।
1: बिल्कुल।
0: अगर वो बनेंगे ही नहीं तो बच्चों को पता ही नहीं चलेगा।
1: और उसका जो महत्व है, क्यों बनाया जाता है, हर एक चीज का महत्व है और हर एक चीज का कारण है। वो समझेंगे ही नहीं अगर उन्हें ना वो चखेंगे, ना वो बनते हुए देखेंगे। वो सौंधी खुशबू जब घर में फैलती है, उसका आनंद नहीं लेंगे तब तक उसका महत्व उन्हें समझ नहीं आएगा।
0: और जब हम बताते हैं कि कितना पौष्टिक है, इसमें इतना सारा प्रोटीन है, इसमें विटामिन है और इसमें, यानी ये जो जो व्यंजन है स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। जब ये बात बच्चों को बताई जाती है ना, तो बच्चे जंक फूड के लिए जिद नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल। लेकिन देखो ना, अभी आज का ये जो जमाना है, तेज रफ्तार भागती भागती से जिंदगी हमारी हो गई है, और इस बदलते परिवेश का सबसे ज्यादा जो प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है वो खान पान पर हम देख ही रहे हैं। एक समय था सोनाली, जब बच्चों में घर का बना ये दाल चावल सब्जी रोटी या यूं कहें खिचड़ी

0: पोहा, उपमा, कोई किसी भी प्रकार के पराठे, फल, सब कुछ उनको बड़े चाव से खा लेते थे वो लोग, है ना।
1: पर आजकल बच्चे जो है ना कलर और जो है ना रंगों के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, और उन्हें ना ये जो उसमें बहुत जो चटपटा बनाया जाता है जंक फूड, जैसे फिर पिज्जा है, बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज है, नूडल्स, पास्ता, चिप्स, चॉकलेट, केक, कोल्ड ड्रिंक और पैकेट बंद खाद्य पदार्थों ने ये जो जगह ले ली है बच्चों के जीवन में, और यही
0: बिल्कुल।
1: कारण है कि जंक फूड बच्चों के जीवन का हिस्सा बनता चला जा रहा है।
0: और उन्हें इस तरीके से रंग बिरंगी पैकेजिंग में परोसा जाता है ना, और बड़े लुभावने फिर विज्ञापन भी बना दिए जाते हैं। जब विज्ञापन बच्चे टीवी, मोबाइल पर या अपने किसी सोशल मीडिया हैंडल पर देख लेते हैं, या कार्टून प्रोग्रामों के दौरान बीच में अगर देख लेते हैं, तो बस फिर उनका मन उस पर तो आ ही जाता है, और उसका बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है, वहां से शुरू हो जाती है जिद।
1: और छोटे बच्चे तो क्या बड़ों का भी मन आ जाता है। एनीवे
0: बिल्कुल
1: तो
0: सही
1: बच्चे
0: कहा।
1: हैं, और जब उनके पसंदीदा अभिनेता है या खिलाड़ी है या कार्टून पात्र किसी खाद्य पदार्थ का प्रचार करते हैं ना, तो बच्चे भी उसे खाने की जिद करने लगते हैं। इसके अलावा फिर जन्मदिन है भाई, पार्टियां हैं मॉल में, मल्टीप्लेक्स में, स्कूल के आसपास की दुकानें, ऑनलाइन फूड डिलीवरी ने भी जंक फूड को बच्चों की पहुंच में बहुत ही आसान बना दिया है कि इतना इजीली उन्हें सब मिलता है, तो वो तो उन्हें इजी है
0: बिल्कुल,
1: और चटपटा
0: और
1: स्वादिष्ट है।
0: चटपटा स्वाद है, और चलिए स्वाद भी अगर किसी को पसंद ना आए, तो एक बच्चा तो खा रहा है, शायद दो तीन खा रहे हैं, तो वो जो एक नहीं खा रहा है, तो उसका भी मन करेगा, या उसको बोला जाएगा कि देखो तुम ये खाकर देखो
1: कितना
0: कितना
1: अच्छा।
0: अच्छा है,
1: और फिर वो
0: बस।
1: अपनी मम्मी से कहेगा कि सबकी मम्मियां तो लेकर देती है, आप ही हमारे साथ ऐसा क्यों करते हो।
0: ऐसा क्यों करते हो, बिल्कुल सही कहा। और जंक फूड स्वाद में भले ही लाजवाब लगे सोनाली, लेकिन स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है, यानी हानिकारक है, और इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में तेल होता है, सफेद चीनी, नमक, मैदा, फिर ये प्रिजर्वेटिव डले होते हैं, कई प्रकार के फ्लेवर उसमें मिलाए जाते हैं, और आर्टिफिशियल कलर्स उसके अंदर होते हैं, और ये वहीं पे देखो आप विटामिन, प्रोटीन, फाइबर और कई तरह के खनिज जैसे पोषक तत्व की तो बहुत कमी होती
1: या
0: है।
1: फिर नाक के बराबर होते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। अच्छा, बच्चे तो नहीं समझ पाएंगे ये सारी बातें, हमें उनको बताना पड़ता है। अगर उनको बताएं कंपोजिशन में क्या लिखा है, देखो ये सब चीजें इतनी ज्यादा है, और तुम्हारे शरीर में इतनी ज्यादा ये चली जाएंगी, ये मात्रा हमारे शरीर में जरूरत नहीं है इतनी, जितना ये एक पैकेज के
1: थ्रू
0: द्वारा जा
1: मिलता
0: रहा
1: है।
0: है, तो वो बच्चे समझेंगे, उनको बिठा के बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, समझते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त उन्हें देना होता है।
1: और परिणाम हमारे सामने है ना दीपा, कि जब हम छोटे थे या फिर हमारे साथी मोटे नहीं थे, है ना।
0: बिल्कुल सही
1: आजकल के
0: कहा।
1: बच्चे देखिए ना कितने मोटे होते जा रहे हैं, जंक फूड खाने से बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, मधुमेह है छोटे छोटे बच्चों को,
0: बहुत छोटे।
1: डायबिटीज हमें मालूम ही नहीं था, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर मालूम नहीं था, दांतों की समस्या है, हम हार्डली बहुत कम डेंटिस्ट के पास जाते थे, पर आजकल तो हर बच्चा डेंटिस्ट के पास
0: बिल्कुल
1: जाते
0: सोनाली, पहले तो डेंटिस्ट इतने होते ही नहीं थे, अब तो पेडेटिक डेंटिस्ट भी होने लगे हैं, जहां छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर डेंटिस्ट है, क्योंकि छोटेपन से ही उनको दांतों की समस्या है, यानी उनके दूध के दांत भी अभी गिरे नहीं है, उसके पहले ही उन्हें बहुत ज्यादा बिल्कुल एक सीरियस दांतों की प्रॉब्लम होने लग जाती है।
1: साथ ही उनकी ना रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आने लग गई है, और कम उम्र में उन्हें अनेक स्वास्थ्य समस्याओं से का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए ना, हम यही चाहेंगे ना कि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे, खुश रहे, अगर ये चाहते हैं तो हमें जंक फूड से बच्चों को दूर रखना चाहिए, और अभी हमें एक गाना सुनना चाहिए।
0: उसके तो पास रहना चाहिए, है ना।

0: सोनाली, हमारे सभी साथियों ने, सहेलियों ने अलग अलग संदेशों से के द्वारा बताया है कि जंक फूड के बारे में उनके क्या विचार हैं। बहुत सी बातें तो बताइए, हम ये चाहते हैं कि आप कोई सखी या किसी भी हमारे श्रोता सुनने वाले, इस वक्त सुनने वाले श्रोता बताएं, उनके घर में छोटे बच्चे हैं, अगर हैं तो क्या वो बाहर के खाने के लिए जिद करते हैं तो आप उन्हें कैसे समझा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं, दोनों ही बातें बताएं।
1: इस विषय पर भी हमें लिखकर बताएं, क्योंकि जब है ना श्रोता अपने कमेंट्स लिखते हैं ना तो ज्यादा दिल के करीब होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और उससे एक ना बहुत अच्छा संदेश भी जाता
0: और
1: है
0: और समझ में भी आता है कि क्या चल रहा है सबके घरों में, क्या एक सा चल रहा है, एक सा सही हो रहा है या एक सा गलत हो रहा है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कि मेरी प्रोविजन की शॉप है और मेरी शॉप में 5-10 रुपए वाले पैकेट वाला नाश्ता मैं बेचता हूँ। आजकल स्कूल के बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे पैकेट लेना पसंद करते हैं। लंच बॉक्स में घर का हेल्दी फूड देने के बजाय घर से पेरेंट्स भी यही खरीद कर नाश्ता में दे देते हैं। इसमें ज्यादा शुगर और नमक होने के कारण बच्चे छोटी उम्र में मोटापे के शिकार हो जाते हैं और घर पर भी पिज्जा जैसे जंक फूड आसानी से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं, जो हेल्थ के लिए अनुकूल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है।
0: बिल्कुल, वही एक और संदेश आया है कि आज के समय में खाने में जंक फूड बच्चों की पहली पसंद है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, चिप्स, ये तरह तरह के पैकेट स्नैक्स, खुशबू और आकर्षक पैकिंग की वजह से बच्चों को ये बहुत लुभाते हैं। इसके अलावा माता पिता की व्यस्त दिनचर्या और आसानी से ये सब अवेलेबल है, उसके कारण भी ऐसे खाद्य पदार्थ बच्चों के आदत का हिस्सा बन गए हैं जो उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए स्वाद के साथ बच्चों को संतुलित आहार का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए जंक फूड को पूरी तरह खाने पर पाबंदी लगाने के बजाय उन्हें एक संतुलित भोजन का महत्व समझाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए जरूरी है कि घर में जो भी आप हेल्दी फूड, जो भी स्वस्थ खाना बना रहे हैं पौष्टिक, वो बनाए भी और खाएं, खुद भी खाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। क्योंकि जब आप खुद करेंगे उस चीजों को, उन आदतों को अपनाएंगे, तो बच्चे बिल्कुल उन आदतों का अनुसरण करेंगे।
1: अब देखिए ना, अब जैसे पिज्जा जैसे ही हम अगर मोटी मोटी रोटी बना के उसपे सारी सब्जियां डाल के उसको अच्छे से उसके ऊपर पनीर कद्दूकस करके उसमें चाट मसाला डाल के दिया ना, तो बच्चों को बताएं कि देखिए होममेड पिज्जा है, ये खाएंगे ना तो ये ज्यादा हेल्दी है।
0: बिल्कुल,
1: इस तरह से बच्चों को, अगर डोसा का बैटर है उससे आपने ABCD बना के दिया बच्चों को, तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। फिर पराठे को कट करके ABCD का शेप बना दिया तो बच्चे शौक से खाएंगे।
0: और इसी तरह से पराठे में जैसे किसी दिन पालक की प्यूरी डाल के आप हरे कलर के पराठे दीजिए, कभी बीट रूट का पराठा जो कि बिल्कुल लाल कलर का हो जाता है, या एक दिन जिस दिन आपके पास थोड़ा समय हो, ये सब अलग अलग कलर के पराठे

0: के दीजिए, तो उनको बहुत सुंदर लगता है और बहुत खुशी से और बहुत स्वाद लेकर के चाव से खाते हैं बच्चे।
1: और एक हमारे साथी ने लिखा है कि जंक फूड हमने भी बहुत खाया है, हमारी मजबूरी होती थी क्योंकि कॉलेज इतना दूर था, वहां आसपास कॉलेज कैंटीन के सिवा कुछ भी नहीं होता था, भूख लगने पर मजबूरी में जो कैंटीन में मिलता था वही खाना खाना पड़ता था, लेकिन आज मैं कोई जंक फूड नहीं खाता हूँ। ये बहुत अच्छी बात
0: ये
1: है
0: बहुत अच्छी
1: कि
0: बात,
1: मजबूरी में हम
0: बिल्कुल।
1: खा सकते हैं, पर जहां पर हम कोशिश कि ना खाए वहां पे हम कोशिश कर सकते हैं।
0: अच्छा, एक संदेश ये कहता है कि भाई ये आकर्षक नहीं बल्कि घर में समय पर भोजन नहीं बना पाने का परिणाम है। अच्छा, इन्हें ऐसा लगता है, और वो भी वहां पर विशेष जहां दंपत्ति भी ऑनलाइन ऑर्डर करके मनपसंद भोजन मंगवा लेते हैं। अरे बच्चे तो अनुसरण करते हैं और जब कर लिए तो उसका दुष्प्रभाव से मोटे होने पर उन्हें रोकते भी हैं, मगर वे भी तो तभी रुकेंगे जब आप रुकेंगे। ऐसे में तो यही कहना होगा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो
1: एक
0: भाई
1: साथी लिखते
0: यही
1: हैं,
0: बात हम पहले भी कर रहे थे कि
1: हाँ,
0: हमें पहले अपने आप में
1: पहल
0: सुधार
1: करनी
0: लाना होना,
1: पड़ेगी जी।
0: सुधार भी लाना होगा और पहल भी करनी होगी।
1: एक साथी कहते हैं कि सिर्फ बच्चों में ही नहीं बड़ों को भी जंक फूड खाने की आदत होती है, चिप्स पिज्जा और वो भी कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ, इन सभी का आकर्षण विज्ञापनों के साथ बड़ा प्रचार किया जाता है, रंग बिरंगी पैकिंग और इंस्टेंट डिलीवरी सुविधा के कारण गृहणियों को भी आराम मिल जाता है।
0: जी बिल्कुल। और एक और संदेश ये कह रहा है कि जो बच्चे देखते हैं जंक फूड, बस उसे देखते ही मचल जाते हैं, और ये है कि इनके लिए बहुत नुकसानदायक है सेहत के लिए। इनमें जो मसाले केमिकल का प्रयोग करते हैं बनाने वाले, वो स्वास्थ्य का कतई ख्याल नहीं रखते। उनका उद्देश्य अधिक से अधिक बिक्री पर जोर देना होता है। चटपटे मसालेदार चीजें बड़े आदमियों की तरह बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उनका पाचन तंत्र इतना मजबूत नहीं होता, इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इन्हें अपने बच्चों को इनसे दूर
1: दूर
0: रखें।
1: वही एक साथी कहते हैं कि आजकल ये बहुत स्वाभाविक हो गया है, रंग बिरंगी पैकिंग, स्वाद और विज्ञापन उन्हें जल्दी आकर्षण करते हैं। कभी कभार पसंद की चीज खाना गलत नहीं है, लेकिन अगर यही रोज की आदत बन जाए तो पौष्टिक भोजन से दूरी बढ़ सकती है। अब तो जंक फूड 10 मिनट में घर पर आ जाता है, वही सुविधा हो गई है, इसलिए उस सुविधा का हमें दुरुपयोग नहीं करना है
0: बिल्कुल
1: कि हाँ भाई कभी बीमार है या कभी जन्मदिन है या फिर कभी कोई खास अवसर है, 2-3 महीने में 4 महीने में एक आध बार ठीक है, पर अगर रोज रोज वही हम खाने लग गए तो उसकी आदत भी बन जाएगी
0: और हाँ, आप
1: और
0: कुछ
1: बीमारियां भी करीब आ जाएगी।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक हम गर्मियों की छुट्टियों में जब सारी बहनें मिलती हैं, तो एक हमारी सिस्टर ने बताया, कजिन सिस्टर ने, कि हम अपने बच्चों को बिठा लेते हैं और उनको बोलते हैं कि पूरे हफ्ते भर के में आप क्या खाना चाहते हो बताओ, एक दिन सिर्फ आपको मिलेगा, वो भी क्योंकि छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, एक दिन बाजार का, बाकी सब चीजें घर में बनेंगी और आप भी हमारे साथ मदद करेंगे। तब उन बच्चों को बहुत मजा आने लगा और अब वो बच्चे कहते हैं कि मम्मी आप हमें घर पर ही हर चीज बना के खिलाइए।
1: कितना सुंदर उदाहरण है। चलिए अब गीत सुन लेते हैं।
0: चलिए

0: भाई दिल किसी पे भी आए, ये हानिकारक पदार्थों पे ना आए बस,
1: है ना। मिष्टी दोई पे आ जाए तो बात होगी।
0: हाँ, ये बिल्कुल सही है।
1: एक हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, सामग्री है 1 लीटर फुल क्रीम दूध, 3/4 कप चीनी या गुड़, 3 से 4 चम्मच गाढ़ा दही, हंकड़। बनाने का तरीका, दूध को उबालकर थोड़ा गाढ़ा कर ले। एक अलग पैन में चीनी को पिघलाकर कैरेमल बना ले। कैरेमल को गुनगुने दूध में अच्छी तरह मिला ले। दूध के मिश्रण को हल्का ठंडा होने दे। अब इसमें गाढ़ा दही मिलाकर अच्छी तरह से फेंट ले। इस मिश्रण को मिट्टी के बर्तन कूलर में डाले और बर्तन को ढककर 7 से 8 घंटे तक रात भर के लिए किसी गर्म जगह पर जमने के लिए रख दे। जमने के बाद इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा कर ले और फिर सर्व करे। मिष्टी दोई।
0: तो भाई देखियो सखियो, हमारे सोनाली ने तो मीठा आपको पहले बता दिया, लेकिन साथ में क्या खास व्यंजन बनेगा, तो वो बनेगा आलू और दम, यानी कि दम आलू फेमसली उसे कहते हैं। छोटे छोटे आलू लेने होते हैं इसमें, जो दम आलू के लिए जाते हैं। आप ले लीजिए आधा किलो यानी 500 ग्राम। प्याज ले लीजिए 2 बारीक कटे हुए, टमाटर 2 बारीक कटे हुए, दही आधा कप, लहसुन अदरक का पेस्ट आपके हिसाब से ले लीजिए, तेल 3 बड़े चम्मच, जीरा आधा चम्मच, हल्दी छोटी आधी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आपके हिसाब से, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, गरम मसाला जैसे आपके घर में चलता है वैसे लीजिए, नमक भी आप अब जैसे आपके घर में डाला जाता है वैसा, और हरा धनिया सजाने के लिए। तो अब आलू उबाल करके छील लें, उनमें हल्के छेद छेद छोटे छोटे से कर दीजिए। कढ़ाई में तेल गर्म करके आलू को हल्का सुनहरा होने तक तल लें और निकाल लें। उसी कढ़ाई में जीरा डालें, फिर प्याज डालकर सुनहरा भुने, अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ और सेकंड के लिए भुने, फिर अब टमाटर, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर डालकर मसाले को तब तक भुने जब तक तेल मसालों से अलग ना हो जाए। गैस धीमी करके फेटा हुआ दही डालें और लगातार चलाते हुए पकाते रहिए। अब तेल तले हुए जो आलू आपने रखे थे अलग से, नमक और लगभग 1 कप पानी उसमें डालना है। ढककर इसको आप धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकाएं ताकि आलू में मसाले खूब अच्छी तरह से घुल जाए और मिक्स हो जाए। आखिर में आप गरम मसाला डालिए और हरा धनिया डालकर थोड़ा सा और पकाइए।
1: और इसके साथ में लूची यानी बंगाल की बेहद लोकप्रिय पूरी है, जो सामान्य पूरियों से थोड़ी अलग होती है। आटे के बजाय मैदे से बनाई जाती है। इसमें मोयन के लिए थोड़ा सा घी या तेल और हल्की सी चीनी मिलाई जाती है और इसका रंग सफेद और बनावट बाहर से हल्की खस्ता और अंदर से बेहद नरम होती है। और आलू और दम और ये लूची और साथ में मिष्टी दोई हो तो क्या कहने।

0: हमारे बहुत सारे साथियों ने भर भर के कमेंट्स लिखे हैं दीपा. एक साथी कहते हैं कि भाई है अपना दिल तो आवारा, बिल्कुल पहले अपने दिल पर मुंह पर कंट्रोल होगा जंक फूड के प्रति, तभी बच्चों को भी इसके लिए मना कर सकते हैं.
1: बिल्कुल सही कहा. और एक संदेश आया है कि बंगाल के व्यंजन में पूरी और दम आलू की बात ये हो रही है आज, लेकिन ये बिहार का भी लोकप्रिय व्यंजन है. जी हाँ बिल्कुल है. और जब भी कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है ना तो खीर पूरी तो बनती ही है, साथ में दम आलू भी बनता है, लेकिन आजकल कहीं कहीं जगह पर इस पनीर की सब्जी ने जगह ले ली है.
0: और एक साथी ने लिखा है, एक सखी ने, कि लूची व्यंजन पहली बार सुन रही हूँ
1: जी.
0: तो इनके घर में अब लूची बनने वाली है और हमारे घर में भी बनेगी. और हम श्रोताओं को दिल से धन्यवाद कहेंगे कि आपके कमेंट्स के कारण, आपके इतने सुंदर सुंदर संदेश के कारण कार्यक्रम में चार चांद लग गए.
1: बिल्कुल सही.
0: और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है. आप सभी को सोनाली पाठक
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार.
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक.

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया के रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
7: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
8: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
7: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
9: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
7: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
10: तुम्हारी याद सताती है
7: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदा बहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदा बहार नगमे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
3: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
2: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
4: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।